आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये सफर है भोर सुहाने का, जिसे लेकर आज की सुबह मैं हूं आपके साथ माधुरी। और एक बार फिर जब उठ गए हैं हमारे सारे श्रोताओं, सभी को इस नई सुबह की मुबारकबाद, सुप्रभात।

जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है, और जिंदगी में हर वक्त कोई ना कोई इम्तिहान होता है। डरने वालों को नहीं मिलता कुछ जिंदगी में, लेकिन हाँ, लड़ने वालों के कदमों में ये जहान होता है।

अब्दुल कलाम साहब ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है कि एक अच्छी किताब 1000 दोस्तों के बराबर होती है, जबकि एक अच्छा दोस्त एक लाइब्रेरी के बराबर होता है। भोर सुहाने का ये सफर बस यहीं तक, और ये लीजिए भोर सुहाने से आखिरी गीत आप सभी के लिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन संपन्न हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिक्स की विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे। श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि ब्रिक्स देशों
1: कहा कि
0: में सहयोग
1: ब्रिक्स की विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे। श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि ब्रिक्स देशों में सहयोग की प्रेरणा हो और मानवता की प्रगति के हित में योगदान दे। दो दिन के शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है। श्री मोदी ने कहा कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र
2: इस समिट से उसमें एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स अब अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा है, इसलिए दुनिया अब इस समूह से सिर्फ विचारों और वादों की नहीं बल्कि ठोस परिणामों की उम्मीद करती है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। इससे पहले आरंभिक भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभ केवल समूह तक ही सीमित नहीं होने चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। पिछले तीन दिन में श्री मोदी ने राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के साथ 15 बैठकें की। उन्होंने दुनिया के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ कई अनौपचारिक बैठकें भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने कजाखिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, बुरुंडी, नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। प्रधानमंत्री ने बुरुंडी के राष्ट्रपति, नाइजीरिया और युगांडा की उपराष्ट्रपति के साथ भी बैठक की। गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि

0: भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दल और कई स्वयंसेवी संगठन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक महीने भर पूरे देश में सेवा संकल्प अभियान चलाएंगे। मुंबई में श्री शाह ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस वर्ष अक्टूबर महीने में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके जन सेवा के 25 वर्ष पूरे होंगे। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया था। आज हिंदी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और 52 करोड़ से ज्यादा लोगों की पहली भाषा है। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई में हिंदी दिवस 2026 और छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। श्री शाह उद्घाटन सत्र में हिंदी को बढ़ावा देने और इसके कार्यान्वयन में उत्कृष्ट योगदान देने वाले संस्थानों और व्यक्तियों को 2025-26 के राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान करेंगे। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत MTEL गया पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि अब तक चालक दल के 13 भारतीय सदस्यों को बचा लिया गया है। एक भारतीय नागरिक की तलाश जारी है। दूतावास ने कहा कि खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय किया जा रहा है। पूरे देश में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। इसे विनायक चतुर्थी या गणेश उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। 10 दिनों तक चलने वाले उत्सव का आज पहला दिन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। The 18th BRICS summit concluded in New Delhi with Prime Minister Narendra Modi underscoring that the BRICS diversity should remain its identity, cooperation its inspiration, and its progress should contribute to the cause of humanity. In his closing remarks on the final day of the two-day summit, the Prime Minister said, BRICS is not merely a grouping of nations but an ecosystem of solutions. He said the discussions over the past 2 days had further strengthened this conviction. Mr. Modi expressed hope that the New Delhi Declaration adopted at the summit would provide clear direction for a shared vision and future cooperation. He stressed the need to translate all outcomes into time-bound actions that deliver last-mile impact.
2: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें अडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
1: Prime Minister Narendra Modi held a series of high-level bilateral engagements on the sidelines of the BRICS summit in New Delhi. Over the past 3 days, Mr. Modi held 15 meetings with heads of state and government, besides several pull-aside meetings with world leaders and heads of international institutions. The meetings provided an opportunity to strengthen bilateral ties, discuss issues of mutual interest, and exchange views on regional and global developments. Hindi Divas is being celebrated across the country today. It was on this day in 1949 that the Constituent Assembly adopted Hindi written in Devanagari script as the official language of the country. Today, Hindi is one of the widely spoken languages in the world and the first language of more than 52 crore people. Union Home Minister Amit Shah will attend Hindi Divas 2026 program and the 6th All India Raj Bhasha Sammelan official language conference in Navi Mumbai today. The two-day conference will bring together scholars, educationists, members of parliament, senior government officials, and distinguished personalities from

0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत सुनिए गौरैया और पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेष योगदान देने वाली तथा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर अर्चना शुक्ला के साथ खास बातचीत। संवाद का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
2: नमस्कार, प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के नए प्रसंस्करण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का प्रसंस्करण बहुत ही विशेष है क्योंकि हम एक ऐसी शिक्षिका से आज बात करने वाले हैं जिन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य शुरू किया है बच्चों को पर्यावरण से जोड़ने का, और इसके लिए उन्हें हाल ही में टीचर्स डे के दिन राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर शुक्ला, आपका बहुत बहुत स्वागत।
3: धन्यवाद
2: डॉक्टर शुक्ला। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, ये जो आपको पुरस्कार सरकार की तरफ से मिला है, और आप हमें बताएं कि कैसा आपको महसूस हुआ और कौन सा ऐसा प्रमुख कार्य रहा है जो आपको लगता है कि जिसको सम्मानित किया गया है।
3: यह मेरे लिए बहुत गर्व का क्षण है, और सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे विद्यालय के लिए, मेरे विद्यार्थियों के लिए और पूरे मध्य प्रदेश के शिक्षकों के लिए। यदि हम कार्य की बात करें कि किस लिए अवार्ड दिया जा रहा है, तो जब हम कोई कार्य करते हैं और उस कार्य को रिकॉग्नाइजेशन मिलता है और शासन को लगता है कि उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए या उस कार्य से दूसरे टीचर भी इंस्पायर हो सकते हैं, तो आपको अवार्ड दिया जाता है। यदि मैं बात करूं कि ऐसा क्या विशेष किया है, तो मुझे लगता है कि मेरा जो विज्ञान पढ़ाने का जो ढंग है वो थोड़ा सा, उसकी विधि जो है वो दूसरे शिक्षकों से विभिन्न है। तो इसमें मैं अपने विद्यार्थियों को विज्ञान जो है सिर्फ किताब के माध्यम से पढ़कर या प्रश्नों के उत्तर देकर ना सिखाकर उनको उसे महसूस कराती हूँ। तो जो मेरा टीचिंग मेथोडोलॉजी है वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है। इसमें मेरे विद्यार्थी अलग अलग तरह की परियोजनाएं करते हैं, और उन परियोजनाओं को करते समय हमारी सरकार जो कह रही है कि विद्यार्थी NEP 2020 में 21st सेंचुरी स्किल्स पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया है कि विद्यार्थियों में 21st सेंचुरी स्किल्स डेवलप होनी चाहिए, तो मुझे लगता है इसके लिए सबसे जो बेस्ट तरीका है वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग ही है।
2: सो आपने जैसे कहा कि आप सिर्फ थ्योरी नहीं, जो प्रैक्टिकल एक एस्पेक्ट है उसको ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कर रही हैं, और जो आपने हमें बताया कि बच्चों को प्रकृति से जोड़ने का जो कार्य है, उसका आपको ख्याल कैसे आया, क्यों आपको लगा कि ये बहुत जरूरी है?
3: विज्ञान पढ़ाते हुए मुझे लगभग आज 16-17 साल हो गए हैं, और मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि विद्यार्थियों को विज्ञान सिर्फ कक्षा में नहीं पढ़ाया जा सकता, विज्ञान तो हर चीज में है, विज्ञान तो प्रकृति के हर जगह पर है। तो कोरोना के समय मुझे रियलाइज हुआ, आपने सुना होगा कि कोरोना में लोग कहते थे कि काढ़ा पियो, तो काढ़ा पीने की जब बात आती है तो काढ़े में जो जो चीजें मिलाई जाती है, तो मेरे विद्यार्थी उन चीजों को पहचानते ही नहीं है। कितनी अजीब बात है कि आप अर्जुना रेस्ट बाजार से खरीद कर पी रहे हैं और आपको ये नहीं पता है कि आपके आंगन में लगा हुआ पेड़ ही अर्जुन है, तो अर्जुन की छाल को आप उबाल कर पी सकते हैं। तो यहाँ से मुझे रियलाइज हुआ कि जिसको भी आप जानोगे नहीं उसको आप मानोगे नहीं। तो यदि आप कंजर्वेशन संरक्षण की बात करते हैं, तो सबसे पहला कदम जो है वो है आइडेंटिफिकेशन। जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, जब तक आप चीजों को अपने आसपास के पक्षियों को, पशु को, इंसेक्ट्स को, ट्रीज को जब तक आप पहचानेंगे नहीं, तो आप कंजर्व कैसे करेंगे, तो उनका संरक्षण कैसे होगा? हमारे आसपास इतनी सारी जैव विविधता थी, लगातार कई जीव जो है वो खत्म होते जा रहे हैं, और जब कोई बड़ी विपदा आती है तब हमें लगता है

0: कि हमने ऐसी क्या गलती की। तो यहाँ पर मुझे लगा कि विद्यार्थियों को प्रकृति से जोड़ना बहुत जरूरी है और उसके लिए सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन।
1: बहुत ही आपने खूबसूरती से बताया कि आइडेंटिफिकेशन यानी जागरूकता सबसे पहला स्टेप है। जो आपने प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की बात की, उसमें प्रमुख सबसे ज्यादा कौन सा ऐसा कैटेगरी ऑफ प्रोजेक्ट्स आप जो आपको लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट था, उसका बहुत प्रभाव हुआ बच्चों पर और उनकी इन्वॉल्वमेंट हुई, उसके बारे में बताएं।
0: मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने कई बार इस बात को कहा है कि विद्यार्थियों में साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करिए। तो विद्यार्थियों में साइंटिफिक टेम्परामेंट कैसे डेवलप होगा? सिर्फ बायोलॉजी को क्लास में पढ़ लेने से डेवलप नहीं होगा। तो इसी तरह से एक बार मैं अपने 11th बायो के बच्चों को कंजर्वेशन पढ़ा रही थी, तो मैंने विद्यार्थियों से पूछा, क्या आपको लगता है कि हमें किसी जीव को कंजर्व करने की जरूरत है? तो मेरे एक विद्यार्थी ने खड़े होकर कहा कि मैम, पहले एक छोटी चिड़िया आया करती थी, गौरैया। तो जब मैं नानी के घर जाता था, बहुत सारी गौरैया आती थी, हम बहुत चावल खिलाया करते थे, आजकल वो दिखती नहीं है। तो मैंने कहा, ओके, क्या कारण है कि वो खत्म हो गई? तो किसी एक बच्चे ने रैंडम कहा कि मैम, रेडिएशन। तो आई सेड, आपने कहाँ पढ़ा कि रेडिएशन कारण है? तो बोले, नहीं मैम, सब जगह आ रहा है सोशल मीडिया पे कि रेडिएशन के कारण बर्ड्स खत्म हो रही हैं। तो मैंने कहा, ऐसे नहीं, यू फाइंड आउट द रिसर्च पेपर्स और फिर कारण पढ़िए, देयर आर मेनी रिसर्च पेपर ऑन स्पैरोज। तो हमने एक साल सिर्फ यही काम किया कि हमने रिसर्च पेपर्स निकाले और उसका मुख्य कारण खत्म होने का जानने की कोशिश की। तो बच्चों ने कंक्लूजन में लिखा कि गौरैया की नेस्टिंग साइट खत्म हो रही है। क्यों खत्म हो रही है? क्योंकि मॉडर्न आर्किटेक्चर जो है वो गौरैया को कहीं भी अंडे रखने की जगह नहीं दे रहा है। तो जो आज हम मॉडर्न बिल्डिंग बना रहे हैं, जो आज हम अपने घर बना रहे हैं, उन घरों में कहीं भी गौरैया के अंडे रखने की जगह ही नहीं है। जबकि पहले जब हमारे खपड़े के घर होते थे, अर्थन टाइल्स होती थी, तो वहां कई जगह जगह होती थी जहां पर वो अंडे अपने रख पाती थी। गौरैया एक ऐसा जीव है, जब हमने खेती शुरू की वो हमारे साथ चला आया और जंगलों से हमारे साथ आके हमारे घरों में रहने लगा। धीरे धीरे उसकी जो नेस्टिंग की कला थी वो खत्म हो गई। अब वो प्रॉपर नेस्ट नहीं बनाता है, वो कहीं पर भी जहां जगह होती है वहां पर अंडे रख देता है। तो थोड़ी सी घास रखता है और अंडे रख देता है। तो फाइनली ये निकला कि भाई, हमें गौरैया के लिए नेस्टिंग साइट बनानी पड़ेगी। तो फिर ये हुआ, कैसी नेस्टिंग साइट बनाई जाए? 2021 में और 20 में जब हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किए थे, उस समय कहीं पर भी प्रॉपर स्पैरोज के लिए नेस्टिंग बॉक्स नहीं थे। तो मैंने बच्चों से कहा कि आपको जैसा लग रहा है वैसे बनाइए। तो बच्चों ने इतनी क्रिएटिविटी उसमें दिखाई, मतलब भूसे से घर बनाए, मिट्टी से बनाए कि ठंडा रहेगा, फिर उसमें जो है शू बॉक्स से घर बनाए। तो मैंने उनसे कहा कि जो भी आपने घर बनाया इसको अपने घरों में लगा दीजिए और देखिए गौरैया इसको अडॉप्ट करती है कि नहीं, क्योंकि रहना तो उसी को है। तो हमने देखा कि जो शू बॉक्स थे उसमें गौरैया आके रहने लगी। तो वो पहली बार जब किसी बच्चे ने मुझे बोला कि मैम, वो वेंटिलेटर के ऊपर जो मैंने शू बॉक्स रखा था उसमें गौरैया ने बच्चे दिए हैं, अंडे हैं उसके अंदर, तो वो जो खुशी थी, मतलब आई हैव गॉट गूज बम्स। तो वो मतलब कि यस, दिस इज वर्किंग एक्चुअली। फिर ये हुआ कि ठीक है, तो इस तरह के बॉक्सेस होने चाहिए और फिर हमने उन बॉक्सेस को बनाना शुरू किया। तो पहली बार जब लकड़ी के बॉक्सेस हमने बनाए तो हमने रियलाइज किया कि उसके अंदर दूसरी बर्ड्स एंटर कर रही थी। तो हमने देखा कि मैगपाई रॉबिन एंटर कर रही है, ब्राह्मणी स्टर्लिंग एंटर कर ली है, तो कुछ गड़बड़ है। तो देन वी रियलाइज कि होल साइज बहुत बड़ा है, तो हम इसका होल साइज थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। तो हमने होल साइज छोटा किया। देन वी रियलाइज कि उसकी छत के ऊपर कबूतर बैठ जाता है और कबूतर जो गौरैया है वो शाय बर्ड है, तो कबूतर आके अंडे दे देगा तो वो अंदर आएगी नहीं। तो फिर हमने उसकी जो रूफ है वो स्लैंटिंग कर दी ताकि उसके ऊपर जो है वो कबूतर ना बैठ पाए। देन वी रियलाइज कि प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, फिर हमने उसके दोनों तरफ होल कर दिए। देन वी रियलाइज कि अंडे कई बार फूट जाते हैं, उसमें चींटियां लग जाती है, तो फिर हमें रियलाइज हुआ कि नीचे भी होल होना चाहिए ताकि वो पानी नीचे से निकल जाए। तो इस तरह से कंटिन्यूअसली 4 ईयर्स कंटिन्यूअस जब मेरे बच्चों ने वर्क किया, तो हमने इंडिया के फर्स्ट साइंटिफिकली प्रूवन स्पैरो बॉक्सेस बनाए। आप कोई भी नेस्ट बॉक्स लेने जाएंगे उसमें हमेशा स्टिक होती है, पर हमने एक्सपेरिमेंट करते समय ऑब्जर्व किया, यदि घोंसलों में आगे स्टिक लगी होती है तो उसमें दूसरी बर्ड आकर बैठती है, बच्चे जो होते हैं वो सोचते हैं माँ आई है और वो बाहर फेस निकालते हैं और वो खा जाती है, तो इसलिए हमने इससे स्टिक हटा दी। तो इस तरह से कंटिन्यूअसली, दिस इज व्हाट इज रिसर्च मेथोडोलॉजी।
1: बिल्कुल।
0: तो मेरे बच्चों ने 4 साल में प्रॉपर नेस्ट डेवलप किए। और अगर हम अचीवमेंट की बात करें तो अचीवमेंट ये है मैम कि आज इसको हम डिफरेंट स्टेट्स में डिलीवर कर रहे हैं, इसकी बहुत अच्छी डिमांड है। हमने इसको मुंबई भेजा, जयपुर भेजा, पुणे भेजा, कई जगह से डिमांड आती है, नोएडा भी भेजा, और नोएडा में 1.5 साल के बाद अभी हमें पता चला कि गौरैया आने लगी। तो ये जो रिजल्ट्स हैं, फिर इस प्रोजेक्ट को अभी हमने जून में 42 कंट्रीज से कंजर्वेशनिस्ट आए थे, एशिया कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस जो काठमांडू में हुई है नेपाल में, वहां पर हमने इसको प्रेजेंट किया। 42 कंट्रीज से जो लोग आए थे, जो प्रॉपर साइंटिस्ट है, कंजर्वेशन का काम किया हुआ है, उन्होंने जब इस वर्क को देखा तो दे सेड कि इस तरह का वर्क अगर हम करते हैं तो इसमें बहुत सारा फंड चाहिए होता है एंड लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क इज रिक्वायर्ड. हाउ इज इट पॉसिबल दैट द स्टूडेंट्स ऑफ 9th एंड 11th क्लास आर डूइंग दिस टाइप ऑफ वर्क? सो वी गॉट लॉट्स ऑफ एप्रिशिएशन फ्रॉम देयर.
1: सो बहुत ही मतलब कहें कि आपने जो अचीव किया वो एक कम लागत पे भी किया, और इसमें जो इन्वॉल्वमेंट आप बता रही हैं बच्चों की, क्या बच्चों के द्वारा और कम्युनिटी लेवल पर भी इसका इंटरेस्ट जागा लोगों का?
0: जब हमने

0: परफेक्ट मॉडल्स डेवलप कर लिए तो हमें ये रियलाइज हुआ वी नीड फंड फॉर इट सो दैट वी कैन ऑल्सो इलैबोरेट दिस वर्क. तो हमने फिर मध्य प्रदेश टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी को अप्रोच किया और सबसे अच्छी बात है कि बच्चों ने प्रेजेंट किया उनके सामने और हमने उनसे कहा कि बिकॉज गौरैया जो है वो भी वाइल्ड लाइफ के अंतर्गत आती है तो इसलिए वी नीड फंड्स फॉर इट. एंड लकली वी गॉट 1 lakh rupees फंड फ्रॉम देम. एंड जब हमने जो बॉक्सेस बनाए उस 1 lakh rupees से वो हमने हमारे अवधपुरी के पूरे टेम्पल्स गुरुद्वारे और जितनी रिलीजियस प्लेसेस थी वहां पर लगाए. तो वहां पर लगाने का एक बेनिफिट ये था कि जो बर्ड है उसको आसानी से दाना मिल जाता है, पानी मिल जाता है, और अगर नेस्टिंग साइट भी मिल जाती है तो उनका नंबर आसानी से इंक्रीज हो सकता है. और उसके बाद मेरे बच्चे इसको कंटिन्यूसली अब ऑब्जर्व करते हैं तो दे यूज टू से कि मैम अभी उसमें थर्ड टाइम नेस्टिंग हो रही है और इसमें इतने अंडे हैं, इतने बच्चे उड़ गए. तो दिस होल ऑब्जर्वेशन दे आर राइटिंग एंड वी हैव पब्लिश्ड आवर वर्क नेशनली एज वेल एज इंटरनेशनली.
1: सो एवरेज एडॉप्शन रेट क्या है और कोई जो हमारे श्रोता अगर वो भी प्रेरित होकर पहल करना चाहे कैसे वो बना सकते हैं और वो भी दे सकते हैं ये घर एक आशियाना गौरैया को?
0: तो हमारा जो मिशन है वो है कि हर घर गौरैया घर होना चाहिए क्योंकि आप जहां आज अपने घर बना रहे हैं वो जीवों के ही थे. तो बेसिकली आज हम कहते हैं ना कि लेपर्ड हमारे घरों में घुस गया, टाइगर हमारे घरों में घुस गया, ये उल्लू हमारे घरों में आ रहे, हमारे घरों में नहीं आ रहे, हम उनके घरों में चले गए हैं. तो इसलिए उनका भी आशियाना बना रहे ये जरूरी है. तो जब हम इसके डिजाइन की बात करते हैं जो होल साइज है वो हमने 1.5 से 2 inch रखा है. इससे बड़ा होल साइज करने पर बड़ी बर्ड्स इसके अंदर जाने लगती है. दूसरा प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए हमने होल बनाए हैं ताकि हवा जो है प्रॉपर वेंटिलेशन हो सके. इसमें नीचे होल्स हैं ताकि कभी अगर पानी इकट्ठा हो तो वो पानी निकल सके. इसका जो रूफ है वो हमने स्लैंटिंग बनाया है ताकि कोई पिजन्स वगैरह इसके ऊपर ना बैठ पाए. और कोशिश ये करनी है कि इसको विंडो या वेंटिलेटर के पास लगाएं या जहां पर आपका एसी लगा हुआ है. दूसरी हमें ये कोशिश करनी है कि जहां पर भी आप इसको लगाएं उसके ऊपर रूफ होनी चाहिए ताकि पानी इसके ऊपर ना गिरे. और दूसरा आप जो गौरैया है वो हमेशा वेंटिलेटर से एंटर करने की कोशिश करती है. आजकल हमने अपने रोशनदान में भी जाली लगा दी है, सब चीजों में जाली लगी है तो गौरैया अंदर आ ही नहीं सकती है. तो इसके लिए सबसे अच्छी जगह वो है. दूसरा इस पर हम किसी भी तरह का पेंट यूज नहीं करते हैं. ऑर्गेनाइजेशन से या रोड पर जो बॉक्सेस मिलते हैं वो बहुत कलरफुल होते हैं. हम भी कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को देते हैं, इसका जो एडॉप्शन रेट है वो 86% है मैम. तो हमने कई बार देखा कि जब हमने इसको दिया तो लोगों ने इसका होल साइज बड़ा कर दिया, ये सोच के कि इतनी छोटे में कैसे एंटर करेगी. और दूसरा कई बार लोग इसको येलो ऑरेंज कलर का पेंट कर देते हैं, इसमें ग्लासेस लगा देते हैं क्योंकि ह्यूमंस लाइक एवरीथिंग टू बी ब्यूटीफुल, उनको हर चीज ऐसा सुंदर चाहिए. जबकि कोई भी बर्ड्स मैम कभी ये नहीं चाहती कि उनका
1: ये ज्यादा नेचुरल हैबिटेट से
0: कि उनका नेस्टिंग साइट कहाँ है ये किसी को भी पता चले. तो अक्सर इसको छुपाकर लगाना चाहिए और हम इसका कलर ऐसा रखते हैं मुल्तानी मिट्टी या गेरू से ताकि ये कैमोफ्लाज कर जाए वॉल के साथ आसानी से. तो ये दिखना नहीं चाहिए, कोई बर्ड ये नहीं चाहती कि उसका नेस्टिंग साइट किसी को भी पता हो. दूसरा इसमें दाना पानी नहीं रखना है. इसमें कहीं पर भी अगर आप पानी के लिए बनाते हैं, बैठने के लिए बनाते हैं या दाने के लिए बनाते हैं तो इसमें दूसरे जो बर्ड्स हैं वो आकर बैठते हैं और उसके वो प्रेडेटर्स हो सकते हैं, उसको चिक्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं.
1: जी, तो बहुत ही आपका सराहनीय ये प्रोजेक्ट है एंड आई एम श्योर कि बहुत लोगों को प्रेरणा मिलेगी क्योंकि गौरैया तो हमारे जीवन का बहुत एक इम्पोर्टेंट, उसको कहा ही कॉमन हाउस स्पैरो जाता है.
0: आई वुड लाइक टू ऐड जस्ट वन थिंग इन दिस क्वेश्चन, ये आता है कि क्यों हमें लगा कि गौरैया को बचाना जरूरी है, गौरैया हमारे लिए क्यों जरूरी है, ये हमें सोचना बहुत जरूरी है. तो गौरैया जो है मैम ये ह्यूमंस के साथ रहती है. बहुत कम ऐसी बर्ड्स हैं जो ह्यूमन कम्युनिटी के साथ रहती है, गौरैया उनमें से एक है. और ये क्या करती है कि जब इसके बच्चे अंडा फोड़कर बाहर आते हैं तो उनको हाई प्रोटीन की जरूरत पड़ती है और उस हाई प्रोटीन के लिए ये हमारे बगीचे में जितने भी लार्वाज हैं जो हमारी नालियों में है, जो हमारे पौधों में है, जो हमारे गमलों में है, उससे लार्वा को चुन चुन के अपने बच्चों को खिलाती है. और ये वही लार्वाज हैं जिनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरसेस होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारी फूड चेन में एंटर करते हैं. तो यानी यदि आप एक छोटा सा गौरैया घर नहीं लगाते हैं तो आप हर महीने किसी न किसी रोग या बीमारी की वजह से डॉक्टर को विजिट करते हैं. क्योंकि जो कम्युनिकेशन जो आपके डिजीज हैं जो आसानी से फैल सकते हैं उन डिजीजेस को रोकने का एक ही तरीका है कि जो आपके पास लार्वाज हैं आसपास जो आपकी फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसको आप खत्म करें. तो खत्म करने का ये नेचुरल तरीका है, ये बायोपेस्टिसाइड्स हैं, बायो इंसेक्टिसाइड्स हैं. और दूसरा तरीका है आप केमिकल्स डालेंगे.
1: तो आप जो कह रही हैं कि इतने सारे आपने छात्रों को इसमें इन्वॉल्व किया है जो खुद उन्होंने अपने आप रिसर्च की और बहुत एक कहें कि एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रही उनकी, तो उनके जो आसपास के जो उनका घर वाले हैं या उनके फ्रेंड्स हैं उनमें भी वो जागरूकता फिर एक तरह से एक डोमिनो इफेक्ट होता है.
0: यस यस ऑफ कोर्स मैम. जब मैं किसी बच्चे को कुछ सिखाती हूँ तो वो बच्चे से अभिभावक और अभिभावक से कम्युनिटी में जाती है. तो जब ये स्पैरो बॉक्सेस मेरे बच्चे घर में बनाते हैं या लगाते हैं तो सबकी नजर जाती है. और जब उसमें चिड़िया आती है या अंडे देती है तो सिर्फ वो नहीं देख रहे, इवन उनके दादा दादी बताते हैं कि हमारे यहाँ पहले बहुत आया करती थी. तो इस तरह से एक पूरा घर, एक पूरा समुदाय, एक पूरी कम्युनिटी

0: धीरे धीरे उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। तो हमने एक दिया, बाद में वो 10 बनाते हैं। तो अब उनको ये पता है कि मेरे घर में अगर सोफा का कुछ लकड़ी बच गई है या डोर बनाते समय कुछ बच गया है तो उसको काट कर हम स्पैरो हाउस बना सकते
1: ये
0: हैं।
1: लकड़ी से ही बनता है या गत्ते से भी या
0: हम
1: किसी और
0: गत्ते से
1: मटेरियल
0: भी,
1: से भी
0: यस,
1: बनता?
0: अगर आपको सिर्फ एक सीजन के लिए लगाना है तो आप गत्ते से भी बनाकर लगा सकते हैं। स्पैरोस आसानी से आ जाती हैं अगर आप एक नॉर्मल शू बॉक्स लेते हैं और उसमें होल कर देते हैं। जो सबसे बड़ा डर है मैम वो ये है कि उसमें पानी एब्जॉर्ब करेगा और वो फूल जाएगा, तो उसमें
1: जी।
0: फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। कई बार चींटियां आ जाती हैं जो बच्चों को नुकसान पहुंचाती हैं। कई बार वो वीक हो जाता है और टूट जाता है, गिर जाता है, कई बार हवा से गिर जाता है। तो इसलिए हम एक सेफ नेस्टिंग जो है उनको प्रोवाइड करना चाहते हैं।
1: और एक और जो आपकी पहल जिसके बारे में हम जानना चाहेंगे, जो पेड़ों को लेकर आपने जो जागरूकता बच्चों में, जो QR कोड सिस्टम आपने इंट्रोड्यूस किया है, थोड़ा सा ये बताएं।
0: मैम सेम आई वुड लाइक टू मेंशन, कोरोना के बाद जब बच्चे मेरे पास आए, कोरोना में हम लोगों ने ही सभी बच्चों को इंसिस्ट किया कि स्मार्टफोन्स खरीदिए, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करिए। तो
1: जी
0: ऑनलाइन क्लासेस लगभग 1.5 साल चली और उसका रिजल्ट ये हुआ कि मेरे बच्चों को सोशल मीडिया की आदत पड़ गई। तो जब पेरेंट्स मेरे पास आए तो उन्होंने बोला कि मैम हमारे बच्चे जो हैं वो मोबाइल ही हाथ से नहीं छोड़ते हैं। तो मुझे ये लगा कि वो टेक्नोलॉजी को जानते हैं, अब उस टेक्नोलॉजी का कैसे यूज किया जा सकता है दैट आई हैव टू सी, बिकॉज उनके हाथ से मोबाइल छुड़ाना इज नॉट द सोल्यूशन, बट मोबाइल का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे किया जा सकता है,
1: जी
0: ये एक समस्या थी मेरे साथ। मैं एज अ क्लास टीचर आई वॉज फेसिंग दिस। एंड दूसरी तरफ मेरे बच्चों को मैं बायोडाइवर्सिटी पढ़ा रही थी, तो मैंने देखा कि मेरे ही स्कूल में जो लगे हुए पेड़ हैं बच्चे उनके भी नाम नहीं बता पा रहे हैं। मतलब वो सिर्फ कुछ पेड़ों के नाम जानते हैं, वो पीपल और बरगद में अंतर तक नहीं जानते हैं। तो मुझे लगा कि अगर वो आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे तो बहुत डिफिकल्ट है। तो मैंने एक दिन 9th क्लास में बच्चों से पूछा कि क्या हम पेड़ों को कैसे पहचान सकते हैं। तो एक बच्चे ने कहा कि मैम जैसे हम अपना नाम बताते हैं यदि वो भी अपना नाम बता दें खुद ही तो हम पहचानने लगेंगे। तो मैंने कहा इसके लिए क्या किया जाए। तो देयर वाज अ स्टूडेंट चाहत मिश्रा इन द 9th क्लास, सो ही सेड कि मैम QR लगा देते। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई हर्ड कि QR लगा देते हैं, कैसे QR लगाओगे। तो बोले मैम आप देखिए ना आपके लैपटॉप में QR लगा है, ये पेन में लगा हुआ है, हर चीज में, बुक्स में QR लगे हुए हैं, पेड़ों पर QR क्यों नहीं लगा सकते, 2021 की बात है ये। तो मैंने कहा लगाते हैं फिर, तो चलिए आप लोग QR बनाइए फिर बना लोगे। तो दे सेड यस। बच्चे कभी ना नहीं कहते मैम, कुछ भी कहिए तो दे यूज्ड टू, दे आर लाइक हां कर लेंगे ना मैम, दे नेवर से कि नहीं होगा, इवन आई वाज ब्लैंक कैसे होगा। तो अगले दिन 5 QR कोड बन के पेड़ों पे लग गए मैम, और हमने उन सबको स्कैन किया, देयर वर ग्लिचेस, उनमें से एक भी चल नहीं रहा था लेकिन QR बन गए थे। तो उससे एक होप डेवलप हुआ कि हम बना सकते हैं। फिर बहुत सर्च किया तो इंडिया में कहीं पर भी नहीं मिल रहा था जिन्होंने ये काम पहले किया हो। इंडिया के बाहर एक दो जगह मिला पर वो जिस तरीके से लगा रहे थे वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। तो फिर हमने कहा कि ठीक है QR बनाते हैं। तो QR बनाने के लिए सबसे पहले आपको बॉटनिकल सर्वे करना पड़ेगा कि आपके स्कूल में कौन से पेड़ हैं, कितने प्रकार के हैं और कितने नंबर में हैं। तो ये एक बॉटनिकल सर्वे शुरू हुआ। तो हमने फाइंड आउट किया कि हमारे स्कूल में टोटल इतने पेड़ हैं और इतने प्रकार के हैं। तो शुरू किया कि इस पेड़ का QR बनाना है। अब ये काम जो है वो काफी डेप्थ में जा रहा था और इतना टाइम आप स्कूल में दे नहीं सकते क्योंकि स्कूल में बच्चों के फिक्स पीरियड होते हैं, क्योंकि जूम मीटिंग हम पहले सिखा चुके थे बच्चों को। तो हमने उसको यूटिलाइज किया और हम डेली 8 से 9:30 नाइट में बच्चों के साथ मिलने लगे। ऑलमोस्ट 50-55 स्टूडेंट्स 9th के सभी सेक्शंस के मिला।
1: बच्चों में बहुत उत्साह था।
0: सो वो बच्चे कनेक्ट होते थे और हम डिस्कस करते थे कि क्या क्या लिखना चाहिए, QR में क्या क्या होना चाहिए। तो फाइनली 1.5 साल की मेहनत के बाद हमने प्रॉपर QR बनाया जिसमें इंग्लिश नेम, उसका हिंदी नेम, साइंटिफिक नेम होता था। और हम ये चाहते थे कि आप जिस जगह रहते हैं उस भाषा का भी विवरण उसमें होना चाहिए क्योंकि कम्युनिटी अगर स्कैन करे तो उसको पता हो। तो हम सिर्फ इंग्लिश नहीं चाहते थे, हम उसको हिंदी में भी चाहते थे, बाद में कई लैंग्वेजेस में बने ये। तो हमने उसको बनाया और उसमें इन्फॉर्मेशन दी कि ये पेड़ आपको कितना ऑक्सीजन देता है, इसका मेडिकल यूज क्या है, और इसके अलावा ये सब तो हमें नेट से मिल रहा था लेकिन उसके बाद ये आया कि हमारी कम्युनिटी में इसका कैसे यूज करते हैं। तो मेरे पास जो बच्चे आते हैं वो गाँव से आते हैं तो वो कई तरह से, जैसे अमलतास की फली है वो अपने गाय भैंस को खिलाते हैं डाइजेशन के लिए, और आज इसको हम पढ़ रहे हैं रिसर्च में कि अमलतास की फली इस तरह से यूज हो सकती है। कदम का जो फूल होता है हम कभी नहीं जानते थे उसके फल को खाया जाता है, पर मेरे बच्चे ने बताया कि मैम इसकी तो हम चटनी बना के खाते हैं। तो हमने उसमें विधि लिखी, अगर आपको इसको खाना है तो चटनी कैसे बनाई जाए। तो जब आप इसको स्कैन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस फ्रूट की चटनी कैसे बनाई जाती है। फिर हमने साइंटिफिकली पढ़ा तो पता चला कि अगर अक्टूबर नवंबर में जब ये फल आता है यदि आप इसे खा लेते हैं तो दिसंबर जनवरी में आपको सर्दी खांसी बुखार कुछ नहीं होगा।
1: कोई भी जो विजिटर है जो भी वहां से गुजर रहा है स्कैन करिए और आपको
0: यस यू डोंट नीड एनी ऐप फॉर इट, सिंपली विद द QR स्कैनिंग आप उसको स्कैन कर सकते हैं। फिर इस प्रोजेक्ट के बारे में हमारे वहाँ कमिश्नर मैम थी तन्वी हुड्डा, शी केम टू नो अबाउट इट। तो शी कॉल्ड अस कि कैन वी डू इट इन ऑल द पार्क्स ऑफ आर एरिया। तो शी गेव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ 72 पार्क्स। तो हमने 72 पार्क्स में QR कोडिंग की मैम, और हर बच्चा जो है जो उस पार्क के पास रहता था वो वहां जाता था सुबह वॉक करने अपने पेरेंट्स के साथ, वहां के जो लोग थे उनसे पूछता था कि इस पेड़ का नाम क्या है, और वो लिखता था कि ये पेड़ इतने हैं, ये पेड़ इतने हैं, और फिर हमने QR कोड्स लगाए। मोर देन 4,000-5,000 ट्रीज अभी तक हम QR कोडिंग कर चुके हैं। फिर हमने पन्ना टाइगर

0: रिजर्व में लगाए, फिर हमने मुकुंदपुर में लगाए, ऐसे कई टाइगर रिजर्व्स में हमने क्यूआर कोडिंग की, एंड फिर पुणे में किया, हमने सिखाया इसको, बैंगलोर में सिखाया। तो वो एक छोटे से जिले से जो काम शुरू हुआ था वो पूरे इंडिया में फैल गया, और फाइनली मिशन लाइफ के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने इस प्रोजेक्ट को लिया, और लास्ट मार्च में सभी इंडिया के स्कूल्स में इस प्रोजेक्ट को मस्ट कर दिया गया। अब सभी स्टेट ICSE और CBSE बोर्ड के स्कूल्स में ये हो रहा है।
1: बहुत ही मतलब एक इनोवेटिव पहल है जिससे एक इंटरेस्ट डेवलप होता है बच्चों का। और जो दूरगामी फायदे क्या है, क्या आपको पता लगता है कि कितनी बायोडायवर्सिटी है, नहीं है, किस तरह के सजेशंस या पॉजिटिव आउटकम्स क्या आती हैं?
0: हाँ, अगर हम पॉजिटिव आउटकम्स की बात करें तो यहाँ पे दो चीजें मैं देखती हूँ। एक, कम्युनिटी की तरफ से अगर हम देखें तो जब मेरे बच्चों ने ये डेटा निकाला, मैम बॉटनिकल सर्वे किया, तो जब हमारे पास रिजल्ट आया कि किस पार्क में कितने पेड़ लगे हैं, और उसको जब हमने एनालाइज किया, दिस इज व्हाट इज रिसर्च, तो हमने देखा कि जो हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रीज है हमारे एरिया में वो रॉयल पाम था। दिस इज समथिंग वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि मेरा एरिया जेरोफाइटिक एरिया है नहीं, तो ये रॉयल पाम का नंबर सबसे ज्यादा कैसे हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि प्लांटेशन में आप रॉयल पाम सेलेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप जब आप महुआ काटते हैं, शीशम काटते हैं, आम, बरगद, नीम, महानीम, कहां गए सब? ये सब कहां गए? जंगल जलेबी कहां गया? आपने इन सबको काट के और प्लांटेशन में क्या लगा दिया? रॉयल पाम। क्यों लगा दिया रॉयल पाम? क्योंकि उसकी मेंटेनेंस कम है। तो इस तरह से क्या हुआ कि मेरे नेटिव पेड़ सारे गायब हो गए, और अगर नेटिव पेड़ गायब हो जाएंगे तो पूरी बायोडायवर्सिटी खत्म हो जाएगी। उस पेड़ से जो मेरे इंसेक्ट्स रिलेटेड है, जो मेरे बर्ड्स रिलेटेड है, जो मेरी बटरफ्लाईज रिलेटेड है, एक पेड़ के खत्म होते ही वो सब खत्म हो जाएगा, और धीरे धीरे उस एरिया की पूरी बायोडायवर्सिटी खत्म हो जा रही है, हमें पता ही नहीं चल रहा है। तो ये बहुत जरूरी है हम ये सोचे कि यदि हम कोई पेड़ काट रहे हैं, यदि हम शीशम काट रहे हैं, महुआ काट रहे हैं, बरगद काट रहे हैं, हम लगा क्या रहे हैं? क्या हम वहां उस एरिया के नेटिव पेड़ लगा रहे हैं? सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, यदि आप क्यूआर कोड या पीबीएल का इम्पैक्ट की बात करें कि इसके रिजल्ट्स क्या हैं, तो आज से 4-5 साल पहले एक स्टूडेंट था युवराज, वो मेरे साथ क्यूआर कोडिंग करता था। उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं थी, उसके फादर नहीं थे, तो कई बार ऐसा होता था कि युवराज से जब बात करो तो वो रोने लगता था अचानक से। बाहर से जब लोगों से इंटरेक्ट करके आता था तो कहता था मैम वो तो ऐसा कह रहे हैं, और बहुत जल्दी हार जाता था। पर वो प्रोजेक्ट करते समय मैंने उसमें देखा कि एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है, और फिर जब वो कमिश्नर सर से मिल रहा है, कलेक्टर सर से मिल रहा है, जब उसकी फोटो न्यूज़पेपर में आ रही है, तो इससे कॉन्फिडेंस उसमें धीरे धीरे डेवलप हुआ। और फिर उस बच्चे को क्योंकि क्यूआर कोड बनाना था तो उसको टैब मिल रहा था, उसको मेरा लैपटॉप मिल रहा था, तो उसको धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट डेवलप होने लगा। और अभी जुलाई में मुझे पता चला कि उस बच्चे ने IIT रुड़की ज्वाइन किया है।
1: कितना मतलब एक एक्सपैंड होता है आपका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है जो छात्रों का। और कोई ऐसा एग्जांपल आप बता सकें कि जो उन्होंने ये प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के दौरान सीखा उसको आगे जाके उनको उसकी हेल्प हुई हो?
0: एक बहुत पुराना प्रोजेक्ट है मैम, जब मैंने टीचिंग स्टार्ट ही किया था तो आई यूज टू गिव दिस प्रोजेक्ट टू माई स्टूडेंट्स। तो 9th क्लास में देयर वर स्टूडेंट, बच्चों को मैंने एक प्रोजेक्ट दिया था कि आपको अपनी सिटी में जो बर्ड्स मिलती हैं उन बर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है, और उन बर्ड्स को आइडेंटिफाई करके आपको बताना है कि उनका नाम क्या है, उनकी फोटोग्राफ्स आपको लेनी है। तो उस बच्चे ने वो प्रोजेक्ट किया, एंड देन कुछ साल पहले दिल्ली से मुझे एक कॉल आया, और वो बच्चा मुझे कॉल करके बोलता है कि मैम मैं विनायक बोल रहा हूँ, मैम आपने मुझे 9th में साइंस पढ़ाई थी, तो ही सेड कि आज मैं UPSC का इंटरव्यू देके आया हूँ। तो आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, एंड देन ही वाज लाइक मैम आपको पता है आपने 9th में मुझे एक प्रोजेक्ट दिया था जो बर्ड्स के ऊपर, तो आज मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि क्या आपने कोई भी ऐसा काम जो एनवायरमेंट से रिलेटेड है प्रैक्टिकली किया है? तो बोलता मैम वो 9th में जो मैंने बर्ड्स का आइडेंटिफिकेशन किया था, मैं सुबह कैमरा लेके जाता था, बर्ड्स की फोटो खींचता था, गूगल से मैच करता था, और कितना डिफिकल्ट होता था उस काम को करना, वो सारा मैंने आज डिस्क्राइब किया। एंड देन आफ्टर फ्यू डेज आई सॉ इन द न्यूज़पेपर दैट इज UPSC ranking was 47.
1: Wow.
0: So that is an achievement. Wow.
1: Yes. आपको लगता है कि ये जो experience इनको मिलता है project based learning में, जैसे आप कह रही हैं कि वो research जो stage है उसमें भी involved होते हैं, और जिस तरह से धीरे धीरे dynamic changes होते हैं project में, उसको एक success तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह से involved रहते हैं बच्चे, तो आपको लगता है कि पूरा उनका जो mindset है for life, ता उम्र के लिए वो एक जो conservation है, हमारी प्रकृति के प्रति प्रेम है, उसके संरक्षण के प्रति जो जागरूकता है, वो आपको लगता है कि उन्हें हमेशा वो रहेगी, उनका पार्ट ऑफ द पर्सनालिटी बन जाती है?
0: जो 40 स्टूडेंट्स या 50 स्टूडेंट मेरी क्लास में आज बैठते हैं, मेरा ये मानना है कि कल समाज वही बनाएंगे। आज जो समाज हम देख रहे हैं, यदि हम उसमें कुछ बुराइयां देख रहे हैं या कमियां देख रहे हैं, ये समाज कभी किसी दिन किसी टीचर की क्लास में बैठा होगा, और आज जो मेरी क्लास में बैठा है ये आने वाली पीढ़ी है, ये कल समाज की नींव रखेगी। जरूरी नहीं है कि मेरे क्लास में जितने विद्यार्थी बैठे हैं वो सभी के सभी डॉक्टर्स या इंजीनियर्स बन जाएं। तो यहाँ पर मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि मैं अपने विद्यार्थियों को एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाऊं, मैं उन्हें इस चीज के लिए समझा पाऊं, सेंसिटाइज कर पाऊं कि प्रकृति हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जितना आप प्रकृति से लेते हैं कुछ तो उसके बदले में उसे दीजिए। हमें प्रकृति को बचाने की आवश्यकता नहीं है, हमें अपने आप को बचाने की आवश्यकता है। तो ये जो

0: जश्न है यदि हम इस कच्ची उम्र में कर पाते हैं तो वो जीवन पर्यंत उनके साथ जाता है। जैसे मेरे एक विद्यार्थी है मैम, वो इंजीनियर है, तो वो बहुत पहले पढ़ाया था मैम, 2010-11 में पढ़ाया था, सबसे पहला बैच था मेरा। तो उस बच्चे को जब हम क्या करते थे, नेस्टिंग साइट ढूंढते थे कि चलो आज देखते हैं कहाँ कहाँ नेस्टिंग साइट्स हैं गाँव में, जाते थे मेरे साथ और नदी के किनारे नेस्टिंग साइट ढूंढते थे। तो बड़ा मजा आता था कि ओपन बिल की नेस्टिंग साइट है, ये ईग्रेट्स की नेस्टिंग साइट है। वो वहां पढ़ाया और खत्म हो गया और बच्चे ने मैथ्स ले लिया। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले मुझे उसका मैसेज आता है कि मैम मैं यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी की लाइन डाल रहा था तो मैंने वो ना डायरेक्शन चेंज करा दिया मैम। आई सेड क्यों, क्या हुआ? तो ही वाज लाइक मैम वहां पे तो नेस्टिंग साइट है, तो ईग्रेट्स की और ओपन बिल्स की नेस्टिंग साइट है, तो वो पेड़ नहीं काटना मैम, कि बिकॉज दे नो कि ऐसी कई माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो कई हजार किलोमीटर उड़कर बार बार इंडिया आती है, और जब वो इंडिया आती है तो वो उसी पेड़ को ढूंढती है, उसी एरिया को ढूंढती है। तो इन एरियाज को रिकोगनाइज करना बहुत जरूरी है। यदि वो पेड़ वहां पे नहीं है और बिल्डिंग बन गई है, क्योंकि वो उसका ब्रीडिंग सीजन है, वो ब्रीडिंग सीजन मिस आउट हो जाएगा। तो इसलिए नेस्टिंग साइट्स को पहचानना बहुत जरूरी है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा बच्चा किस फील्ड में है,
1: बिल्कुल
0: लेकिन नेचर से कनेक्ट होना तो सभी के लिए जरूरी है मैम।
1: बिल्कुल जरूरी है हमारे खुद के भविष्य के लिए भी। सो डॉक्टर शुक्ला, जैसा आप कह रही हैं कि हर एक जो नागरिक है वो आगे चलकर किसी भी फील्ड में जाए, लेकिन जो पर्यावरण का संरक्षण है वो तो हम सभी के भविष्य के लिए, हमारे जो आने वाली पीढ़ियां उनके भविष्य के लिए भी बहुत ही जरूरी है, जैसा हम देख ही रहे हैं। एक और जो आपकी पहल है बीजों को लेकर, सीड बिन्स को लेकर, उसके बारे में आप हमें बता सकती हैं, उसका क्या है ये पहल और उसका क्या उद्देश्य है?
0: मैम इसकी कहानी भी इसी तरह से शुरू हुई थी कि एक बार मैं थर्ड फ्लोर पे खड़ी हुई थी और मैंने देखा कि नीचे से जो गार्बेज व्हीकल थी वो निकल रही थी और लोग क्या कर रहे थे, आम के बीज को काली पन्नी में बांधकर और उसमें डाल रहे थे। तो मैंने अपने विद्यार्थियों को यही समझाया कि बीज कचरा नहीं है, क्योंकि बीज को जो आप कचरे की गाड़ी में डाल रहे हैं वो कचरा है ही नहीं। दूसरा, बीज का जो मौलिक अधिकार है उसको मिट्टी पानी मिल सके, आपने वो भी खत्म कर दिया। तो और वो बीज का एक पोटेंशियल है कि हर बीज जो है या तो 40 दिन में या 1.5 महीने में वो उगाता है, अगर उतने दिन में उसको मिट्टी पानी नहीं मिला तो बीज खत्म। इस तरह से लाखों बीज हम भारत में हर साल बर्बाद कर रहे हैं। तो इस तरह यहाँ से ये मुहिम शुरू हुआ कि हम जो बीज है उसको गार्बेज व्हीकल में नहीं डालेंगे। तो फिर इसको लेकर हमारी नगर निगम कमिश्नर मैम से बात हुई कि मैम क्या हम बीज को अलग से इकट्ठा कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने गाड़ियों में थैलियां डलवाई और पूरे एरिया में लोगों से रिक्वेस्ट किया कि बीजों को अलग से दीजिए, और इन बीजों को हमने बोरियों में कलेक्ट किया। तो जब ये काम कौन कर सकता था, मेरे विद्यार्थी पूरे शहर में फैले होते हैं तो वो हर जगह अपने अपने एरिया में बता रहे थे, और इस तरह से हमने बीजों को कलेक्ट किया। और यहाँ पर ये हुआ कि स्कूल में कैसे कलेक्ट करेंगे, तो हमने स्कूल में डस्टबिन के साथ सीड बिन्स रखे। तो मेरे विद्यार्थी जो सीताफल खाते थे वो सीताफल के बीज लाके उसमें अलग से डालते थे, जो आम खाते थे वो आम लाके अलग से डालते थे। तो यहाँ से सीड बिन्स का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, और इस मुहिम के चलते हम नगर निगम के साथ मिलकर आम के उस साल लगभग 6,000 बीज और सीताफल के लगभग 10,000 बीज बचा पाए थे, और वो 6,000 में से 2,500 पेड़ हमने डेवलप किए थे।
1: बहुत ही मतलब एक नेचुरल रिसोर्स है देखा जाए तो। ये एक और जो आपका कॉन्सेप्ट है प्लांट्स में इमोशन है, ये क्या तथ्य है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं और इसका क्या फायदा है?
0: एक बार क्लास में ही पढ़ाते हुए मैंने जगदीश चंद्र बसु जी के बारे में जब अपने विद्यार्थियों को बताया तो मैंने कहा था कि वो कहते हैं कि उनमें फीलिंग्स होती हैं, उनमें भावनाएं होती हैं, वो फील करते हैं। तो मेरा एक बच्चा खड़ा होकर कहता है कि मैम सच में फील करते हैं क्या, क्या वो हमारी बात समझते हैं? तो मैंने कहा करके देखते हैं। तो विद्यार्थी बड़े एक्साइटेड होते हैं, यस मैम कर सकते हैं क्या? मैंने कहा करते हैं। तो हम 2 पौधे लाए और दोनों पौधे जो है वो बराबर साइज के थे, एक जैसी मिट्टी थी, एक जैसे गमले थे, एक जैसे सूरज की रोशनी मिल रही थी, और हम नाप कर दोनों में पानी डालते थे, बराबर खाद डालते थे। बस एक डिफरेंस जो था, हमने 5 बच्चों का एक ग्रुप बनाया जो पेड़ों से बात करता था। तो एक ग्रुप जो है वो उस पेड़ को ग्रेटिट्यूड शो करता था, अप्रिशिएट करता था, और जो दूसरा ग्रुप है वो थोड़ा क्रिटिसाइज करता था। तो उसकी जो लैंग्वेज होती थी वो रफ होती थी और क्रिटिसाइजिंग होती थी। तो मैंने इनसे कहा कि आप बात करिए इनसे, लेट्स सी कि कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो जब बच्चों ने बात किया, 1 महीने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट थे, तो जिससे हम नेगेटिवली बात कर रहे थे उसकी ग्रोथ ज्यादा थी। तो मुझे लगा कि शायद हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, कुछ तो है जो हम गलत कर रहे हैं। तो फिर दे सेड कि नहीं मैम ऐसा तो नहीं हो रहा है। मैंने कहा लेट्स कंटिन्यू विद द प्रोजेक्ट, अभी रोकते नहीं है इसको। हमने अगले महीने फिर उस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू किया, तो मैम इसकी जो ग्रोथ थी जिससे हम नेगेटिवली बात कर रहे थे उसकी ग्रोथ थोड़ी सी रुक गई, और इसमें नई पत्तियां निकलने लगी। तो हम नोट करते थे कि इसमें नई लीफ आ रही है, स्केल से नापते थे कि कितनी बड़ी होगी। 3 महीने आते आते मैम जो पौधा जिसको क्रिटिसाइज करते थे वो मर गया, और जो दूसरा वाला पौधा था वो हरा था। तो मतलब अब कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो जिन बच्चों ने ये प्रोजेक्ट किया, जब उन्होंने पीपीटी प्रेजेंटेशन इस प्रोजेक्ट का दिया, तो वो बच्चे जितनी अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे उतने अच्छे से तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। तो अब मेरे बच्चे सुबह आते हैं तो पेड़ों से हेलो करते हैं, मैं खुद हेलो करती हूँ, बात करती हूँ।
1: तो बहुत ही कहेंगे दूरगामी इसके प्रभाव है, और लगता है कि ये विन विन सिचुएशन है, एंड बच्चों के लिए भी उनकी जो ऑलराउंड डेवलपमेंट है उसमें आपको लगता है कि इसका बहुत अहम भूमिका है।
0: यस मैम, हमने एक और मूवमेंट शुरू किया है जिसमें हम बच्चों को पेड़ पेड़ों को हग करने के लिए कहते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज हग अ ट्री मूवमेंट। तो जब वो पेड़ों को

0: हग करते हैं, देर इज अ साइंटिफिक रिपोर्ट जो ये कहती है कि अगर आप सिर्फ 28 सेकेंड्स तक अगर किसी पेड़ को हग करते हैं तो आपके अंदर एक ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है, और ये वही हार्मोन है जो मदर को हग करने से रिलीज होता है, और मैंने बच्चों के फेस पे एक्सप्रेशन चेंज होते हुए देखे हैं।
1: डॉक्टर शुक्ला बहुत बहुत धन्यवाद, आप आई आकाशवाणी स्टूडियोज में और आपने इतने विभिन्न पहलुओं पर इतने विस्तार से बताया, और एक बार फिर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जो आपको सम्मानित किया है भारत सरकार ने उसके लिए।
0: थैंक यू सो मच मैम मुझे यहाँ बुलाने के लिए, आपका बहुत बहुत
1: थैंक यू।
0: धन्यवाद। मैं सिर्फ एक लाइन आखिरी में बोलना चाहूंगी, महात्मा गांधी ने कहा था बी द चेंज यू वॉन्ट टू सी इन द सोसाइटी, और मुझे खुशी है कि हम वह परिवर्तन हैं। धन्यवाद।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे गौरैया और पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेष योगदान देने वाली तथा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर अर्चना शुक्ला के साथ खास बातचीत।

0: शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर अर्चना शुक्ला के साथ खास बातचीत संवाद का संचालन कर रही थी सोनू सूद। कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमारे ईमेल podcast.airnews@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
2: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
3: मैम, मेरे वाले में तो HR...

0: जागते रहो जागते रहो,
1: सिर्फ जागते नहीं सजग रहो,
0: सिर्फ रातों में नहीं जिंदगी के हर मोड़ पर सजग रहना है,
1: अफवाहों से
0: धोखाधड़ी से
1: जागरूक होना है, अपने अधिकारों के प्रति
0: अपने जिम्मेदारियों के प्रति।
1: हर सही फैसले की शुरुआत होती है जागरूकता से, और जागरूकता की शुरुआत होती है सजग भारत से।
0: सजग भारत,
1: जागरूक भारत,
0: सशक्त भारत।
1: सुनिए सजग भारत
0: सोमवार सुबह 11:30 पर सिर्फ FM रेनबो 101.9 पर। सजग भारत,
1: जागरूक बनिए
0: सजग रहिए।
2: आकाशवाणी हैदराबाद FM रेनबो 101.9 रेनबो तो జీవితం రంగులమయం విత్ ఆర్జే మీ లక్ష్మి నిలయంలో సమయం 10 గంటలు కావస్తుంది. మరికొద్ది సేపట్లో న్యూస్ హెడ్లైన్స్ వింటారు.

0: नमस्कार हैदराबाद, दिस इज़ आकाशवाणी एफ एम रेनबो 101.9, रेनबो के साथ लाइफ है रंगीन। और आज का जो दिन है ना, वो बहुत ही ख़ास है, क्योंकि आपको पता है ना, आज तो विनायक चतुर्थी भी है, फेस्टिवल भी है और कई सारे इम्पॉर्टेंट डेट भी है। तो मैं ये जो फेस्टिवल था अकेले नहीं मना रही, आज मैं स्टूडियो में किसी के साथ हूँ। बहुत ही स्पेशल पर्सन है मेरी लाइफ में स्टूडियो के लिए। और
1: Well, happy morning Hyderabad. This is RJ Jayashree right here. Happy Ganesh Chaturthi to everybody. आज एक से दो, एक नहीं दो, वन टू का फोर या जे टू जे स्क्वायर कह सकते हैं, जागृति एंड जयश्री।
0: यस,
1: ऑल राइट, सो व्हाट डू यू हैव इन स्टोर जागृति फॉर टुडे?
0: बहुत सारी चीज़ें मैम, बहुत सारी बातें। मैं आपसे डिस्कस भी कर रही थी कुछ देर पहले कि आज हम अपने लिसनर्स को इतनी सारी बातें बताने वाले हैं जो कि उनको भी थोड़ी हैरानी करेगी, और स्पेशली हिंदी से रिलेटेड बहुत सारी बातें बताने वाले हैं।
1: हिंदी?
0: जी मैम, आज हिंदी दिवस है।
1: अच्छा, ओके, सो मेरी पूरी प्रयत्न कोशिश रहेगी कि मैं सिर्फ हिंदी में उच्चारण करूं।
0: जी मैम, हम सब जी जरूर। और कुछ आपको हिंदी से रिलेटेड कुछ ऐसे तथ्य, ऐसे कवियों के नाम बताएंगे मैम जिनको आप डेली लाइफ में यूज करते हैं, उनकी कहावतें, बट आपको पता ही नहीं है उनका नाम।
1: रूमी, आई गेस
0: यस
1: बहुत
0: मैम,
1: सारी बातें हैं जो मैं बहुत पसंद करती हूँ। फिर पता चला कि रूमी और कबीर के दोहे थे, तो या आई एम एक्साइटेड।
0: यस। तो वेदर का कोई भरोसा नहीं, कभी धूप कभी बरसात, कभी छाया कभी माया, लेकिन एक चीज़ तो गारंटी है, अगले 4 घंटे एंटरटेनमेंट, ढेर सारी बातें, ढेर सारा गाना। सो डियर लिसनर्स, कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें, क्योंकि रेनबो एक्सप्रेस चलने वाली है अपनी म्यूजिकल सफ़र की ओर।

0: वेलकम बैक लिसनर, दिस इज आकाशवाणी एफ एम रेनबो 101.9, रेनबो के साथ लाइफ है रंगीन। जो अभी हम गाना सुन रहे थे, मिले सुर मेरा तुम्हारा, कितना पावर है इस एक शब्द में, एक लाइन में। और यही तो होता है जब हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, यही होता है जब हम एक साथ आके एक कोई त्यौहार को खुशियों से मनाते हैं, क्योंकि तब हम एक दूसरों के सुर में मिलते हैं और कितनी सारी बातें करते हैं, और उस सेलिब्रेशन का जो मज़ा होता है वो दुगना हो जाता है। और कहा जाता है ये जो गाना है मिले सुर मेरा तुम्हारा, जो हमारा राष्ट्रगान है और राष्ट्रगीत है, उसके बाद इसे स्थान दिया गया है, क्योंकि इसमें यूनिटी की बात की गई है, इसमें समानता की बात की गई है, इसमें एक साथ चलने की बात की गई है। तो ऐसा था इस सॉन्ग का एसेंस। और भी ऐसी बातें करेंगे, मैं हूँ स्टूडियो में, मेरे साथ आरजे जयश्री हैं, वो भी अपनी बातें बताएंगी।
1: वेल, मिले सुर मेरा तुम्हारा इस गाने से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। एंड ये गाना दूरदर्शन पे आता था पहले, जब हमारे टीवीज ब्लैक एंड वाइट होते थे और मोहल्ले में सिर्फ एक टीवी होता था। हम हमारे पड़ोसी के घर जाते थे और ये वाला गाना इतने सारे लैंग्वेजेस के बारे में बताता है। एंड यू नो, हम ढूंढते हैं कि गुजराती, द फर्स्ट लाइन्स दैट आई लर्नड इन एवरी लैंग्वेज इज़ दिस सॉन्ग।
0: यस,
1: उसके बाद पता चला कि गुजराती और बंगाली में अंतर वो सब, लेकिन ये गाना इज़ भीमसेन जोशी जी, शबाना आज़मी जी आती हैं उसमें, एंड यू हैव लता जी। इट्स लाइक वेरी क्लोज़ टू माई हार्ट, वेरी क्लोज़ टू माई हार्ट रियली।
0: सिमिलर लाइक आर राष्ट्रगान मैम, जहाँ पे पंजाब गुजरात मराठा सबको बताया गया है, उसकी लैंग्वेज इस गाने में गाए गए हैं।
1: ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल इंडीड।
0: ऐसे ही सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9, रेनबो के साथ लाइफ है रंगीन।

0: जागते रहो जागते रहो,
1: सिर्फ जागते नहीं सजग रहो,
0: सिर्फ रातों में नहीं जिंदगी के हर मोड़ पर सजग रहना है,
1: अफवाहों से
0: धोखाधड़ी से
1: जागरूक होना है, अपने अधिकारों के प्रति
0: अपने जिम्मेदारियों के प्रति।
1: हर सही फैसले की शुरुआत होती है जागरूकता से, और जागरूकता की शुरुआत होती है सजग भारत से।
0: सजग भारत,
1: जागरूक भारत,
0: सशक्त भारत।
1: सुनिए सजग भारत
0: सोमवार सुबह 11:30 पर सिर्फ FM रेनबो 101.9 पर। सजग भारत,
1: जागरूक बनिए
0: सजग रहिए।

0: वेल थैंक यू आरजे जेडी. तो कभी हिंदी में ऐसी कविताएं इंग्लिश में लिखी जाती है तो मुझे पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है.
1: आपको इतना डरने की ज़रूरत नहीं है जयश्री, क्योंकि जो भाषा है वो इमोशंस को जोड़ने का काम करती है, हमारी जो भावनाएं होती हैं उनको जोड़ने का काम करती है। तो आप दिल छोटा मत करिए, बहुत ही सिंपल और साधारण भाषा है ये।
0: साधारण भाषा भाषा है लेकिन कभी मैं आई वॉन्ट टू टेल शब्द कम पड़ जाते हैं हिंदी में जब मैं बोलने लगती हूँ.
1: कोई बात नहीं, जब आपका भाव अच्छा होता है ना तो शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। और जैसा मैं कहती हूँ कि आप अपनी भावनाओं को शब्दों में बांध नहीं सकते, आप इमोशंस इंग्लिश में बोलते हैं ना, इमोशंस कैन नॉट बी बाउंड बाय वर्ड्स,
0: वाह वाह, ब्यूटिफुल इंडीड. यस,
1: तो वैसे ही भाषा भी होती है। हिंदी में कुछ भी बोलते हैं, आपको पता है जब बोलते हैं अच्छा,
0: अच्छा,
1: हाँ इसके भी कई भाव होते हैं।
0: जैसे हमारे आमिर खान साहब बोलते हैं ना, अच्छा.
1: हाँ अच्छा, ये है जिसमें हम प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अच्छा मतलब शब्द एक ही है लेकिन भाषा ऐसी है कि हम उसको अलग तरीके से बोल सकते हैं और उसका अलग अलग भाव भी निकलता है, मीनिंग भी निकलता है।
0: पता है कितना बड़ा दिल है हमारे लिसनर्स का, जितनी भी मिस्टेक्स हो जाए, क्योंकि महान पंडित बैठे हैं जो हमें सुन रहे हैं हिंदी के भी, हिंदी भाषा के भी, एंड वो बस मुझे माफ कर देते हैं कभी कभी मैं उधर इधर जब वर्ड्स करती हूँ तो.
1: जी वो आपकी भावनाओं को समझते हैं इसीलिए शब्दों पे उतना नहीं, आपकी भावनाओं को तवज्जो देते हैं। देखिए उर्दू भी बोल दिया हमने इसमें।
0: थैंक यू.
1: ऐसे ही हम और भी बातें करेंगे हिंदी में। मैम मैं तो जयश्री से कुछ क्वेश्चंस भी पूछने वाली हूँ आज,
0: बिल्कुल
1: और इनसे मैं थोड़ा सा एक टेस्ट भी ले सकती हूँ शायद।
0: बिल्कुल.
1: ऐसे ही हम और बातें करेंगे। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो 101.9, रेनबो के साथ लाइफ है रंगीन।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद एफएम रेनबो 101.9। रेनबो के साथ है लाइफ रंगीन जागृति। कभी कभी थोड़ा यार दिल छोटा हो जाता है और कभी कभी बुरा लगने लगता है, क्योंकि मेरा शब्द जो मैं कहना चाहती हूँ वो हिंदी में मैं अच्छे से नहीं कह पाती। बहुत सारे मैसेजेस भी आते हैं यहाँ व्हाट्सएप पर, जैसे अभी सरवर अली साहब ने भेजा है, हैप्पी विनायक चतुर्थी जयश्री एंड जागृति, एंड और भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। RJJD ने भेजा है, लॉट्स ऑफ लव टू बोथ ऑफ यू एंड डू अ ग्रेट जॉब।

0: हम आज फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज के इम्पोर्टेंट डेट की बातें भी कर रहे हैं, लेकिन आज का न्यूज़ भी तो सुनना ज़रूरी है।
1: बिल्कुल, यू विल बी लिसनिंग टू द न्यूज हेडलाइंस एंड टुडे इज हिंदी दिवस सेलिब्रेटिंग विद अस द होल ऑफ द कंट्री। न्यूज ऑन एयर ऐप पर हम आप हमें सुन सकते हैं एंड ऑल्सो गणेश चतुर्थी इन ऑल कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड इज बींग सेलिब्रेटेड टूडे। सो हैप्पी गणेश चतुर्थी एंड हैप्पी हिंदी दिवस। आई जागृति एंड जयश्री विल बी राइट हियर विद यू। स्टे ट्यून्ड एंड राइट नाउ टाइम फॉर न्यूज हेडलाइंस।

0: वेलकम बैक लिसनर्स, दिस इज आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9 रेनबो के साथ लाइफ है रंगीन। और आज स्टूडियो में दो लोग हैं, जैसे कि मैंने बताया कि ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए मेरे साथ हैं आज ही जयश्री।
1: हेलो लिसनर्स, होप एवरीबॉडी इज सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स टुडे। दो फेस्टिवल्स?
0: यस, दो नहीं, कई सारे फेस्टिवल्स हैं। मैं आपको और भी कुछ बातें बताती हूँ। आपको पता है कि जो हिंदी दिवस है साल में दो बार आता है?
1: नहीं पता था सच में।
0: हाँ, तो आज जो 14 सितंबर है, 14 सितंबर को ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस है और 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस है।
1: इंटरनेशनल यानी यूनाइटेड नेशंस भी उसको रिकॉग्नाइज करता है।
0: तो जब भारत में, उत्तर भारत में तो हिंदी का जो प्रचार प्रसार है हो रहा था, दक्षिण भारत में भी हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए ये हिंदी का राष्ट्रीय हिंदी दिवस का उद्घाटन हुआ था, ताकि जो हिंदी भाषा है सबको एक सूत्र में पिरोने का काम करे, सबको एक धागे में बांधने का काम करे, पूरे भारत में हर राज्य उसमें बात करे, अपने भावनाओं को व्यक्त करे।
1: बिल्कुल, बहुत अति सुंदर। और इंटरनेशनल लैंग्वेज डे हर लैंग्वेज का होता है, जागृति?
0: यस,
1: वंडरफुल, दैट्स ब्यूटीफुल।
0: सो उस दिन पूरे जो वर्ल्ड में हमारे जो भारतीय हिंदी है उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। ये भारतीय लेवल पे किया जाता है, हर स्कूल कॉलेजेस में इसके बारे में बताया जाता है। और जो ये है 1949 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसे आज के दिन ही राजभाषा में लिया गया था। मैम
1: कितनी गर्व की बात है ना कि
0: जी हाँ, और थोड़ा सबको कन्फ्यूजन भी होता है कि राज्यभाषा और राष्ट्रभाषा में। मैम
1: हाँ, तो अपना ये राजभाषा हिंदी है।
0: जी,
1: ओके,
0: ऑफिशियल लैंग्वेज कह सकते हैं, बट राजभाषा के रूप में लिया गया। से बहुत सारे, अगर हम संविधान की बात करें तो 22 से 24 ऐसे कुछ भाषाएं हैं जो हमारे संविधान में ली गई हैं, उसमें से देवनागरी लिपि हिंदी एक है।
1: ओह वंडरफुल वंडरफुल, इतनी सारी बातें कैसे जान लेती हो तुम?

0: आज मैं ये सारी बातें आपसे और पूरे अपने श्रोताओं से शेयर करना चाहती हूँ।
1: वंडरफुल, थैंक यू।
0: दिस इज आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9, रेनबो के साथ लाइफ है रंगीन।

0: जागते रहो जागते रहो।
1: सिर्फ जागते नहीं सजग रहो।
0: सिर्फ रातों में नहीं जिंदगी के हर मोड़ पर सजग रहना है।
1: अफवाहों से,
0: धोखाधड़ी से
1: जागरूक होना है अपने अधिकारों के प्रति,
0: अपने जिम्मेदारियों के प्रति।
1: हर सही फैसले की शुरुआत होती है जागरूकता से।

0: और जागरूकता की शुरुआत होती है सजग भारत से।
1: सजग भारत,
0: जागरूक भारत,
1: सशक्त भारत।
0: सुनिए सजग भारत
1: सोमवार सुबह 11:30 पर सिर्फ FM रेनबो 101.9 पर। सजग भारत,
0: जागरूक बनिए,
1: सजग रहिए।

0: इन इंडिया, मेड इन इंडिया, एब्सोल्युटली. ये त्योहार जो है मेड इन इंडिया है. एंड गणेश चतुर्थी जो है, इट वॉज एक्चुअली प्रमोटेड बाय राजा राममोहन रॉय बिफोर इंडिपेंडेंस, वन ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट. एंड ही सेड दैट यू नो, जब हम साथ में आते हैं, भेदभाव सब छोड़ के जब हम साथ में आते हैं, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी सेक्ट हो, कुछ भी हो, साथ में आते हैं और एक फेस्टिवल मनाते हैं, एक पंडल गणेश का रखते हैं और सब साथ में गाना गाते हैं, धुन बजाते हैं, तब हम ब्रिटिशर्स को बोल सके कि हम यूनिटी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, इंडिपेंडेंस की ओर बढ़ेंगे. इट वॉज वन ऑफ द स्ट्रैटेजी ऑफ राजा राममोहन रॉय इंडीड. एंड दैट इज इंडीड गणेश चतुर्थी. ऑल आई वॉन्ट से इज, आज है गणेश चतुर्थी, सेफ रहिए. एंड बहुत सारे इलेक्ट्रिक वायर्स भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, उनसे बहुत सावधान रहिए. ग्लव्स पहनकर ही आप उनको ऑपरेट करें, ये पुलिस से मैसेज मिला है हमें. एंड ऑल्सो आई वॉन्ट से इज, सेलिब्रेट द फेस्टिवल विथ लॉट ऑफ लव, क्योंकि फेस्टिवल्स होते हैं अबाउट लव लव लव. व्हाट डू यू से जागृति?
1: जी मैम, ये फेस्टिवल्स में ही तो हम एक दूसरे को जो मिठाइयाँ खिलाते हैं, प्रसाद देते हैं, और वो जो
0: गले मिलते हैं.
1: गले मिलते हैं, और वो जो अन्य प्रसाद हम होता है. मैम, आपको
0: हाँ,
1: मैं एक बताती हूँ कि मैं टेम्पल जाती इसलिए हूँ ताकि मुझे पुलिहोरा मिल सके.
0: ना को पुलियोरा गावाले पिद्दमा टेंपल पुलियोरा देना कुंडा सली नहीं, मतलब खुशी. समझ में आ गया क्या
1: हाँ
0: बोल
1: मैम, बिल्कुल.
0: रही? जो पुलियोरा पद्मा टेम्पल में मिलता है या कोई भी टेम्पल में मिलता हो, मतलब मेरे मुंह में पानी आ रहा है. तुम ना आगे बढ़ो.
1: जी बिल्कुल. किसी
0: वेल, स्टे ट्यून्ड, वी हैव अ वंडरफुल प्रोग्राम अबाउट सजग भारत, एपिसोड 1, जल संरक्षण फॉर यू राइट हियर राइट नाउ.
2: బరోడా ఖాతాదారులకు, సేయోగ రాశులకు, శ్రోతలకు వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు. అతి తక్కువ వడ్డీ రేట్లు, సులభమైన ప్రాసెసింగ్ తో మీ సొంతింటి కలను సాకారం చేసుకోండి. బ్యాంక్ ఆఫ్

0: ये है आकाशवाणी हैदराबाद।
1: अब आप सुनने जा रहे हैं कार्यक्रम सजग भारत।
0: आज सजग भारत के अंतर्गत हम सुनेंगे
1: बिन पानी सब सून।

0: भाई साथियों, मेघा आपकी और हमारी बात मानकर पानी तो बरसा देंगी, पर ये कभी सोचा है कि आप और हम इसका संरक्षण कैसे करेंगे? एक बूंद से सागर बनता है और एक एक बूंद के व्यर्थ बहने से भविष्य सूख जाता है। क्या आज की पक्की सड़कों पर कहीं ऐसी जगह बची है जहां से ये जल केवल बहकर व्यर्थ ना हो बल्कि पुनः हमारे उपयोग में आए?
1: आज की स्थिति को देखकर जल भी कह रहा होगा, मैं पानी हूँ। कभी नदियों में बहता था, तालाबों में मुस्कुराता था, आज कहीं सूख रहा हूँ, कहीं व्यर्थ बह रहा हूँ और कहीं प्रदूषित हो रहा हूँ।
0: पर अब बस, जी हाँ साथियों, इसे कहीं ना कहीं रोकना होगा, तभी हमारी आने वाली पीढ़ियाँ सुरक्षित होगी। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जल है तो कल है। पानी सिर्फ एक संसाधन नहीं, जीवन की धड़कन है, और जब ये धड़कन धीमी पड़ने लगे तो भविष्य खतरे में पड़ जाता है।
1: आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत के पास दुनिया के मीठे जल का केवल 4% हिस्सा है, जबकि आबादी का बड़ा हिस्सा इसी पर निर्भर है। जल स्तर लगातार नीचे जा रहे हैं, जलवायु परिवर्तन इस चुनौती को और बढ़ा रहा है। अब जब पुनः मानसून अपनी राह पर है, तो क्या आप और हम इस मानसून के जल को संरक्षण करने के लिए तैयार हैं? अरे साहब, नहीं है तो तत्परता से होना पड़ेगा। कहते हैं ना कि रहिमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। अर्थात पानी के बिना मोती की चमक, मनुष्य का जीवन और चूने का गुण नष्ट हो जाता है। और हाँ, जल संरक्षण केवल सरकार का काम नहीं है, हर नागरिक की भागीदारी आवश्यक है। वर्षा जल संचयन, भूजल रिचार्ज और पानी का पुनः उपयोग बेहद महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में हम यदि सरकार की पहल की बात करें तो
0: जल जीवन मिशन बजट 2026-27 संसद की अनुदान मांगों के विश्लेषण के अनुसार सरकार ने हर घर जल लक्ष्य को तेजी से पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 67,670 करोड़ आवंटित किए हैं। भारत सरकार ने जल संरक्षण, भूजल स्तर को सुधारने और हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लिए जल शक्ति मंत्रालय का गठन कर कई ऐतिहासिक योजनाएं और जन आंदोलन शुरू किए हैं। इनमें पुनः यदि हम मुख्य राष्ट्रीय योजनाएं और मिशन की बात करें तो
1: जल जीवन मिशन, हर घर जल। इस मिशन के तहत ग्रामीण भारत के 16 करोड़ से अधिक घरों तक नल से साफ पानी पहुंचाया जा चुका है, जिससे महिलाओं को पानी के लिए दूर जाने की समस्या से मुक्ति मिली है।
0: जल शक्ति अभियान कैच द रेन, पानी की हर बूंद को सहेजना, इस संकल्प के साथ ये अभियान शुरू किया गया। इसके तहत देश भर में लाखों रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और पारंपरिक तालाबों का जीर्णोद्धार किया गया।
1: जल संचय जन भागीदारी अभियान, जनता को जल संरक्षण से जोड़ने के लिए शुरू किए गए इस अभियान के तहत देश भर में रिकॉर्ड संख्या में रिचार्ज स्ट्रक्चर और जल संचयन प्रणालियां विकसित की गई।
0: अटल भूजल योजना, देश के उन क्षेत्रों में जहां भूजल का अत्यधिक दोहन हुआ था, वहां सामुदायिक भागीदारी के जरिए भूजल स्तर को सुधारने के लिए ये योजना लागू की गई है।
1: मार्च 2021 विश्व जल दिवस का वो दिन जब पूरे देश में एक नई सोच ने जन्म लिया, जहां गिरे जब गिरे वर्षा की हर बूंद को सहज लो। इसी संदेश के साथ शुरू हुआ जल शक्ति अभियान यानी कैच द रेन। इस अभियान की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य वर्षा जल को उसी स्थान पर संचित करना, भूजल को रिचार्ज करना और हाँ, जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाना था, है

0: और आगे भी रहेगा।
1: सन 2021 में इसे पूरे भारत की सभी जिलों, ब्लॉकों और शहरी निकायों तक विस्तारित किया गया। इसके बाद ये वार्षिक अभियान बन गया और हर वर्ष अलग अलग थीम के साथ चलाया गया। सरकार ने इस अभियान के अंतर्गत
0: वर्षा जल संचयन यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाओं का निर्माण और मरम्मत कराई। 8,31,000 से अधिक वर्षा जल संचयन प्रणालियों का निर्माण किया गया।
1: तालाबों, कुओं और पारंपरिक जल स्रोतों का पुनर्जीवन किया। 2,24,000 से अधिक पुराने तालाबों, बावड़ियों और कुओं को साफ कर दोबारा जीवित किया गया।
0: मैपिंग और जियो टैगिंग कराई गई।
1: नमामि गंगे कार्यक्रम गंगा और उसकी सहायक नदियों को प्रदूषण मुक्त करने और उनके पारिस्थितिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए सैकड़ों परियोजनाओं को पूरा किया गया।
0: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी PMKSY प्रति बूंद अधिक फसल पर ड्रॉप मोर क्रॉप के नारे के साथ ये योजना ड्रिप और स्प्रिंकलर यानी फुव्वारा सिंचाई तकनीकों को बढ़ावा देती है जिससे कृषि में पानी की भारी बचत होती है।
1: ग्राम सभाओं में जल शपथ कार्यक्रम आयोजित किए। स्कूलों, पंचायतों और शहरी निकायों को जल संरक्षण से जोड़ा। महिलाओं और स्थानीय समुदायों की भागीदारी बढ़ाने पर विशेष जोर दिया।
0: इस अभियान ने उत्तरोत्तर प्रगति ही की है, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि लगभग 36 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए। 24,24,000 जल निकायों यानी वाटर बॉडीज की गणना की गई, जिससे देश की पहली व्यापक जल निकाय गणना बताया गया। लगभग 670 से अधिक जल शक्ति केंद्र स्थापित किए गए। केंद्रीय भूजल बोर्ड के अनुसार देश में वार्षिक भूजल पुनर्भरण यानी ग्राउंड वाटर रिचार्ज 2017 के 432 BCM बिलियन क्यूबिक मीटर से बढ़कर 2026 में 448.52 BCM हो गया। जल संचय जन भागीदारी पहल के अंतर्गत मई 2026 तक देश भर में 1,55,00,000 से अधिक कार्य दर्ज किए गए, जिनमें 1,22,00,000 से अधिक कार्य पूर्ण हो चुके थे।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के विभिन्न एपिसोडों में जल संरक्षण को जन आंदोलन बताया और गांव-गांव में काम कर रहे लोगों को जल योद्धा के रूप में प्रेरणादायक नागरिक कहा। एपिसोड 61 23 फरवरी 2020 इस एपिसोड में प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा, देश के अलग अलग हिस्सों में लोग, NGO और समुदाय जल संरक्षण के काम में तेजी से जुड़ रहे हैं।
0: 2020 से 2024 के कई एपिसोड्स में उन्होंने कहा, गांव में लोग स्वयं तालाब सुधार रहे हैं, गैर सरकारी संगठन और युवा जल संरक्षण अर्थात वाटर कंजर्वेशन कर रहे हैं, देश के नागरिक वर्षा जल संचयन प्रणाली अर्थात वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस सामूहिक प्रयास यानी के कलेक्टिव एफर्ट्स को मीडिया और स्पीचेस में जल योद्धा यानी के वाटर वॉरियर्स कहा जाने लगा है।
1: अट्ठाईस फरवरी 2021 को मन की बात के एपिसोड 74 में इस संदर्भ में किए गए स्थानीय प्रयासों को उदाहरणों के रूप में बताया गया। इस एपिसोड में असम के मंदिरों द्वारा पर्यावरण संरक्षण के प्रयास, काजीरंगा में जल एवं जैव विविधता संरक्षण यानी बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन आदि के बारे में उल्लेख किया गया था।
0: ये सब सुनकर हमें जोश तो आता है, पर फिर हम बस यही सोचकर चुप हो जाते हैं कि हम अकेले क्या कर सकते हैं। हमें ये समझना होगा, हर कार्य का प्रारंभ अकेले से ही होता है। आपने सुना तो होगा ना, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए कारवां बनता गया। और हाँ, इसका जीता जागता उदाहरण

0: कारण है शिवम माँ।
1: जी हाँ साथियों, कर्नाटक के कोप्पल जिले के सूखे गांव में जल संकट दूर करने वाली शिवम माँ एक प्रेरणादायक वाटर वॉरियर है। उन्होंने जल संरक्षण की दिशा में असंभव को संभव कर दिखाया। कोलूर गांव में शिवम्मा के नेतृत्व में जल एवं स्वच्छता समिति ने जल प्रबंधन पर काम किया। ये गांव जो कभी पानी की कमी से परेशान था, आज टिकाऊ जल प्रबंधन का मॉडल माना जाता है। शिवम्मा ने वन विभाग से अनुमति ली और स्थानीय महिलाओं की सहायता से एक पहाड़ी के बीचों बीच 107 मीटर लंबी और 12 फीट चौड़ी खाई खोदी। इस अद्भुत पहल के जरिए उन्होंने बारिश के पानी के प्राकृतिक बहाव की दिशा को सफलतापूर्वक मोड़ दिया।

0: सांस्कृतिक बहाव की दिशा को सफलतापूर्वक मोड़ दिया। गांव की झील में पानी के संग्रह में भारी वृद्धि हुई।
1: डॉक्टर राजेंद्र सिंह एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद और जल संरक्षणवादी हैं, जिन्हें भारत के जल पुरुष यानी वाटरमैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। राजस्थान के अलवर जिले में सूखे की समस्या को दूर करने के लिए उन्होंने पारंपरिक जल संचयन विधियों जैसे जोहाड़, वर्षा जल को रोकने के लिए छोटे मिट्टी के बांध को पुनर्जीवित कर हजारों गांवों को पानीदार बनाया। उन्होंने राजस्थान के सैकड़ों गांवों में 8,600 से अधिक जोहाड़ और जल संरचनाओं का निर्माण किया। उनके अथक प्रयासों से राजस्थान की कई सूखी नदियां जैसे अलवरी, रूपारेल, सरसा, जहाजवाली और भागनी फिर से बारहमासी यानी कि सदाबहार हो गई। जब ये लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम में से कुछ लोग ये सोचते हैं कि सभी करते हैं तो मेरे एक के ना करने से क्या फर्क पड़ेगा, पर तनिक विचार कीजिए कि जैसे हम सोच रहे हैं वैसा हर कोई सोचने लगे तो।
0: इस पर मुझे एक कहानी याद आती है। एक गांव में राजा ने फरमान जारी किया कि दुग्ध का तालाब बनाने के लिए सभी अपने घर से एक एक गिलास दूध लाएंगे और दुग्ध तालाब को भरेंगे। पूरे गांव में हर नागरिक ने यही सोचा कि सभी तो दूध लाएंगे तो मेरे एक के पानी ले जाने से क्या फर्क पड़ेगा। और हुआ यूं कि केवल एक मासूम बालक को छोड़कर पूरे गांव के लोग केवल पानी ही लेकर आए। तो कहानी का तात्पर्य समझ रहे हैं ना आप? सहकार्य का अर्थ सहकार्य ही होता है।
1: तो आइए हम कुछ सरल संकल्प लें। अनावश्यक बहते नल बंद करेंगे,
0: वर्षा जल संचयन अपनाएंगे,
1: तालाबों और जल स्रोतों को स्वच्छ रखेंगे,
0: अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे,
1: पानी का पुनः उपयोग करेंगे।
0: याद रखिए, जल संरक्षण केवल विकल्प नहीं आवश्यकता है।
1: अंततः इन्हीं पंक्तियों के साथ आपसे विदा लेते हैं।
0: बूंद बूंद से सागर बने, बूंद बूंद से खेत, जल बचाओ जीवन बचाओ, यही है असली हेत।
1: आज हम सभी मिलकर यही करते हैं प्रण, हर संभव प्रयास करेंगे करने जल संरक्षण।
2: अब तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम सजग भारत।
0: ये कार्यक्रम आकाशवाणी हैदराबाद केंद्र के अंतर्गत प्रसारित किया गया।
3: ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ఎస్ఐఆర్లో భాగంగా ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితా ఆగస్టు 15న ప్రచురించబడింది. క్లైమ్స్ అండ్ అబ్జెక్షన్స్ స్వీకరణ దశ అక్టోబర్ 7 వరకు పొడిగించారు. మీ వివరాలు జాబితాలో చెక్ చేసుకోండి. కొత్తగా ఓటర్గా నమోదుకు ఫామ్ 6 తో పాటు డిక్లరేషన్ ఫామ్, తొలగింపులకు ఫామ్ 7, ఇతర సవరణలకు అలాగే చిరునామా మార్పిడికి ఫామ్ 8 ను సమర్పించాలి. స్పెషల్ క్యాంపెయిన్ 2వ దశలో భాగంగా ఈ నెల 12-13 తేదీల్లో అన్ని పోలింగ్ కేంద్రాల్లో మీ బిఎల్ఓలు అందుబాటులో ఉంటారు. పూర్తి వివరాలకు 1950కు కాల్ చేయండి. జారీ చేయవారు ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి, తెలంగాణ.
4: బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా ఖాతాదారులకు, శ్రేయోభిలాషులకు, శ్రోతలకు వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు. అతి తక్కువ వడ్డీ రేట్లు, సులభమైన ప్రాసెసింగ్ తో మీ సొంతింటి కలను సాకారం చేసుకోండి బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడాతో.

कि उसको उसको सीख सके और बोल सके। इसीलिए तो हिंदी एक ऐसी ऑफिशियल लैंग्वेज है जहाँ पे सब लोग उसके उसको बोलते हैं और समझते भी हैं। और कभी-कभी क्या होता है कि हम अपने रोज़ के लाइफ में, डेली लाइफ में एक नहीं कई भाषाओं का प्रयोग करते हैं, हम कई भाषाओं को अपनाते हैं। हम शायद घर पे कोई और भाषा बोल रहे हो, ऑफिस में कोई और भाषा बोल रहे हो, और जब हम किसी अपने दोस्त के साथ होते हैं तो कोई और भाषा बोलते हैं। यही है हमारे भारतीय होने का एक सुंदरता है, और यही शायद समानता है, जैसे कहते हैं ना कि एकता, समानता, एकता, और जो भारत को एक धागे में पिरो के रखती है वो है हिंदी। और इसी पे मुझे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की एक लाइन याद आती है कि निज भाषा उन्नत अहे सब उन्नत को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहिं के शूल। सो ऐसे ही हम और बातें करेंगे, हिंदी के बारे में बात करेंगे, विनायक चतुर्थी के बारे में बात करेंगे। अभी के लिए सुनते हैं गाना जो है राहत फतेह अली जी की आवाज़ में, सजदा।

वेलकम बैक लिसनर, दिस इज़ आकाशवाणी एफ एम रेनबो 101.9। रेनबो के साथ लाइफ है रंगीन। और जब मैं बात करती हूँ कि भाषा का महत्व क्यों है, जब रेलवे स्टेशन पे अगर कोई अनाउंसमेंट करना हो, कोई इमरजेंसी अलर्ट बताना हो, और पूरे बैंक में कोई नोटिफिकेशन दिखाना हो, या जो हम बोलचाल की भाषा में किसी सरकारी कर्मचारी से जब हम सुनते हैं उसे, उसी की वजह से एक ऐसी भाषा का उपयोग किया जाता है जो पूरी जनता, भारत की पूरी जनता समझ सके।

0: वेलकम बैक लिसनर, दिस इज़ आकाशवाणी एफ एम रेनबो 101.9, रेनबो के साथ लाइफ है रंगीन। और हम बात कर रहे थे भाषा का, और हैदराबाद में इतना ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है कि हम घर में एक भाषा का प्रयोग करते हैं, बाजार में कुछ दूसरी भाषा का प्रयोग करते हैं, ऑफिस में एक दूसरी भाषा का, और जब फ्रेंड्स के साथ होते हैं तो दूसरी भाषा का। और जो भाषा होता है वो आप भाषा चेंज कर रहे हैं, पर्सनालिटी नहीं, आपका जो आइडेंटिटी है सेम है। तो ये जो बोलचाल की भाषा होती है या कम्युनिकेशन का होता है, ये एक ब्रिज है, वॉल नहीं है, कोई दीवार नहीं है, एक ब्रिज है जो एक आपको एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है। और ऐसे ही बहुत सारी बातें करनी है, और गणेश चतुर्थी के बारे में बातें करनी है, लेकिन अभी टाइम है थोड़ा एक 12 बजे की न्यूज़ का, कुछ ताज़ी ताज़ी खबरों का, ठीक है? वो सुनते हैं और फिर न्यूज़ पर भी चर्चा करेंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक पर भी चर्चा करेंगे। सो दिस इज़ आकाशवाणी एफ एम रेनबो 101.9, रेनबो के साथ लाइफ है रंगीन।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सभी सदस्य देशों का आभार व्यक्त किया है। शिखर सम्मेलन के विशेष क्षणों को दर्शाने वाला एक वीडियो प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया गया है। वीडियो में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के माध्यम से भारत ने विश्व स्तर पर मित्रता, साझेदारी और सहयोग को आगे बढ़ाया है। श्री मोदी ने कहा कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा दृष्टिकोण और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
2: पिछले 2 दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं, सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है। हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा।
1: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 11 सदस्य देशों और 10 भागीदार देशों के नेताओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी भाग लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन की सफलता ने वैश्विक मंच पर भारत की मजबूत छाप छोड़ी है। श्री सिंह ने कहा कि ऐतिहासिक नई दिल्ली

0: घोषणा पत्र भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव का प्रमाण है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने तिरुकुरल के प्रचार प्रसार के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की है। उन्होंने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को तिरुकुरल के रूसी अनुवाद की प्रति भेंट करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी दिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एधनॉम घेब्रियासिस ने कहा है कि इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय सीधे तौर पर वैश्विक स्वास्थ्य से जुड़ा था। उन्होंने देशों से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा निगरानी, चेतावनी प्रणाली और स्थानीय उत्पादन को मजबूत करने का आग्रह किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करेंगी। मुंबई में श्री शाह ने कहा कि कई राज्यों में यूसीसी लागू हो चुकी है और 2029 से पहले भाजपा एनडीए शासित सभी 21 राज्यों में इसे लागू कर दिया जाएगा। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया था। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत में कई भाषाओं का होना देश की सबसे बड़ी ताकत है। हिंदी दिवस पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा किसी दूसरी भाषा की प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है।
1: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हिंदी दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि भारत की संस्कृति, सभ्यता और जीवन मूल्यों की सशक्त अभिव्यक्ति है। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा है कि उनका देश भारत के साथ संबंधों को द्विपक्षीय बातचीत के जरिए आगे बढ़ाना चाहता है। ढाका में उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को भारत के साथ आपसी हितों के आधार पर नए सिरे से काम करना चाहिए। भारत बांग्लादेश सीमा से जुड़े हाल के मामलों पर श्री कबीर ने कहा कि ढाका अंतर्राष्ट्रीय कानून, सीमा संबंधी नियमों और द्विपक्षीय समझौतों के तहत कूटनीतिक बातचीत से मुद्दों का समाधान करेगा। भारत ने T20 महिला एशिया कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल भारतीय टीम ने श्रीलंका को 72 रन से हराकर 8वीं बार एशिया कप अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Hindi Divas is being celebrated across the country today. It was on this day in 1949 that the Constituent Assembly adopted Hindi, written in Devanagari script, as the official language of the country. Today, Hindi is one of the widely spoken languages in the world and the first language of more than 52 crore people. Union Home Minister Amit Shah will attend the Hindi Divas 2026 program and the 6th All India Rajbhasha Sammelan, official language conference in Navi Mumbai today. Sharing a video message on Hindi Divas today, he said that Hindi language is not the competitive language of any other language, but an important connecting thread of national unity.
1: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
2: Home Minister Amit Shah has said that BJP-led NDA governments in 21 states will introduce the Uniform Civil Code, UCC, before 2029. Speaking to reporters in

0: वेलकम बैक लिसनर, दिस इज़ आकाशवाणी एफ एम रेनबो 101.9, रेनबो के साथ लाइफ है रंगीन। और हम बात कर रहे थे भाषा की, आपने न्यूज़ में भी भाषा के बारे में सुना। आज हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं, और जब से टेक्नोलॉजी आई है तब से भाषा को सीखना बहुत ही आसान हो गया है। हम कोई भी भाषा हम अपने स्क्रीन पे देखते हैं तो उसे हम समझ सकते हैं।
1: ऑफकोर्स AI यूज़ हो रहा है आजकल ट्रांसलेशन में। मैं भी कभी कभी कोई वर्ड समझ नहीं आए तो उसको हिंदी में क्या कहते हैं, मैं मतलब AI से पूछ लेती हूँ। जैसे कन्फ्यूजन,
0: भ्रम,
1: भ्रम, अच्छा। जैसे डिफरेंस,
0: अंतर,
1: ओके। जैसे कॉन्फिडेंस,
0: विश्वास।
1: अरे तुम तो मेरे AI हो।
0: जी बिल्कुल। और एक ही भाषा नहीं, अब भारत की कोई सी भाषा अगर आपके स्क्रीन पे आ रही है तो आप उसे ट्रांसलेट करके किसी भी भाषा में उसे, जिस भाषा को आप समझते हैं, फॉर एग्जांपल अगर वो आपके तेलुगु में आ रही है तो मैं उसे हिंदी में पढ़ती हूँ।
1: हाँ वो भी है, तो तुम भी

0: हिंदी, मैं हिंदी सीख जाऊंगी, तुम तेलुगु सीख जाओ, और हम एआई का यू नो हेल्प लेके कर सकते हैं. लेकिन वैलिडेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है. कभी कभी एक ही शब्द के दो मीनिंग्स होते हैं.
1: हाँ, और स्पेशली ये जब होता है जब हम कोई वॉइस नोट भेजते हैं या वॉइस नोट से हम टेक्स्ट टाइप करते हैं तो वो कुछ अर्थ का अनर्थ आ जाता है। आपने कभी
0: घोर अनर्थ आ जाता है. कभी ना बहुत बार ऐसे हुआ है.
1: हाँ, मेरे साथ भी। और आजकल तो मुझे बस जो भाषा कह सकते हैं कि ईमेल्स एंड ऑल भी जब हम देखते हैं तो वो केवल भारतीय भाषा में नहीं, मुझे जापान में आ रहा था ईमेल मैम। फिर उसने हाँ फिर मुझे उन्होंने कहा कि किस भाषा में ट्रांसलेट, मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सीखा। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ जब से टेक्नोलॉजी आई है तब से किसी भी भाषा को समझना, सीखना, पढ़ाना, बोलना, उसे शेयर करना आसान हो गया है।
0: ब्यूटिफुल इंडीड. सही बताया आपने.
1: और अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि जो ऐसे हम हिंदी की बात कर रहे हैं तो हिंदी की सबसे पुरानी कहावत आपकी आपको कौन सी याद है?
0: कहावत तो अभी तो कुछ याद नहीं आ रहा है, लेकिन मेरी हिंदी टीचर हमेशा कहती थी कि खामोश.
1: खामोश। जी हाँ, हम और खामोश हो जाएंगे। और चलिए इनको कुछ गाना सुनाते हैं।
0: बिल्कुल.
1: दिस इज आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9, रेनबो के साथ लाइफ है रंगीन।

0: ईरानी चाय,
1: बन मस्का,
0: हैदराबादी बिरयानी,
1: टंग दी कबाब,
0: कुर्बानी का मीठा,
1: शहदूद मलाई,
0: हैदराबाद इज अ ग्रैंड बफे
1: एंड एवरी डिश हैज अ स्टोरी वेटिंग टू बी टोल्ड.
0: एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई जश्न ए हैदराबाद इज योर आफ्टरनून ट्रीट
1: फ्रॉम 2 to 3 PM एवरी डे ऑन FM रेनबो 101.9.
0: It's not just food.
1: It's culture, history and flavor rolled into one.
0: Jashne Hyderabad.

0: वेलकम बैक लिसनर, दिस इज़ आकाशवाणी एफ एम रेनबो 101.9। रेनबो के साथ लाइफ है रंगीन और हम इतने सारी बातें कर रहे हैं, फेस्टिवल्स के बारे में बात कर रहे हैं, हिंदी दिवस के बारे में बात कर रहे हैं। और आपने कभी सोचा है कि जो आप बचपन में का खा गा घा पढ़ते थे वो उसके पीछे एक रीज़न था कि क्यों का के बाद खा आया, गा आया, घा आया, आपको पता है जयश्री?
1: नहीं, इतना नहीं सोचा है। कका गगा गगा करके बोलते थे बचपन में, और वो भी रट्टा मार
0: हाँ,
1: के
0: तो जो का है वो कंठ से आता है, नहीं गले से आता है।
1: का
0: हाँ, खा है वो अंदर से आता है।
1: फ्रॉम द एपिग्लॉटिस।
0: यस,
1: हाँ,
0: गा सो कुछ शब्द में
1: कका।
0: हाँ फ्लो
1: ओके,
0: होता है, किसी में वाइब्रेशन होता है, किसी में माउथ की पोजीशन होती है।
1: माय गॉड, कहाँ से लाई हो इतना इन्फॉर्मेशन जागृति?
0: सबको बताना था ना
1: हम सबको
0: इसे।
1: जागरूक कर रही हो तुम हिंदी भाषा के बारे में। और हिंदी दिवस है आज, इट्स अ ब्यूटिफुल सेलिब्रेशन टू नो मोर अबाउट द लैंग्वेज। थैंक यू फॉर सो मच इन्फॉर्मेशन।
0: जी हाँ, और जब हम हमको पता भी नहीं था कि बचपन में हमारे दिमाग में एक मिनी लेबोरेटरी भी था। और अगर हम भाषा की बात कर रहे हैं, जब हम अपने इमोशंस को, अपने भावों को हैंड रिटन ऐसे किसी को नोट देते हैं तो और स्पेशल बन जाता है। और किसी किसी को होता है कि भाषा तो आती है लेकिन लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है।
1: बिल्कुल। एंड बहुत सारे लोगों को मीडियम, मतलब इनिशियल मीडियम लेवल्स रहते हैं। अगर इनिशियल लेवल है तो सिर्फ बोलना आता है, मीडियम मतलब लिखना पढ़ सकते हैं, और एडवांस लेवल इज बोलना, पढ़ना, लिखना, तीनों आता
0: हाँ,
1: है।
0: और उनके जो कभी टेक्स्ट आपको मिल जाए तो स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ जाएगी उसको पढ़ने के लिए।
1: वेरी ट्रू, वेरी ट्रू।
0: और अगर हम पर्सनल लेटर की बात कर रहे हैं तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं टेक केयर, लेकिन अगर उसी को अपने हाथ से नोट लिख के या किसी स्पेशल ओकेज़न पे, फॉर एग्जांपल आपके लिए किसी ने बहुत हेल्प किया हो और

0: आपको लाइक आपका सिचुएशन अच्छा नहीं था और उन्होंने आपकी आपको आके हेल्प करके आपके उस सिचुएशन में आपको मोटिवेशन किया हो कि नहीं हो जाएगा, तो अगर उनको आपको धन्यवाद कहना है तो एक छोटा सा हाथ से लिखा हुआ नोट लिख के दीजिए, आप उनके चेहरे की खुशी देख सकते हैं।
1: एब्सोल्युटली. एंड आई थिंक हमारी अपनी भाषा में ना हमारे इमोशंस जुड़े होते हैं.
0: ट्रू मैम, तो ऐसे ही होता है कि, और चलिए मैं आपको एक प्रश्न के साथ छोड़ के जाती हूँ कि आज आज के दिन हमारे पास विनायक चतुर्थी सेलिब्रेट कर रहे हैं, हिंदी दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप अपने किसी को एक छोटा सा हैंड रिटन मैसेज भी दीजिए और देखिए उनका एक्सप्रेशन क्या रहता है।
1: मैं अभी तुम्हें देने वाली हूँ.
0: जी बिल्कुल, दिस इज आकाशवाणी FM रेनबो 101.9, रेनबो के साथ लाइफ है रंगीन।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफ एम रेनबो 101.9। रेनबो के साथ लाइफ है रंगीन, और हम भाषा की बात कर रहे हैं। किसी भी कोई भी भाषा जब हम बात करते हैं तो बिना उनके लिटरेचर, उनके पोएट, राइटर्स, लेखक, उनके बिना अधूरा होता है। और अगर हिंदी की बात करें तो जो अब बहुत सारे हैं, शायद मेरा एक दो नाम छूट भी जाएगा, लेकिन जो सबसे पहले राइटर मेरे दिमाग में आते हैं मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद से रेडियो तक उनका जो हिंदी का सफ़र है, उस समय के जो जमींदार प्रथा था और गांव की गरीबी, ग्रामीण क्षेत्र जो पूरी व्यवस्था थी, उसके बारे में उन्होंने कई सारे उपन्यास लिखे हैं, जैसे गोदान, गबन, सेवा सदन। और गोदान तो मैं रिकमेंड करूँगी आप ज़रूर पढ़िए। अगर आप 80s 90s में कैसी जीवन थी और उस समय पे जो जमींदारी प्रथा थी उस पे ये है। और फिर हम बात करेंगे हमारे प्रकृति के सुकुमार जी, आपने सही समझा, प्रकृति के सुकुमार के बारे में। उनको कहा है इसलिए जाता था क्योंकि उनकी जो कविताएं थीं वो पूरा प्रकृति के ऊपर, जैसे पहाड़, माउंटेन्स, ये इसके पीछे मोटिव ये था कि जो राइटर्स हैं वो नेचर से और कनेक्ट हो जाएं और हमको सुकून मिलता है नेचर्स में, तो इसीलिए वो कविताएं उस पर लिखी जाती थी। और अगर हम ओजस्वी कविता की बात करें तो हम रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में बात करते हैं। आपने तो उनका सुना होगा, कृष्ण की चेतावनी, बरसों तक वन में घूम घूम बाधा विपदों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। जी हाँ, ऐसी ही उनकी कविताएं थी। फिर हम बात करेंगे प्रसाद जी की, निराला जी की, जो निराला जी की सुरकांत त्रिपाठी उनका नाम था और निराला उनको उपाधि दी गई।

थी, टाइटल दिया गया था। उनकी कविताएं थोड़ी एक्सपेरिमेंट होती थी, प्रयोगवादी कविताएं होती थी। और फिर मैथिली शरण गुप्त जी हैं, महादेवी वर्मा जी हैं, इतनी सारी कविताएं, इतने सारे लेखक, और सबसे महत्वपूर्ण में तुलसीदास, कबीर, सूरदास, रहीम, मीराबाई, इतने सारे हैं। अगर मैं उनकी कविताएं बताना शुरू करूं तो आपको लगेगा आज तो उनकी कविता हम जरूर पढ़ेंगे।

0: उनकी कविता हम जरूर पढ़ेंगे। और जो बहुत ही फेमस कविता है कबीरदास जी की, जो हम सब सुनते हैं, पढ़ते हैं और हमारे जो जीवन के लिए भी बहुत अच्छी है, कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोय, जब देखा मन आपनू, मुझसे बुरा न कोय। मतलब हम सोचते हैं ना कि पहले खुद के अंदर देखना चाहिए हम कैसे हैं और हमारा वर्ताव क्या है दूसरों के प्रति। यही उनके जो कबीरदास के स्पेशली जो दोहे हैं हमारे डेली जीवन के लिए बहुत होते हैं, कि जो हमें अपनाना भी चाहिए। और भी बातें करेंगे और गणेश चतुर्थी के बारे में बातें करेंगे। आज मैं स्टूडियो में अकेली नहीं हूँ, हमारे जो ये बातचीत का सिलसिला और इस फेस्टिवल को और अच्छे से मनाने के लिए मेरे साथ यहाँ पे स्टूडियो में है जयश्री।
1: हेलो पीपल, मैं भी हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं तो हैरान परेशान हो रही हूँ। इतना इन्फॉर्मेशन जागृति ला कहाँ से रही है? वो तो मतलब पोएट्री कर रही है यहाँ पे, बिना देखे बिना पढ़े। शी इज जस्ट गोइंग ऑन एंड ऑन। हैट्स ऑफ टू योर लैंग्वेज नॉलेज।
0: थैंक यू। और मुझे तो ऐसा कभी लग रहा कि समय कम पड़ रहा है आज मुझे।
1: पता नहीं क्यों, मतलब वक्त ना इतना फास्ट फास्ट जा रहा है कि आई बेटर नॉट टॉक हिंदी इन फ्रंट ऑफ यू। द टाइम इज जस्ट रनिंग, द टाइम इज जस्ट रनिंग।
0: हाँ, समय बहुत ही, मुझे भी 10 से 1 बजने वाले हैं स्टूडियो क्लॉक में, टाइम है 12:43:32। और ऐसा लग रहा है अभी और भी बातें करनी है, और भी चीज़ें बतानी है। बट यहीं पे हम अपनी वाणी को विराम देंगे और सुनते हैं अगला गाना।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफ एम रेनबो 101.9, रेनबो के साथ लाइफ है रंगीन। मैं हूँ आपकी आज जागृति। हमारे साथ स्टूडियो में है आज जयश्री। हम हिंदी के बारे में बात कर रहे थे कि बहुत ऐसे फेमस लिरिसिस्ट भी हुए हैं जो हिंदी बॉलीवुड को एक अच्छे मुकाम पे लेके गए हैं। मैं कुछ नाम मेंशन करना चाहूँगी और शायद मैं कुछ मिस हो गया होगा तो उसके लिए क्षमा। सहीर लधुआनवी, गुलजार, जावेद अख्तर, कैफ़ी आज़मी, आनंद बख्शी और कितने ही लिरिसिस्ट हैं जिन्होंने वर्ड्स को मेलोडी के साथ हमारी मेमोरीज का हिस्सा बना दिया है। कभी कभी हम सिंगर का नाम तो याद रखते हैं लेकिन एक्टर का भी नाम याद रखते हैं, एक्ट्रेस का भी नाम याद रखते हैं लेकिन लिरिसिस्ट का नाम भूल जाते हैं। तो आज हिंदी दिवस पे मैं आपसे एक होमवर्क दे रही हूँ कि जो आपके फेवरेट लिरिसिस्ट है या कोई फेवरेट हिंदी गाना है उसे सुनिए और उसके लिरिसिस्ट का नाम भी पढ़िए। सो दिस इज आकाशवाणी एफ एम रेनबो 101.9, रेनबो के साथ लाइफ है रंगीन।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो, रेनबो के साथ लाइफ है रंगीन। मैं हूँ आपकी आरजी जागृति। हमारे साथ स्टूडियो में है आरजी जयश्री। आज एक और बहुत ही स्पेशल पर्सन का बर्थडे है जिन्होंने अपनी जर्नी एज ए आरजे शुरू किया था। जी हाँ, उनका आपको पता है कौन है वो?
1: नहीं, अरे
0: उनका नाम है आयुष्मान खुराना।
1: आज आयुष्मान खुराना का बर्थडे है।
0: हाँ, उनका तो पहला गाना याद होगा ना, पानी दा।
1: आई जस्ट लव दैट सॉन्ग।
0: यस और ये जर्नी इसीलिए स्पेशल है कि एज ए आरजे उन्होंने शुरुआत किया और उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को एज ए सिंगर, एज ए एक्टर, पूरा एज ए लिरिसिस्ट भी उन्होंने कई सारे लिखे हैं। तो हम अपनी जर्नी कहाँ से शुरू करते हैं, हमारा मुकाम कहाँ होता है, हमारा मंजिल कहाँ होता है, हमें नहीं पता होता। लेकिन
1: जब सुपर टैलेंटेड हो जाते हैं ना, मल्टी टैलेंटेड, तो लाइफ जस्ट थ्रोज अपॉर्चुनिटीज एट यू।
0: यस, सो चलिए सुनते हैं उनका एक गाना, पानी दा रंग देख के।

0: जिन्होंने कविता को एक नई दिशा दी है, उनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। उनकी कविता भी उनके नाम जैसे ही अटल थी। वो अपनी जीवनी में भी लिखे हैं कि अगर वो नेतृत्व नहीं कर रहे होते देश का, तो एक महान कवि तो जरूर बनते। और ये वो कह नहीं रहे हैं, उनकी कविताओं से हम देख भी सकते हैं। जो उनकी फेमस कविता है गीत नया गाता हूँ, उनकी चार पंक्तियाँ मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ मैं गीत नया गाता हूँ। ये जो कविता है ना, हमारे युवाओं के लिए, यंगस्टर्स के लिए एक मोटिवेशन है कि डजेंट मैटर कि हमारे सिचुएशन क्या है, परिस्थितियाँ हमारे विपरीत हो सकती हैं, लेकिन हमें अपने हमारा जो मंजिल है, हमारा जो मकसद होता है, उससे कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो कितनी सारी बातें करनी है, और अभी तो हम गणेश चतुर्थी के सेलिब्रेशन भी करेंगे। आप कॉलर से ये भी पूछेंगे कि, और मैं तो भूल ही गई, अभी तो हमारा समय हो गया है हेलो रेनबो लाइव इन प्रोग्राम का।
1: Yes, hello Rainbow. Live phone in program is gonna be. I mean, it's already begun. अगर आपको हमसे बात करना है, Instagram, sorry, WhatsApp messages तो आप भेज ही रहे हैं 9140232342 पर. अभी जागृति बताएगी हमारे फोन इन के नंबर्स. 9140232342 हमारा व्हाट्सएप नंबर है. एंड 0402323481 पे आप कॉल कर सकते हैं. 0402323481 पे कॉल कर सकते हैं. एंड थ्री दो और नंबर्स हैं, मैं बताऊंगी, पहले इस पे आप कॉल कीजिए. एंड विल बी राइट बैक, स्टे ट्यून्ड. वी गोना टॉक अबाउट टॉपिक क्या है जागृति?
0: टॉपिक ये है मैम कि हमारे जो घर पे होता है, हमारे मोहल्ले में होता है, जो गणेश पूजा होता है, वो डिफरेंट स्टाइल में मनाया जाता है। और अगर हम बात करें घर पे ही नहीं, स्टेट वाइज भी एक डिफरेंट डिफरेंट कल्चर फॉलो होता है, जो यूनिक होता है हर स्टेट के लिए।
1: ऑफ कोर्स.
0: उसके बारे में बात करेंगे, हम अपने कॉलर से पूछेंगे कि वो कैसे सेलिब्रेट करते हैं अपने घर पे।
1: हाँ जी. सो 0402323 0030, 0402323481 और 0402970471 पर आप कॉल कर सकते हैं. तीनों लाइंस राइट नाउ चालू है. कॉल कीजिए और हमसे बात कीजिए राइट हियर राइट नाउ. स्टे ट्यून्ड, ये है आकाशवाणी FM रेनबो 101.9. रेनबो के साथ है लाइफ रंगीन.

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो 101.9। रेनबो के साथ लाइफ है रंगीन। मैं हूँ स्टूडियो में आरजे जागृति, हमारे साथ है आरजे जयश्री। और जब हम हिंदी की बात करते हैं और नई कविता की अगर हम बात करें, तो हमारे देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री थे वो अभी नहीं है हमारे बीच में,

0: माय गॉड, दिस इज सो स्वीट. सबके गणेश के घर पे, जो घर पे गणेश है ना, उसके पूजा के फोटोज भेज रहे हैं. दिस इज सो नाइस. थैंक यू सो मच आरजे जेडी. एंड यहाँ पे हमें मैसेजेस आ रहे हैं. नाम तो उन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन पढ़कर सुना देते हैं. नमस्ते आरजे जयश्री जी, नमस्ते आरजे जागृति मैम, हैप्पी हैप्पी फेस्टिवल गणेश चतुर्थी. एंड मेरे लिए गाने की फरमाइश है कि जहाँ की प्रीत सदा में गीत, वहीं दोहराता हूँ भारत का रहने वाला हूँ मैं.
1: भारत
0: भारत
1: की बात
0: जी, बात,
1: बताता हूँ.
0: ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. ये गाना बिल्कुल हम प्ले करने की कोशिश करेंगे. और आपने क्यूट सा ग्रीन, वाइट और ऑरेंज इन डिफरेंट ऑर्डर आपने इंडिया फ्लैग के और पे अपने आइकन्स लगाए हैं, इमोजीज. दैट्स वेरी वेरी स्वीट. एंड चार लाइन भी लिखे हैं. वेल, दिल में तुम्हारे अपनी कमी छोड़ जाएंगे, आंखों में इंतजार की लकीर छोड़ जाएंगे, याद रखना मुझे, ढूंढते फिरोगे एक दिन, जिंदगी में दोस्ती की कहानी छोड़ जाएंगे.
1: वाह
0: वाह,
1: वाह वाह वाह.
0: ब्यूटिफुल. चलिए, और भी मैसेजेस हैं. जब तक हमारे कॉलर्स हमें फ़ोन करते हैं, हम मैसेजेस लेते हैं. जयश्री जी नमस्ते, जागृति जी नमस्ते, रेनबो का लिसनर को नमस्ते. ओके, गणेश चतुर्थी का शुभकामनाएं. आप दोनों की आवाज़ बहुत प्यारी है और हिंदी की बातें अनोखी हैं. थैंक यू थैंक यू. जय श्री कृष्ण. और चार लाइन लिखे हैं बसवंत जी ने शांतिनगर से, तो हम पढ़कर सुना देते हैं.
1: काश मैं लौट जाऊं बचपन की उन गलियों में, काश मैं लौट जाऊं बचपन की उन गलियों में, जहां ना कोई ज़रूरत थी ना कोई ज़रूरी था.
0: वाह, जहाँ ना कोई ज़रूरत थी
1: ना कोई ज़रूरी था.
0: ना कोई ज़रूरी था. आजकल ज़रूरतें बढ़ गई है और लोग ज़रूरी बन गए हैं. सुचित्रा जी ने ये मैसेज किया है, एंड वो कहती है, तुम्हारा वॉइस बहुत अच्छा है, स्माइल करती रहो, बहुत अच्छे लगते हो, हैप्पी गणेश चतुर्थी. मैं सुचित्रा हूँ. थैंक यू सो मच सुचित्रा जी. अभी हमारे कॉलर, लेट्स सी हुज़ ऑन द लाइन.
1: हेलो रेनबो.
2: वेरी वेरी वेरी वेरी गुड आफ्टरनून मैडम. श्रीनिवास राव मलकपेट
0: गुड
2: माँ
0: आफ्टरनून सर. गणेश गौरी हब्बद शुभाकांक्षेगळु निमगे.
2: ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿನಾಯಕ ಚೌತಿ ಶುಭಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲೇನೋ, ನಮ್ದು ಮನ್ಯಾಗ ಏನಾಗೈತೆ, ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ
0: ಹಾಂ.
2: ಶಿ ವಾಸ್ ಕೊಲೆ ಆದಿತೆ.
0: ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಸರ್, ವೆನ್ ಡಿಡ್ ದಿಸ್
2: ಯಾ
0: ಹ್ಯಾಪನ್?
2: ಯಾ ಯಾ ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ವಿ ಡಿಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್. ಹಬ್ಬ ಇಲ್ಲ ನಮಗೂ.
0: ಹೌ ಇಸ್ ಶಿ ಸರ್ ರೈಟ್ ನೌ?
2: 7th ಆಫ್ ಜೂನ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಜೂನ್.
0: ಓಕೆ, ಬಟ್ ಹೌ ಇಸ್ ಶಿ ರೈಟ್ ನೌ?
2: ನೋ ನೋ, ಶಿ ವಾಸ್ ಪಾಲ್ಸರ್.
0: ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ, ಐ
2: ಪಾಲ್ಸರ್
0: ಥಾಟ್ ಶಿ ಇಸ್ ಅನ್ವೆಲ್. ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ ಸರ್, ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ.
2: ಯಾಮ ಯಾಮ ಯಾ ಯಾ ಯಾ ಬಿಕಾಸ್
0: ಬಟ್ ಇಫ್
2: ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ರಮಣಯ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅವರೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಾರ.
0: ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ ದಟ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಅವೇ.
2: ಯಾಮ ಯಾ ಯಾ
0: ಬಟ್ ಇಫ್ ಐ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ನ್ ಯು, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನೋ ಟುಮಾರೋ ಇಸ್ ದ ಡೇ ವೆರ್ ಮೈ ಫಾದರ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಅವೇ. ಸೊ
2: ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ,
0: ಯಾ,
2: ಯಾವಾಗ?
0: 2 years ago. So,
2: ಟೂ ಇಯರ್ಸ್
0: yes,
2: ಅಗೋ. ಸೋ
0: maybe we celebrate remembering our family members, and Ganesh ji always is looking upon us.
2: ಯೆಸ್ ಯೆಸ್ ಯೆಸ್ ಮೇಡಮ್, ಯೆಸ್ ಮೇಡಮ್.
0: ಯೆಸ್ ಯೆಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಸನಲ್
2: ಹಬ್ಬ
0: ಡೀಟೇಲ್ಸ್.
2: ಏನಿಲ್ಲ,
0: ಯೆಸ್
2: ಹುಡುಗನು 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, ಅವನು ಹೋಗ್ಯಾನ, ಮೊನ್ನೆ ಇವಳು ಹೋಗ್ಯಾನ.
0: I'm so so so sorry
2: yeah
0: sir.
2: yeah because
0: I'm with you, I'm
2: nothing,
0: with you,
2: nothing, because we didn't have got anything in our hands.
0: But loads of
2: upon
0: love from
2: upar ke
0: above.
2: Mardi hai apne ko kya karne ka hai, hum bole chalo. So my son is there in high-tech city.
0: Yes, अब दिल
2: got only
0: छोटा
2: two
0: ना
2: concerns,
0: करे. आप तमाम रेनबो लिसनर्स के साथ गणेश चतुर्थी मनाइए. जैसे
2: yes.
0: मैं मना रही हूँ यहाँ पे.
2: Yeah, sir, no, no problem. So the same topic, का
0: same topic sir, same topic.
2: Yeah. Young Martha did not manage. Because
0: new honor is there sir, your honor.
2: Yeah.
0: Yes
2: so,
0: sir.
2: So, nam gate hatre ne nam tamman maga irtan yavaglu.
0: Okay.
2: 15 varsh ago bitada.
0: Okay.
2: Since 15 years that fellow was putting the Ganesh.
0: Uh-huh.
2: So every time we do the in a very grand manner.
0: Yes.
2: So definitely this time also that fellow was putting. So
0: wonderful,
2: because
0: wonderful.
2: Other fellows will be there, so we'll all join with him.
0: Please
2: And
0: join, please join, and please celebrate from my side also, in
2: yeah.
0: Amirpet, no? Amirpet, right, sir?

0: I am in Malakpet.
1: Malakpet, sorry. Okay.
0: Yeah,
1: Please do
0: Malakpet,
1: celebrate
0: near Yashoda.
1: beautifully.
0: Yashoda.
1: Loads of love, sir. Thank you so much for calling.
0: Thank you, ma. Thank you very
1: Thank
0: much.
1: You. That was
0: Malakpet.
1: Yes,
0: Thank
1: that was Srinivas
0: you.
1: Chaucer from Malakpet, and he's a Kannadiga, so we talk in Kannada as well. Moving ahead, we have another caller.
2: Hello.
1: Hello.
3: Hello, Rainbow.
2: హలో నమస్కారం మేడం. వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు.
1: మీకు కూడా అండి. మీకు కూడా. ఎలా ఉన్నారు?
2: ఏంటంటే చాలా చాలా బాగుందండి. మీరు వస్తే మరి ఇంకా హ్యాపీ.
1: మేమిద్దరం వచ్చేసాం. మీ పేరు చెప్పండి. జాగృతి కన్ఫ్యూజన్ లో ఉంది.
2: కే రమేష్ అమ్మ.
1: కే రమేష్ జీ ఫ్రమ్ ఉస్మాన్ గంజ్.
3: ఆప్ సమజ్ మే ఆ గయా హై.
1: చెప్పండి సార్, ఉస్మాన్ గంజ్ లో హల్చల్ ఎలా ఉంది? ఏం నడుస్తుంది?
2: జబర్దస్త్ మదర్ బేగం బజార్ సీన్ కానీ మాకంతా దగ్గర కదా, చాలా బాగా అవుతుంది.
1: సూపర్ సూపర్. దువా మే హమే భీ యాద్ రఖియే.
2: చుట్టుముట్టు 2 కిలోమీటర్ల వరకు చాలా చాలా హంగామా ఉంటుంది.
1: మా కోసం కూడా పూజ చేయండి మన గణపతి బప్పాకి.
2: మన కోసమే కాదు, మన రెయిన్బో ఫ్యామిలీ మొత్తం కోసం, అందరి కోసం.
1: బిల్కుల్, రెయిన్బో ఫ్యామిలీ కి తరఫ్ సే పూజా కరే ప్లీజ్. థ్యాంక్ యూ. ధన్యవాద్ ధన్యవాద్. टॉपिक यही है कि गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन है, यही टॉपिक है.
2: ऐसे चल रहा हमारे पास भी, हमारे घर में भी अभी पूजा हो गया.
1: ओके, वंडरफुल.
2: अभी पूजा होगा, अभी पूजा होगा, प्रसाद खाने के लिए रेडी तैयार.
1: भेज दे हमें रेडियो स्टेशन पर भी, हम खा लेंगे सर. नहीं नहीं, बस ही प्यार से पूछा. चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट ग्रेट सेलिब्रेशन. वेल, देखो जागृति की उनकी बहुत ही पर्सनल बातें, उनकी लाइफ की बातें, उनकी फैमिली की बातें, उनकी ग्रीफ्स, उनकी हैप्पीनेस सब बांटते हैं हमारे कॉलर्स. और इसीलिए ये सेगमेंट जो है हेलो रेनबो बहुत ही स्पेशल है, मेरे दिल के बहुत करीब है.
3: आपने सही कहा, मैं भी जब इनसे बातें करती हूँ और जब ये बताना शुरू करते हैं तो मेरे लिए भी कई बार लर्निंग की चीज़ें होती हैं मैम. कई बार उन्होंने मुझे म्यूज़िक की एक ऐसी दुनिया के बारे में बताया जो शायद मैंने कभी सोचा भी नहीं था. एक कॉलर्स ने मुझे बताया था कि जब बारिश होती है और बारिश की बूंदें जब पत्तियों पर पड़ती है, उस आवाज़ का साउंड भी एक म्यूज़िक है.
1: हाँ, दैट इज़ इंडीड म्यूज़िक.
3: और कल जब हम उनसे कुछ सजेशंस लेते हैं तो वो बहुत अच्छे से बताते हैं, जो सबके लिए बहुत अच्छा होता है और मेरे लिए बहुत ही न्यू रहता है वो.
1: सही बात है. सर्वरली साहब ने बहुत खूबसूरत मैसेजेस भेजे हैं, हैप्पी विनायक चतुर्थी जय श्री मैम करके, और एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो का उन्होंने वीडियो भेजा है. एंड सबसे बहुत ही क्यूट मैसेज आया है हमें हुदा बाबानगर से. हुदा कहती है, हुदा चार लाइन कहती है, तो आप वो चार लाइन पढ़ के सुना दीजिए.
3: मेरा अंदाजा गलत नहीं है, वो शख्स अब पहले सा नहीं है.
1: वाह वाह वाह वाह.
3: वफा का क्या गिला करो उससे, जाना वो पहले कब मेरा था जो अब नहीं है.
1: अरे क्या हुदा, इतनी दिल की गहराइयों तक पहुंच गई तुम्हारी चार लाइन. और हुदा कहती है, हम जितनी भी लैंग्वेज सीख लें लेकिन कबूल है तो उर्दू में बोलना पड़ता कते.
3: और अगर हम कबूल है की बात करें तो इसको हिंदी में मैम आपको पता क्या कहते हैं?
1: अग्रीड. नहीं, हिंदी में ओके. नहीं, हिंदी में क्या कहते हैं मुझे क्या पता.
3: स्वीकार है.
1: स्वीकार है, स्वीकार है. डजंट साउंड लाइक कुछ प्रोडक्ट. वेल, स्टे ट्यून्ड, दिस इज आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9. विल बी राइट बैक विद मोर कॉलर्स. अंटिल देन, लिसन टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग राइट हियर राइट नाउ.

0: जागते रहो जागते रहो,
1: सिर्फ जागते नहीं सजग रहो,
0: सिर्फ रातों में नहीं जिंदगी के हर मोड़ पर सजग रहना है,
1: अफवाहों से
0: धोखाधड़ी से
1: जागरूक होना है, अपने अधिकारों के प्रति
0: अपने जिम्मेदारियों के प्रति।
1: हर सही फैसले की शुरुआत होती है जागरूकता से, और जागरूकता की शुरुआत होती है सजग भारत से।
0: सजग भारत,
1: जागरूक भारत,
0: सशक्त भारत।
1: सुनिए सजग भारत
0: सोमवार सुबह 11:30 पर सिर्फ FM रेनबो 101.9 पर। सजग भारत,
1: जागरूक बनिए
0: सजग रहिए।
2: FM रेनबो 101.9।
3: Yes, మీరు వింటున్నారు ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం FM రెయిన్బో 101.9 మెగాహెర్ట్జ్. నేను మీ ఆచే ప్రశాంతి. మనమున్నాం హలో రెయిన్బో లైవ్ ఫోన్ ఇన్ ప్రోగ్రామ్ విత్ లిసనర్స్ కార్యక్రమంలో. సో

ये आकाशवाणी हैदराबाद है, 101.9 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त शब के 9:30 और 15 सेकंड हो रहे हैं। पेशे खिदमत है उर्दू प्रोग्राम नए रंग।

दोस्तों, आज के नरंग प्रोग्राम में हम पेश करेंगे, सबसे पहले हस्ब दस्तूर हरफ ताबिंदा तहरीर होगी नदीम अख्तर ज़ैदी की।

दिया मुझको जहान में, जो ऐब थे मैं उनको छुपाने में रह गया। क्या गुजरी उनके साथ मुझे कुछ पता नहीं, क्या गुजरी उनके साथ मुझको पता नहीं, मैं दाग अपने दिल के दुखाने में रह गया, मैं दाग अपने दिल के दिखाने में रह गया। कीमत हमारी खाक मुनाफिक लगाएंगे, कीमत हमारी खाक मुनाफिक लगाएंगे, कीमत हमारी खाक मुनाफिक लगाएंगे। है कौन दीदावर जो जमाने में रह गया, है कौन दीदावर जो जमाने में रह गया। सारी खताएं माँ ने मोहब्बत से बख्श दी, सारी खताएं माँ ने मोहब्बत से बख्श दी, मैं कर्ज माँ के खून का चुकाने में रह गया। सारी खताएं माँ ने मोहब्बत से बख्श दी, मैं कर्ज माँ के खून का चुकाने में रह गया। ये शेर देखें कि बच्चों ने घर बसा लिया अपना अलग, मगर बच्चों ने घर बसा लिया अप...

0: बसा लिया अपना अलग मगर, बच्चों ने घर बसा लिया अपना अलग मगर, बच्चों का बोझ बाप उठाने में रह गया। बच्चों ने घर बसा लिया अपना अलग मगर, बच्चों का बोझ बाप उठाने में रह गया। मैंने तो दिल में थमा दिया उसको निकाल के, मैंने तो दिल थमा दिया उसको निकाल के, खंजर वो आस्तीन का छुपाने में रह गया। मैंने तो दिल थमा दिया उसको निकाल कर, खंजर वो आस्तीन का छुपाने में रह गया। अहबाब सारे वर्ख को लाने चले गए, अहबाब सारे वर्ख को लाने चले गए, हसरत तो आशियाँ को सजाने में रह गया। अहबाब सारे वर्ख को लाने चले गए, हसरत तो आशियाँ को सजाने में रह गया।
1: हसरत तो आशियाँ को सजाने में रह गया। जनाब ज़ामिन अली हसरत अपनी गज़लियात पेश कर रहे थे। मौजू था बिसात गज़ल। आइए दोस्तों अब सुनते हैं पुराने फिल्मी गीतों से सजा कार्यक्रम गीत सुरेले गाता जा। इस प्रोग्राम में हम आपके लिए पेश करते हैं पुराने फिल्मी गीतों की वो खूबसूरत धुनें जो आज भी दिलों को छू जाती है। आज का हमारा मौजू है हिंदी दिवस। हिंदी सिर्फ दोस्तों एक ज़बान नहीं बल्कि भारत की तहजीबी रंगारंगी अदब शायरी और फिल्मी मौसीकी से जुड़ी एक खूबसूरत ज़बान है। हिंदी फिल्मों के गीतों ने ज़बान को मुल्क के कोने कोने तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया है। तो आइए हिंदी ज़बान की मिठास, उसके अल्फाज की खूबसूरती और पुराने फिल्मी नगमों की यादों के साथ मौसीकी के इस हसीन सफ़र को आगे बढ़ाते हैं।

दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। शायरी एक एहसास का नाम है जहां दिल से निकली हुई बात दिल तक पहुंचती है। सामईन, इस बार भी हम लेकर आए हैं आपके लिए शानदार मुशायरा, तो सुनना न भूलें डॉक्टर फरीदुद्दीन सादिक की निजामत नवनकदा ये मुशायरा 17 सितंबर को रात 9:30 बजे सिर्फ आकाशवाणी हैदराबाद के 101.9 FM पर।

जी हाँ दोस्तों, हिंदी ज़बान के साथ ही भारत देश और इसकी खूबसूरत बोलियाँ और इसमें रहने वाले हर मज़ाहिब के लोग का जिक्र ज़रूर छिड़ जाता है। तो आइए, जब देश की बात होती है तो ये फ़िल्म गीत आपकी नज़र।

जी हाँ दोस्तों, यही हिंदी की खूबसूरती है। हिंदी के साथ यकीनी बात है कि हमारे अपने भारत देश का नाम भी सामने आता है, और भारत देश के साथ साथ हिंदी फिल्मी गीतों ने भी जो मुकाम बनाया है, ये हिंदी अल्फाज की खूबसूरती ही है। ये देखिए फिल्मी गीत, जिसमें किस खूबसूरत अंदाज में हिंदी के बोल और उससे मिले जुले उर्दू के अल्फाज को अदा किए गए हैं।

दोस्तों, हमारा अपना प्यारा और खूबसूरत वतन ये भारत वतन, जहाँ की बोलियाँ अलग अलग हैं, जहाँ अलग अलग तहजीब, अलग अलग मज़ाहब और अलग अलग अक्वाम कौमी यकजहती के साथ रहते और बसते हैं। और इन्हीं अक्वाम में जो सबसे खूबसूरत, सबसे हसीन और सबसे प्यारी भाषा है, वो है हिंदी। आइए सुनते हैं हिंदी दिवस के मौके पर हिंदी की ये खूबसूरत नगमा।

दोस्तों, आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नैरंग, और इस नैरंग प्रोग्राम में गीत सुरेले गत जा। इस सिलसिले में आज हम हिंदी दिवस के लिए खुसूसी प्रोग्राम हिंदी ज़ुबान के अल्फाज और उसकी शीरीनी और वतन की मोहब्बत से सरशार लाजवाल फिल्मी गीत आपको सुनवा रहे हैं। अगला गीत दोस्तों वतन से जुड़ा है, सिर्फ एक नगमा नहीं बल्कि वतन से बेपनाह मोहब्बत अकीदत का एक खूबसूरत इजहार इस गीत में आप सुनेंगे। इस नगमे के अल्फाज में मिट्टी की खुशबू है, वतन की मोहब्बत है, यादों की कसक है और अपने देश से वाबस्तगी का वो जज्बा है जो हर दिल को छू लेता है। कितने सादा, कितने खूबसूरत, कितने असरंगेज अल्फाज हैं कि वतन आँखों के सामने एक हसीन तस्वीर बनकर उभरता है। यही तो जबान और शायरी का कमाल है कि चंद अल्फाज जज्बात का एक पूरा जहां हमारे सामने रख देते हैं। सुनिए इस फिल्म गीत में।

हिंदी दिवस के मौके पर आइए दोस्तों एक और पैगाम इस फिल्मी गीत के ज़रिए आप तमाम की मोहब्बतों के नाम

जी हाँ दोस्तों, हिंदी भाषा ने भारत को अदब, शायरी, कहानी, अफसाना और फिल्मी मौसिकी का एक अजीम खजाना दिया। इस जबान के जरिए मोहब्बत, भाईचारे, कौमी यकजहती और वतन से वाबस्तगी के जज्बात करोड़ों दिलों तक पहुँचे। हिंदी फिल्मों और इनके गीतों ने तो इस जबान को मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों और दुनिया के कई हिस्सों तक पहुंचाने में खास किरदार अदा किया। राजकुमार, दिलीप कुमार, देवानंद जैसे फनकारों से लेकर शैलेंद्र, साहिर लुधियानवी और मजरूह सुल्तानपुरी जैसे नगमा निगारों तक हिंदी फिल्मी दुनिया ने जबान को जज्बात और मौसीकी की एक नई पहचान दी। लेकिन भारत की असल खूबसूरती इसकी कसीर लिसानी, मल्टी लैंग्वेज और कसीर सकाफती रिवायत है। हिंदी के साथ उर्दू, तेलुगु, तमिल, बंगाली, मराठी, कन्नड़ और दीगर जुबानों ने मिलकर हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब और रंगारंग सकाफत को मालामाल किया। तो आइए, हिंदी दिवस के मौके पर जबानों का मुकाबला नहीं, मोहब्बत और मेलजोल का जरिया बनाएं, क्योंकि जबान अलग हो सकती है मगर जज्बात अलग नहीं हो सकते। ये एक ही होते हैं और मौसिकी सब दिलों को जोड़ती है।

हिंदी दिवस के मौके पर। सुनिए दोस्तों, ये फिल्मी गीत जिसमें हिंदी और उर्दू अल्फाज का मिला जुला कितना हसीन और खूबसूरत संगम आपको देखने को मिलेगा।

इसी गीत पर दोस्तों, पुराने फिल्मी गीतों से सजा कार्यक्रम गीत सुरेले गाता जा, जिसका आज का टॉपिक था हिंदी दिवस, अब वो खत्म होता है। यह आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 मेगाहर्ट्ज पर। आइए दोस्तों, नरंगपुर गंगवे आखिर में सुनते हैं पयाम शब जैदी की जबानी।

दोस्तों, आप सबको यौम आज़ादी हिंद बहुत बहुत मुबारक। कल हम सब हमारे देश की आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। आज़ादी का हकीकी मफहूम ये है कि हम नफरत के बजाय मोहब्बत, तासुब के बजाय रवादारी, नाइंसाफी के बजाय इंसाफ और बेहिसी के बजाय खिदमत को इख्तियार करें। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों को सिर्फ आज़ादी की तारीख ना बताएं, बल्कि इन्हें जिम्मेदारी, दयानतदारी, नज़्म ज़ब्त, भाईचारा और वतन से मोहब्बत का सबक भी दें। याद रखिए, मुल्क सिर्फ सरहदों से नहीं बनता, मुल्क अपने शहरियों के किरदार से बनता है। आइए जश्न आज़ादी के इस मौके पर आहद करें कि हम अपने फ़राइज ईमानदारी से अदा करेंगे, दूसरों के हकूक़ का एहतराम करेंगे और अपनी ज़ात से बढ़कर मुल्क व कौम की भलाई को अहमियत देंगे। आज़ादी हमें विरसे में मिली है, इसे महफूज रखना हमारी जिम्मेदारी है। जय हिंद।

पयाम शबाबी आप सुन रहे थे, पेशकश थी जैदी की। इसी पर दोस्तों उर्दू प्रोग्राम अन्ना रंग अब ख़त्म होता है। कल शब 9:30 बजे नैरंग प्रोग्राम की एक और बज़म के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे। उस वक्त के लिए इजाज़त दीजिए, शब बख़ैर।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त रात के 11 बजने ही वाले हैं। चंद ही लम्हों में हिंदी में समाचार दिल्ली से रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि अधिकांश राष्ट्र अध्यक्षों की उपस्थिति से दुनिया ने भारत के मजबूत नेतृत्व और विभिन्न देशों को एक मंच पर लाने की क्षमता देखी। डॉ जयशंकर ने बताया कि सम्मेलन में 11 सदस्य देश, 10 साझेदार देश, 4 क्षेत्रीय संगठन और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित कुल 32 प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष जैसे सबसे जटिल मुद्दे पर भी आम सहमति बनना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डॉ जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों ने स्पष्ट रूप से माना कि आतंकवाद का कोई भी कृत्य आपराधिक कृत्य है।
1: ब्रिक्स का रुख स्पष्ट था, आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक माना जाएगा। ब्रिक्स देशों ने पहलगाम हमले की अस्वीकार्यता को स्पष्ट रूप से मान्यता दी। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की, जिसमें सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। साथ ही आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर बल दिया।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति, विजन महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह है, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है। श्री शाह ने ये बात आज नवी मुंबई में 2 दिन के हिंदी दिवस और 6ठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर कही।
2: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
0: राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और योगदान के लिए 11 संस्थाओं और लोगों को सम्मानित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदी दिवस के अवसर पर आज जन सूचना सेवा शुरू करने की घोषणा की। इस सेवा के अंतर्गत महत्वपूर्ण फैसलों और आदेशों का सरल हिंदी में सार उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही करीब 15 से 30 मिनट की अवधि के हिंदी ऑडियो और वीडियो बुलेटिन भी जारी किए जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने साइबर धोखाधड़ी और विवादित लेन देन पर रोक के संबंध में नई रूपरेखा का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत बैंक पूरे अकाउंट के बजाय सिर्फ विवादित लेन देन की राशि को अस्थायी रूप से फ्रीज कर सकेंगे। ऐसा तभी किया जा सकेगा जब 1,000 रूपए या उससे अधिक के असामान्य अंतरण को म्यूल अकाउंट या साइबर फ्रॉड से जुड़े होने की आशंका हो। मसौदा निर्देश अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होने वाले हैं, लेकिन बैंक इन्हें पहले भी अपना सकते हैं। पिछले सप्ताह हमले में क्षतिग्रस्त हुई सऊदी अरब की एक महत्वपूर्ण तेल

0: Good evening, listeners, and welcome to Market Mantra. Today, being Monday, we'll be taking calls on market-related queries. But do remember, we do not address stock or company-specific queries. To connect with us, you can call us on 2331-4444, 2331-0481, and 2371-7106. And of course, do prefix the code 011. Your anchors for today, Manoj Pathak and myself, Sarabjit Kaur.
1: Namaskar, Market Mantra ki Tazank mein swagat hai. हर सोमवार की तरह आज हम आपके प्रश्नों को अपने कार्यक्रम में सम्मिलित करने वाले हैं. ये जानकारी आपको हुआ ही करती है. हम बस आपको अपना नंबर बताते हैं, 2331-4444, 2331-0481, या फिर 2371-7106. दिल्ली से बाहर से यदि आप फोन करते हैं या मोबाइल फोन से करते हैं तो दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी आपको डायल करना होगा. हम इस कार्यक्रम में किसी खास कंपनी या शेयर से संबंधित प्रश्न का जवाब नहीं देते हैं, इसका ध्यान रखिएगा. अर्थनीति, कारोबार या शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं. हमारे साथ खबरों पर चर्चा और आपके सवालों का जवाब देने के लिए स्टूडियो में आज आमंत्रित हैं देश के जाने माने वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा. शिशिर जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
2: नमस्कार, पूरे आकाशवाणी परिवार को गणेश चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं.
1: आइए शुरुआत करें अंग्रेजी में हेडलाइन से.
0: Country's retail inflation rises to 4.8% in August this year. Wholesale inflation stands at 9.92%. In Asian markets, South Korea's Kospi declines over 3%. And global crude oil prices surge, Brent crude trading over $108 per barrel.
1: देश में इस वर्ष अगस्त में खुदरा मुद्रास्फीति की दर बढ़कर 4.82% पर पहुंची. थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर 9.92% दर्ज हुई. एशियाई शेयर बाजार में दक्षिण कोरिया का कोस्पी 3% से अधिक लुढ़का और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के दाम बढ़े. ब्रेंट क्रूड का मूल्य $108 प्रति बैरल से ऊपर पहुंचा.

0: remaining above the Reserve Bank of India's target of 4% for the third consecutive month this year. The August inflation reading was higher than the 4.45% recorded in July as food prices remained elevated. According to data released by the Ministry of Statistics and Programme Implementation, inflation in rural areas increased to 5.23%, while in urban regions it rose to 4.31%. The food inflation rate based on the All India Consumer Food Price Index stood at 5.95% last month, up from 5.52% in the preceding month. According to the data, the increase in inflation during the last month was mainly attributed to rising prices in personal care, social protection, restaurants and accommodation services, food, beverages and intoxicants. Shishir, we'd like to have your expert comment on this data regarding the retail inflation acceleration to 4.8% in August.
1: See, if you see the last line which you just mentioned, that the reasons for rise in that, and one of the reasons is the personal care thing. And for the listeners, it is important to note that when we talk about personal care, it includes gold and silver. So the precious metal prices are on the rise or on the higher. I would not say it's again rising at a pace which we have seen during last 2 to 3 months, but it's still at a very high. And among the precious metal, silver is very high. So this is number one reason why we have seen 4.8%, 4.9% of inflation. And now the expectation is that when the next month Monetary Policy Committee meeting will take place, there could be some decision on the policy interest rate, which have been kept on hold for some time. But this time, as we are seeing that it has increased 4%, and the expectation, inflationary expectation, is also very high. So in a very technical term, I would say that when you have to mop up that durable liquidity from the market, the best way is to increase the policy interest rate, and that is what we are expecting in the next month policy meeting.
2: हमारे साथ फोन लाइन पर कई श्रोता जुड़ चुके हैं, विशेष रूप से दिल्ली से अमित झा. हम आग्रह करेंगे कुछ पल हमारे साथ बने रहिए. हम आपको पहले मुद्रास्फीति से ही संबंधित एक खबर और देते हैं, उसके बाद आपसे चर्चा करेंगे. आपके धैर्य के साथ हमारे साथ बने रहने के लिए पहले से ही आभार. देश में थोक मूल्य सूचकांक WPI आधारित मुद्रास्फीति की दर अगस्त में मामूली रूप से बढ़ी, 9.92% हो गई. जुलाई में यह 9.78% थी. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले महीने वार्षिक मुद्रास्फीति खनिज तेल, खाद्य वस्तुओं, खाद्य उत्पादों, मूल धातुओं, गैर खाद्य वस्तुओं, रसायन और रासायनिक उत्पादों के मूल्य बढ़ने से प्रेरित रही है, जिसके चलते ये वृद्धि हुई है. थोक मूल्य सूचकांक में प्रमुख श्रेणियों में ईंधन और बिजली समूह की मुद्रास्फीति पिछले महीने 22.9% रही. जुलाई में ये 20% थी. विनिर्मित उत्पाद की मुद्रास्फीति 8.3% से बढ़कर लगभग 8.4 हो गई. इस बीच प्राथमिक वर्ग की वस्तुओं की मुद्रास्फीति अगस्त में घटी है, 7.8% पर आ गई. जुलाई में ये 8.5% थी. WPI अगस्त में बढ़कर 7.05% पर पहुंच गया, जबकि इसके पिछले महीने ये 6.65% था. अगस्त में आउटपुट प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स में वार्षिक आधार पर 9.81% की वृद्धि हुई है. ये थे आंकड़े थोक मूल्य मुद्रास्फीति से संबंधित. और आप दिल्ली से अमित जी. अमित जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए.
3: सर नमस्कार, मैं दिल्ली से अमित झा बात कर रहा हूँ. सर
2: जी, स्वागत है आपका.
3: सिन्हा सर से. नमस्कार सर. हेलो.
1: नमस्कार. नमस्कार.
3: हाँ, सर मेरा प्रश्न ये है कि हाल ही दिनों में कल ब्रिक्स सम्मेलन हमारे यहाँ समाप्त हुई सर, तो ब्रिक्स करेंसी पे चर्चा हुई है, तो क्या ब्रिक्स करेंसी चलन में आ जाएगी, और चलन में अगर आएगी तो कब तक आएगी, इसमें क्या मुश्किल आ सकती है. दूसरी चीज सर, कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष होती है सर, वो भी अपने प्रोजेक्शन देती है GDP के बारे में, इंडिया के बारे में, विश्व बैंक भी देती है, हमारे RBI भी मॉनेटरी पॉलिसी के दौरान देती है. तो इस बार जो GDP का आंकड़ा आया है सर, तो वो सबको मतलब सरप्राइज कर दिया एक तरह से, तो क्या उनके कैलकुलेशन में कहीं कमी रह गई थी क्या सर? धन्यवाद.
1: देखिए, पहला जो प्रश्न है ब्रिक्स करेंसी का, ये स्पष्ट कर दूं कि इस बैठक में इस पर कोई प्रस्ताव नहीं था, कोई चर्चा नहीं हुई है. हालांकि ये काफी समय से अटकलें लगाई जा रही थी कि इस बैठक में जिस तरीके से हमारा यूरोपियन यूनियन का एक करेंसी यूरो है, वो ब्रिक्स करेंसी लाएंगे, उसकी जगह पर ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम की जरूर बात हुई है, यानी कि दो देशों के बीच भुगतान की व्यवस्था और सरल और सहज हो सके, उसके लिए बात जरूर हुई है, ब्रिक्स करेंसी पे चर्चा नहीं हुई है. दूसरा जो आपका प्रश्न है कि जो हमारे आर्थिक विकास के आंकड़े हैं, जो कि GDP के नंबर से करते हैं, और आपने कहा कि

0: इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक है या फिर रिजर्व बैंक है, इन सभी के अनुमानों से थोड़ा ज्यादा आया है पहली तिमाही में, अप्रैल जून की तिमाही में। देखिए, आपको केवल हेडलाइन नहीं देखना चाहिए, हेडलाइन के पीछे के आंकड़े भी देखना चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं कि उसके पीछे जो प्रमुख आर्थिक संकेतक, जिसको हम लोग हाई फ्रिक्वेंसी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कहते हैं, जैसे जीएसटी का कलेक्शन क्या रहा, डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन क्या रहा, आपका ई वे बिल जनरेशन जो जीएसटी में आता उसका क्या रहा, यदि वो सभी आंकड़े आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो जीडीपी के आंकड़े में अगर बढ़ोतरी होती है तो उसको लेकर के हैरानी नहीं होनी चाहिए। हम हेडलाइन तो देखते हैं, हेडलाइन के पीछे की कहानियों को अगर आप देखेंगे तो शायद इन आंकड़ों की प्रासंगिकता जो है वो और आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी।
1: इंटरेस्टिंगली आवर नेक्स्ट कॉलर इज आल्सो फ्रॉम दिल्ली। विनय जी, सवाल पूछे।
2: जी
3: नमस्ते।
2: हाँ जी सर, सर मेरा क्वेश्चन है कि जो कंपनी को प्रॉफिट होता है टैक्स आफ्टर टैक्स, उससे कंपनी जो डिविडेंड देती है, और वो डिविडेंड जब शेयर होल्डर्स को मिलता है तो शेयर होल्डर्स को दोबारा उस डिविडेंड पे टैक्स देना पड़ता है। पहले कंपनी ऑलरेडी जब टैक्स कैलकुलेट करने के लिए टैक्स दे चुकी होती है और फिर एज ए शेयर होल्डर हमें फिर देना पड़ता है, फिर डबल टैक्सेशन क्यों होता है, ये पूछना पड़ता है।
0: देखिए, आपने जो मुद्दा उठाया है कि कंपनी जो भी लाभ कमाती है निश्चित तौर पर उस पे जो लाभ होता है, दरअसल दो तरीके का लाभ होता है। एक आपका परिचालन लाभ, जिसको हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं, और उसके बाद उसमें जो टैक्स आता है उसको माइनस कर दे तो हमारे पास आ जाता है, उसको घटा दे तो हमारे पास आ जाता है नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट में से एक हिस्सा आपको लाभांश के तौर पर दिया जाता है, वो आपकी अपनी आय है, वो आपको जब एक शेयर धारक होने के नाते मिलता है, आपकी आय में जुड़ जाता है और उसमें आपको कर देना पड़ता है। तो डबल टैक्सेशन आप कह सकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी उसमें टैक्स पे प्रॉफिट मार्क किया जा चुका है, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि वो आय आपके पास किस स्वरूप में आई है, वो आपके लिए महत्वपूर्ण होता है और उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है। और ये भी ध्यान में रखिए कि अगर आपने जो है अगर आप कर के योग्य, जिसको कहते हैं आमदनी में नहीं है, तो आप उसका फायदा भी ले सकते हैं, लेकिन डिविडेंड पे टैक्स लेना वो एक शेयर धारक की आय है और कंपनी के मुनाफे पर कर लगना वो कंपनी की आय है।
3: दिल्ली से ही हमारे साथ हैं फोन लाइन पर जयकिशन। जयकिशन जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए।
4: जी नमस्कार, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूँ, इसलिए कि कल का सम्मेलन खत्म हुआ है।
3: जी जी,
4: अब अभी आपने जो ये करेंसी की बात करी है, मैंने 15 साल पहले से मेहनत की कि भाई हमारे देश में प्लास्टिक करेंसी आनी चाहिए, जो कि अब 10 और 20 का नोट जो है वो अगले साल या कुछ बहुत जल्दी मार्केट में आ जाएगा। तो क्या इससे हमारी कुछ स्थिति, आर्थिक स्थिति सुधरेगी हमारे यहाँ या नहीं सुधरेगी? और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये कहना है कि भाई हम लोगों को उस गेम के ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए जो हमारी स्थिति को खराब करते हैं, और डुप्लीकेट करेंसी आज भी छप रही है और छपते चले आ रही है। भाई ये मेरे दो क्वेश्चन है।
0: जो आपका पहला प्रश्न है, देखिए मुझे लगता है कि दो अलग अलग मुद्दे हैं। ब्रिक्स करेंसी जो है वो एक जो अलग अलग देश हैं हमारे, उन सभी के बीच में एक सामान्य समान मुद्रा यानी कि कॉमन करेंसी की बात की जा रही, जैसा कि हमारा ईयू में, यूरोपियन संघ में जो हमारा यूरो है। तो एक बात यहां स्पष्ट कर दूं कि इस बैठक में ब्रिक्स करेंसी पे चर्चा नहीं हुई है फिलहाल, आगे क्या होगा ये कहना मुश्किल है। दूसरा, आपने जो मुद्दा उठाया कि प्लास्टिक करेंसी का, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अभी रिजर्व बैंक के तहत आने वाले प्रिंटिंग प्रेस ने जो है वो उन्होंने टेंडर जारी किया है प्लास्टिक शीट के लिए, जिसके आधार पर 10 रुपए और 20 रुपए के नोट जो हैं वो जारी किए जाने हैं प्लास्टिक करेंसी के तौर पे, और इससे आर्थिक स्थिति के जोड़ा जाना कोई सही नहीं होगा। इससे ये होगा कि रिजर्व बैंक की जो लागत होती है हर साल, जो नोट छापते हैं जिस पर करीबन 4,500 करोड़ से लेकर 5,000 करोड़ रुपए की लागत आती है, उस लागत में जरूर कुछ कमी आ सकती है, क्योंकि प्लास्टिक के जो नोट होते हैं, प्लास्टिक जो पॉलीमर सीड्स के नोट होते हैं, उसकी जिंदगी ज्यादा होती है। जो कागजी नोट होते हैं ये 3 वर्ष तक चल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। और दूसरी बात ये भी है कि हमारे देश में जो एक कागजी नोट को रखने का जो तौर तरीका है वो काफी अलग है, उससे भी जो नोट की जिंदगी है उसके ऊपर असर पड़ता है। तो प्लास्टिक करेंसी से रिजर्व बैंक की लागत में कमी आएगी, अर्थव्यवस्था पे, आर्थिक स्थिति पे उसका कोई असर पड़ेगा ये कहना अभी सही नहीं होगा।
1: शिशिर, आई लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन अगेन टू द न्यूज ऑफ WPI इन्फ्लेशन राइजिंग टू 9.92% इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट। So what does this increase tell us about the current inflationary pressures in the Indian economy?
0: See, we have to

0: inflation rate. One is called retail inflation based on consumer price index, and the second one is called wholesale inflation, which is based on the wholesale price index. Since 2016, we are using CPI for all the policy discussion. So that is why whenever you see discussion on inflation, you will find more focus on the retail inflation and not on the wholesale inflation. But wholesale inflation also has some significance. When we say 9.9% of wholesale inflation, that means the producers are paying more for producing goods. So when the producers are paying more for the input, at the end of day, they will also pass it on to the consumer, that the retail consumer.
1: Called the cascading effect.
0: Of course, cascading effect. But that cascading effect has a time lag. It is not going to happen that today you have, say, 9.9% of wholesale inflation and next month your retail inflation will be something around 8%. It will take some time, but it is giving an indication that the producers are paying higher cost for the input and the retail consumer may have to pay more in the future.
1: All right, let's hear from our next caller from Bhopal. Shankar ji, sawal puche.
2: Namaste, Shishir Sinha ji. Aapko Ganpati Utsav ki shubhkamnaye.
0: Namaskar, dhanyawad.
2: Makar Santrati team sabko shubhkamnaye. Mera sawal sir, ye BRICS ke upar hi hai. BRICS as a group banaya hai jisme bade ajeeb aur gareeb type ke log hain. Ek manufacturer hai, bahut bada strong. Dusra ek consumer hai, India. Tisra South Korea hai, South Africa hai, Brazil hai. Inki leverage kahan hai? How will they be able to leverage? So is BRICS ka leverage kya hai? What is the leverage that BRICS can have to counter the unilateral actions by America or EU or any of these countries so that they can be stopped or war can...
0: शंकर जी देखिए आप अगर ब्रिक्स के तमाम देशों के जीडीपी को मिला लीजिए और उनका अगर आप देखिए कि 30% 40% की जीडीपी की बात आती है उससे ज्यादा की जीडीपी की बात आती है वो दुनिया के बाजार में नीति निर्माण में एक बड़ी भूमिका अदा करते हैं मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ ब्रिक्स में एक चर्चा हुई है ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज की अब आप कहेंगे ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज का मतलब क्या है अब आप यही समझिए कि दुनिया भर में जितने भी अनाज की बात करें जो कृषि उत्पाद हैं उसका लगभग 44% जो है वो ब्रिक्स देशों में है अभी क्या होता है कि ये जितने भी हमारी कमोडिटीज हैं उसकी प्राइसेस शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड के जरिए सीबीटी जिसको हम लोग कहते हैं उसके जरिए तय होती है अब यदि हमारे पास एक ऐसा एक्सचेंज हो जहां पर 44% जो खपत हो रहा है उसके लिए कीमत जो कहते हैं कि डिस्कवर करना यानी कि उसका कीमत का पता करना वो संभव हो पाए ये एक लिवरेज पॉइंट है अब दूसरी चीज आप ये भी देखें कि एक तरफ आपके पास चाइना है जिनकी इकोनॉमी ऑफ स्केल काफी हाई है एक रशिया है जिनके पास कई तरह के नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हाई में है जब इस तरह के देश एक मंच पे आते हैं तो वो ग्लोबल साउथ के लिए भी यानी कि जो हमारे अल्प विकसित देश हैं अविकसित देश हैं उनके लिए भी कुछ बड़ा कदम उठाने की बात करते हैं जो कि इस बैठक में हुई है ये वो लिवरेज है तो आप एक तरफ ये भी देखिए कि बाजार की दशा दिशा को वो कैसे प्रभावित कर सकते हैं दूसरा ये देखिए कि बाजार में कीमत तय करने की व्यवस्था को वो कैसे प्रभावित कर सकते हैं और तीसरा कि जो हमारे अल्प विकसित देश हैं जो कमजोर देश हैं उनकी बेहतरी के लिए क्या कुछ किया जा सकता है तो ये वो मुद्दे हैं जो ब्रिक्स में लिवरेज जो आपने शब्द इस्तेमाल किया उसके जरिए संभव हो सकता है
3: आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं भारतीय रिजर्व बैंक ने एक नए ढांचे का प्रस्ताव दिया है जिसके तहत बैंक पूरे खाते के बजाय केवल विवादित लेन देन राशि को अस्थायी रूप से फ्रीज कर देंगे जब 1,000 रुपए या इससे अधिक के असामान्य हस्तांतरण को म्यूल खातों या साइबर धोखाधड़ी से संभावित रूप से जोड़ा जाता है बैंकों को हस्तांतरण की पहचान करने के लिए एआई आधारित लेन देन निगरानी प्रणाली का उपयोग करने की आवश्यकता होगी जो ग्राहक की घोषित प्रोफाइल के लिए अकस्मात है अनुपयुक्त है या ज्ञात साइबर धोखाधड़ी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है मसौदा निर्देश 1 अप्रैल 2007 से प्रभावी होने वाले हैं हालांकि बैंक उन्हें पहले भी लागू कर सकते हैं आरबीआई के अनुसार ये ढांचा 4 अगस्त 2026 के सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करता है जिसमें इसे मनी म्यूल गतिविधि और साइबर सक्षम धोखाधड़ी से जुड़ी राशियों या खातों पर अस्थायी डेबिट होल्ड के लिए मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी निर्धारित करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया गया है संदिग्ध मनी म्यूल खातों के लिए आरबीआई के प्रस्तावित नियम अधिक लक्षित दृष्टिकोण के साथ पूरे खाते को फ्रीज करने के कठोर दृष्टिकोण को बदल देंगे 2 अक्टूबर 2026 तक सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए जारी किए गए मसौदा संशोधन निर्देश

0: केवाईसी निर्देश 2025 के तहत बैंक खाता संचालन और मनी म्यूल पर मौजूदा निर्देशों में संशोधन करते हैं।
1: मीनवाइल जगदीश जोशी जी ज्वाइंस अस फ्रॉम दिल्ली। जगदीश जी अपना सवाल पूछें।
2: हाँ जी मैम को नमस्कार। जगदीश जोशी नांगली दिल्ली से
1: जी।
2: और एक्सपर्ट जो बैठे इनको भी नमस्कार।
3: नमस्कार।
2: हाँ सर दो छोटे से क्वेश्चन है सामान्य से कि एक तो ये कि ये सुनने में मैंने सुना है कि हालांकि इसमें कितनी सत्यता है ये आपके एक्सपर्ट जो एडवाइस है वो चलेगी कि गोल्ड का जो स्टॉक है वो इंडिया के पास फिलहाल है नहीं। और दूसरा जो प्लास्टिक करेंसी की बात हो रही है तो एक तरफ तो ये भी बात आती है कि प्लास्टिक से एनवायरमेंट जो हमारा पर्यावरण है इसको भी लॉस होता है तो इससे तो इन दोनों पे आपके एक्सपर्ट राय चाहता हूँ। थैंक यू
3: जगदीश जी। मुझे लगता है जो पहला आपका प्रश्न है जो आपने एक आशंका जताई है सोने को लेकर के ये निराधार है। अटकलें जो भी चलती हों देखिए सोने के मामले में दो चीजों का ध्यान रखिए। पहली बात यह है कि विश्व में सोने की आपूर्ति सीमित है। ऐसा नहीं है कि सोना नए सिरे से बन रहा है तो जितना हम सोना खपत कर रहे हैं वो आपूर्ति सीमित होती जा रही है। तो इसका ये मतलब नहीं कि हमारे देश में वो सोने की जो खपत है सोने का जो भंडार है वो कम हुआ है। दूसरा देश में अगर सोने की भंडार की बात करें तो एक रिजर्व बैंक के पास है और एक जो कि घरों में है। अब घरों में सोने की कितना सोना है ये किसी को नहीं पता है। कभी लोग कहते हैं कोई 22,000 टन है कोई कहते हैं 20,000 टन है। ये आ जाएगा तो बाजार में सोने की कीमत बिल्कुल गिर जाएगी लेकिन उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता क्योंकि कोई ऐसा बताता नहीं कि मेरे पास कितना सोना है। आपके हमारे घर में जो भी सोना होता है रिजर्व बैंक के पास जो सोना है वो हर सप्ताह उसके आंकड़े जारी किए जाते हैं। और अगर आपने देखा होगा कि बीते सप्ताह जो हमारी विदेशी मुद्रा भंडार है जो कि रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची है उसमें सोने का एक बड़ा योगदान है। तो पहली बात ये सोने की भंडार नहीं है इस खबर का कोई आधार बनता नहीं है। आपने जहां से भी सुना होगा उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। दूसरा आपका प्रश्न प्लास्टिक करेंसी को लेकर के देखिए प्लास्टिक करेंसी और कागजी मुद्रा जो है अब कागजी मुद्रा जो है आप कागज जो बनाते हैं वो कागज कहां से आता है या तो आप पेड़ काटते हैं या जो आपके पास है उसको रिसाइकल करते हैं तो रिसाइकलिंग से कागज नया बन जाएगा उसमें दिक्कत होगी क्योंकि उसमें सुरक्षा के कई तथ्य जो होते हैं वो शायद ना रह पाए इसीलिए आपको नए कागज की जरूरत पड़ेगी। तो कागज आपको ज्यादा चाहिए उसके लिए आपको अलग संसाधन देखने पड़ेंगे। प्लास्टिक करेंसी की जिंदगी ज्यादा होती है जैसा मैंने पहले कहा था कि कागजी नोट की जिंदगी ज्यादा से ज्यादा 3 वर्ष तक होती है। प्लास्टिक के लिए कोई ऐसा नहीं है और दुनिया के तमाम देशों में प्लास्टिक करेंसी जो है वो चलन में है।
0: दिल्ली से ही हमारे साथ फोन लाइन पर हैं दिनेश कुमार। स्वागत है आपका दिनेश जी सवाल पूछें।
4: नमस्कार मैं दिनेश कुमार बोल रहा हूँ दिल्ली अशोक विहार से।
0: स्वागत।
4: मेरा सवाल भी प्लास्टिक करेंसी पर है
0: जी।
4: मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे अभी ये प्रपोजल है कि प्लास्टिक करेंसी 10 या 20 रुपए में इंट्रोड्यूस होगी तो इस डिनोमिनेशन में तो ऑलरेडी सिक्के चल रहे हैं तो ये डुअलिटी क्यों है बल्कि प्लास्टिक करेंसी क्या उसमें इंट्रोड्यूस नहीं करनी चाहिए थी जैसे 100 या 500 जिसमें जिसमें ऑलरेडी सिक्के नहीं है क्योंकि सिक्के भी काफी लंबी लाइफ होती है। थैंक यू वेरी मच
3: जी। दिनेश जी आप बिल्कुल आपकी राय बहुत अच्छी राय है कि हमें जो ऊंची मुद्रा ऊंची कीमत वाले हैं 100 रुपए 200 रुपए या 500 रुपए वाले वहां पे प्लास्टिक करेंसी की बात है। ये ध्यान रखिए कि अभी जो 10 रुपए और 20 रुपए के जो प्लास्टिक करेंसी लाए जा रहे हैं वो प्रायोगिक तौर पर लाए जा रहे हैं वो पायलट स्कीम के तहत है। उसकी उपयोगिता किस तरीके से होगी उसके चलन में किस तरीके की बात आएगी उसके लिए वो लाया गया है। हो सकता है आप 2 साल के बाद ऊंची कीमत वाले जो नोट हैं उनमें आप प्लास्टिक देखेंगे।
1: Well, in some more news, India and Mercosur have signed the first additional protocol to the India-Mercosur Preferential Trade Agreement, PTA, marking an important step towards facilitating

0: में आज बंद रहा सराफा बाजार और मुद्रा बाजार भी गणेश चतुर्थी के अवसर पर बंद है। पिछले कारोबारी सप्ताह में शेयर बाजार अच्छे खासे घाटे के साथ बंद हुआ था और गौरतलब है कि लगातार 5 सप्ताह से बाजार गिरावट के साथ बंद हो रहा है। बाजार में इस लगातार गिरावट का यह दौर क्या दर्शा रहा, हमारे व्यवस्था की आधारभूत कमजोरियां या हमारी मजबूती के बावजूद वैश्विक निवेशकों का पैसा बाहर निकालना, क्या मुख्य कारक हैं लगातार इस बिकवाली?
1: दो कारण आप कह सकते हैं, लेकिन उसके पहले अगर हम फोन ले लें।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेहुल गांधी हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से, बहुत बहुत स्वागत आपका मेहुल, सवाल पूछिए। मेहुल जी आप हमारे साथ, जी आप जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका।
2: सिसिर जी
1: नमस्कार।
2: हाँ नमस्कार, मैं मेहुल गांधी बोल रहा हूँ। क्रूड का प्राइस इतना बढ़ रहा है तो क्या हम लोग साइकिल नहीं इस्तेमाल कर सकते और क्रूड हम इंपोर्ट करने का बंद नहीं कर सकते और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाने का ऐसा रूल लागू नहीं कर सकते सरकार?
1: मेहुल जी आपका सुझाव अच्छा है और मुझे लगता है कि सरकार इस बारे में सोच सकती है, लेकिन उसकी एक व्यावहारिक भी जो परेशानी है वो भी आपको ध्यान में रखना है।
0: और अब लौटते हैं अपनी चर्चा पर।
1: ये जो दो बड़े मुद्दे इस समय में हैं बाजार के लिए, पहला तो जो वैश्विक अनिश्चितता है वो आप ध्यान में रखें और जिसकी वजह से आप शेयर बाजार में आप जो है वो लगातार आपने गिरावट देखी है। एक बड़ा मुद्दा यह है कि फेडरल रिजर्व ने एक संकेत दिए हैं कि वो ब्याज दरें बढ़ाएंगी और जब वो ब्याज दरें बढ़ाएंगे ये हमारे विदेशी निवेशकों के लिए कहते हैं यहां से पैसा ले जाने का रास्ता खोलेंगे और यही वजह है कि आप बाजार में थोड़ी जो है आप गिरावट देख रहे हैं।
3: मीनवाइल अरिजीत जॉइंस अस फ्रॉम कोलकाता। अरिजीत प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
4: Good evening, Master Mantra.
3: Good evening.
4: Ma'am, I wanted to ask you this, that a couple of years ago I heard the government of India has bought all the gold which was in London and US back to India. Recently, the Prime Minister has said that not to go to US or anywhere or buy gold whatsoever. I wanted to understand from the expert that the emphasis which has been on gold and which is being in gold, and there is a lot of complication by buying gold ETF, how all these things matter in the market.
1: Okay. Arijit ji, please remember that we import almost 800 tons of gold every year. That means we are spending a lot amount of dollars in that. So when we need more and more, less, when we are working on reducing the pressure on rupee, it is also necessary to reduce the import cost. And that is why we are focusing on reduction in the consumption of gold. That is the key reason for that.
0: हाँ ये श्रोताओं, आपको लिए चले हैं वैश्विक शेयर बाजार, सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, वहां का प्रमुख शेयर बाजार दक्षिण कोरिया का कोस्पी आज बिकवाली के दबाव में 3.3% से अधिक घाटे के साथ बंद हुआ। उधर जापान के निक्की 225 सूचकांक में 0.8% की कमी आई। गौरतलब है कि एंथ्रोपिक सीईओ डारियो एमोदेई द्वारा एआई विकास की गति धीमी करने संबंधी आग्रह के बाद दुनिया भर के शेयर बाजारों में एआई और सेमी कंडक्टर से संबंधित कंपनियों में बिकवाली देखी जा रही है। एमओडी के विचारों का समर्थन एआई से जुड़ी अनेक कंपनियों के प्रमुखों ने किया है।
3: ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस रोज मोर देन 3% टुडे आफ्टर स्ट्राइक्स ऑन सऊदी अरेबियन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अटैक्स ऑन शिप्स इन वेस्ट एशिया कंपाउंडेड सप्लाई कंसर्न्स। ब्रेंट क्रूड वाज ट्रेडिंग 3.4% अप एट $108.22 पर बैरल इन इंट्राडे ट्रेड एट अ टाइम ऑफ राइटिंग दिस रिपोर्ट। Meanwhile, West Texas Intermediate crude was trading 3% higher at $103.11 per barrel.
0: श्रोताओं आपने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया, आपका हमारी टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और आप श्रोताओं की ओर से शिशिर जी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे।
1: धन्यवाद।
3: Listeners, before we wrap up today's show, a reminder of the headlines. Country's retail inflation rises to 4.8% in August this year. Wholesale inflation stands at 9.92%. In Asian markets, South Korea's Kospi declines over 3%. And global crude oil prices surge, Brent crude trading over $108 per barrel. And that's all in today's edition of Market Mantra. See you tomorrow. Until then, goodbye.
5: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है

0: गणपती बाप्पा पुढच्या वर्षी, अरे गणपती बाप्पा पुढच्या वर्षी, गणपती बाप्पा पुढच्या वर्षी,
1: गणपती बाप्पा मोरिया। गणेश चतुर्थी की आपको और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश आपके जीवन से सभी विघ्न और संकट दूर करते, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि और अपार खुशियां लेकर आए। ये गणेश चतुर्थी यही कामना करता है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 MHz पर, जिसे आप ट्यून इन करते हैं। गीत मेरे मनमीत में आज आपके संग है अर्पना और वक्त हो गया है 11:45 और 17 सेकंड। अभी आपने सुना सुरेश वाडकर की आवाज में गीत, फिल्म का नाम है काल चक्र। और इसके बाद अगले दो गीत आपके लिए जो लेकर आई हूँ, उससे में पहला गीत जो है वो लता मंगेशकर की आवाज में होगा, संगीत खयाम का है और बोल गीत के लिखे हैं कैफे आजमी साहब ने, फिल्म का नाम है रजिया सुल्तान। और इसके बाद जो अगला गीत है वो भी संगीत खयाम साहब का है, लेकिन गीत के बोल लिखे हैं शहरयार ने और आवाज होगी आशा जी की, और इस फिल्म का नाम है उमराव जान। तो बैक टू बैक इन दो गीतों का आप आनंद लीजिए। गीत मेरे मनमीत आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड है ये 100.1 MHz पर।

ये जगह है आपकी अपनी आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और वक्त हो गया है 11:55 और 40 सेकंड। अगला गीत होगा जिसका संगीत मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ है, तो बोल है आर डी बर्मन का संगीत है, आवाज़ है किशोर कुमार की। और इस गीत के बाद एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे समाचार, गीत मेरे मनमीत से अर्पणा को दे इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा और मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि अधिकांश राष्ट्र अध्यक्षों की उपस्थिति से दुनिया ने भारत के मजबूत नेतृत्व और विभिन्न देशों को एक मंच पर लाने की क्षमता देखी। डॉ जयशंकर ने बताया कि सम्मेलन में 11 सदस्य देशों, 10 साझेदार देशों, 4 क्षेत्रीय संगठनों और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित कुल 32 प्रतिनिधि मंडल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष जैसे सबसे जटिल मुद्दे पर भी आम सहमति बनना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डॉ जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों ने स्पष्ट रूप से माना है कि आतंकवाद का कोई भी कृत्य आपराधिक कृत्य है।
1: ब्रिक्स का रुख स्पष्ट था, आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक माना जाएगा। ब्रिक्स देशों ने पहलगाम हमले की अस्वीकार्यता को स्पष्ट रूप से मान्यता दी। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की, जिसमें सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। साथ ही आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर बल दिया।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति, विजन महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। भारत ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को इस वर्ष 31 दिसंबर तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दे दी है। विद्युत मंत्रालय ने बताया कि मुजफ्फरपुर ढाल के बार लाइन के जरिए 600 मेगावाट तक और टनकपुर महेंद्रनगर लाइन के जरिए 54 मेगावाट तक विद्युत आपूर्ति की स्वीकृति दी गई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता व्यक्त की है। परिषद ने कहा कि प्रदर्शनों को 100 दिन पूरे हो चुके हैं, जिससे अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है और व्यापक क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। परिषद ने चेतावनी दी कि सार्थक बातचीत में किसी भी प्रकार की देरी से जनता में असंतोष, अविश्वास और अस्थिरता और बढ़ सकती है। परिषद ने बाघ जिला परिषद के सदस्य से जावेद आरिफ अब्बासी की गिरफ्तारी पर भी चिंता प्रकट की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल मुंबई में हिंदी दिवस 2026 और छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में महाराष्ट्र की समृद्ध भाषाई और सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज ने प्रशासन में मराठी को प्रमुख स्थान दिया और भाषा में पारिभाषिक शब्दावली का समृद्ध भंडार तैयार किया, जो हिंदवी स्वराज के दौर में शासन व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार बना। हिंदी दिवस और गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं देते हुए श्री शाह ने कहा कि दोनों पर्वों का एक ही दिन पड़ना मणि कांचन योग है। कार्यक्रम में हिंदी शब्द संसाधन, टाइपिंग और आशुलिपि प्रशिक्षण कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया। साथ ही राजभाषा कीर्ति और राजभाषा गौरव पुरस्कार प्रदान किए गए तथा वंदे मातरम सहित कई पुस्तकों का विमोचन किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदी दिवस के अवसर पर कल जन सूचना सेवा शुरू करने की घोषणा की। इस सेवा के अंतर्गत महत्वपूर्ण फैसलों और आदेशों का सरल हिंदी में सार उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही करीब 15 से 3 मिनट की अवधि के हिंदी ऑडियो और वीडियो बुलेटिन भी जारी किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में 5वें सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। देश भर में गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा लेकर मैं माधुरी हूं आपके साथ। जब दुनिया थम से जाती है और मन में भावनाओं का सैलाब उमड़ता है तो न जाने फिर क्या क्या होता है। रात है और आसमां पर सितारे मुस्कुराते हैं, चलो बंद आंखों में हम कुछ ख्वाब सजाते हैं।

रजनीगंधा फिल्म से एक गीत आपने सुना मुकेश की आवाज में। अब चलते हैं अगले गीत की तरफ, उससे पहले ये चंद लाइनें आपके लिए। रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बहार आ जाए, जैसे सहरे में हौले से चले वादे नसीम, जैसे बीमार को चुपके से दवा मिल जाए।

जगजीत सिंह की आवाज़ में ये गज़ल सुनी आपने फिल्म साथ साथ से। रात को जब चांद निकलता है दिल में एक दर्द मचलता है, ख्वाब जो अधूरे रह गए नींद में भी वो चलता है। जॉनी लिया साहब के लिखी ये चंद लाइनें जिनमें बहुत गहराई है। जॉन साहब का ये अंदाज हर बार दिल को झकझोर देता है। आपको क्या लगता है रात के इस पहर में ऐसी बातें क्यों याद आती हैं?

लता और किशोर की आवाज़ों में ये गीत सुना आपने फिल्म थोड़ी सी बेवफाई से। भूलना भुलाना तो बस एक वहम है दिल का, कोई नहीं निकलता है दिल में एक बार बस जाने के बाद।

कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

जी हाँ, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और ये सफर है निशिगंधा का, जिसे लेकर आज की रात माधुरी है आप सभी के साथ। और समय बता दें, रात के 12:30 और हो गए हैं 47 सेकेंड।

लता जी की आवाज़ में ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म मौसम से, संगीत मदन मोहन साहब का। आवारा हैं गलियों में मैं और मेरी तन्हाई, जाएं तो कहाँ जाएं, हर मोड़ पे है रसवाई। ये फूल से चेहरे हैं, हंसते हुए गुलदस्ते, कोई भी नहीं अपना, बेगाने हैं सब रस्ते। राहें हैं तमाशाई, राही भी तमाशाई, मैं और मेरी तन्हाई। अगला गीत हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से।

घर की दहलीज अंधेरों से सजा देती है, शाम जलते हुए सूरज को बुझा देती है। मैं भी कुछ दूर तलक जाके ठहर जाता हूँ, तू भी हंसते हुए बच्चे को रुला देती है। हर कदम पे एक नई मुश्किल, एक नया चौराहा आता है और फिर नई मंजिल की तलाश शुरू हो जाती है। कुछ पता ही नहीं होता कि हमारे नसीब में क्या है, क्या मिलने वाला है और अगली राह पर क्या खो जाएगा।

नसीब नसीब से ये गीत सुना आप सभी ने लता जी की आवाज में। याद आना उसका महंगा पड़ गया, रंग तन्हाई का फीका पड़ गया। हर तरफ यादें ही थीं उस शहर में, वहां जाकर मैं अकेला पड़ गया।

एक बार मुस्कुरा दो फिल्म से ये गीत सुन रहे थे आप, किशोर कुमार और आशा जी की आवाज़ में। ओपी नैयर का संगीत और बोल लिखे शिवान रिजवी ने। उससे मिलके तुझे मिला क्या, उससे मिलके तुझे मिला क्या है, भूल जा उसको सोचता क्या है। जिंदगी, ख्वाब, ख्वाहिशें, खुशबू सब उसी का है, फिर मेरा क्या है। खुश रहूं उससे दूर रहकर भी, ये दुआ है तो बद दुआ क्या है।

और निशिगंधा का ये सफ़र भी यहीं समाप्त होता है आज। आप बने रहें आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल के साथ, कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार।

0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि अधिकांश राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति से दुनिया ने भारत के मजबूत नेतृत्व और विभिन्न देशों को एक मंच पर लाने की क्षमता देखी। डॉ जयशंकर ने बताया कि सम्मेलन में 11 सदस्य देशों, 10 साझेदार देशों, 4 क्षेत्रीय संगठनों और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित कुल 32 प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष जैसे सबसे जटिल मुद्दे पर भी आम सहमति बनना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डॉ जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों ने स्पष्ट रूप से माना है कि आतंकवाद का कोई भी कृत्य आपराधिक कृत्य है।
1: ब्रिक्स का रुख स्पष्ट था, आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक माना जाएगा। ब्रिक्स देशों ने पहलगाम हमले की अस्वीकार्यता को स्पष्ट रूप से मान्यता दी। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की, जिसमें सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। साथ ही आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर बल दिया।
0: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति, विजन महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। भारत ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को इस वर्ष 31 दिसंबर तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दे दी है। विद्युत मंत्रालय ने बताया कि मुजफ्फरपुर ढालकेबार लाइन के जरिए 600 मेगावाट और टनकपुर महेंद्रनगर लाइन के जरिए 54 मेगावाट तक विद्युत आपूर्ति की स्वीकृति दी गई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता व्यक्त की है। परिषद ने कहा कि प्रदर्शनों को 100 दिन पूरे हो चुके हैं, जिससे अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है और व्यापक क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। परिषद ने चेतावनी दी कि सार्थक बातचीत में किसी भी प्रकार की देरी से जनता में असंतोष, अविश्वास और अस्थिरता और बढ़ सकती है। परिषद ने बाग जिला परिषद के सदस्य जावेद आरिफ अब्बासी की गिरफ्तारी पर भी चिंता व्यक्त की। सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदी दिवस के अवसर पर कल जन सूचना सेवा शुरू करने की घोषणा की। इस सेवा के अंतर्गत महत्वपूर्ण फैसलों और आदेशों का सरल हिंदी में सार उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही करीब 15 से 3 मिनट की अवधि के हिंदी ऑडियो और वीडियो बुलेटिन भी जारी किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में 5वें सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन करेंगे। इसमें 40 से अधिक देशों के 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और प्रतिभागी भाग लेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। महाराष्ट्र में प्रोफेसर भर्ती के लिए आवश्यक राज्य पात्रता परीक्षा सेट अब अगले महीने की 25 तारीख को आयोजित होगी। सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के सेट विभाग ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से परीक्षा की संशोधित तारीख की घोषणा की। ये परीक्षा पहले 27 सितंबर को निर्धारित थी। पिछले सप्ताह हमले में क्षतिग्रस्त हुई सऊदी अरब की एक महत्वपूर्ण तेल पाइपलाइन मरम्मत के लिए 3 से 5 सप्ताह तक बंद रह सकती है। 7 मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन ले जाने वाली ये पाइपलाइन सऊदी अरब के लिए लाल सागर के रास्ते तेल निर्यात करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सऊदी अरब ने गुरुवार के हमले के लिए ईरान समर्थित मिलिशिया के ड्रोन हमलों को जिम्मेदार ठहराया। अधिकारियों ने कहा कि मरम्मत के दौरान पाइपलाइन आंशिक रूप से चालू रह सकती है। अरुणाचल प्रदेश के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी बिरी टाकर ने जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कांस्य पदक जीत लिया है। उन्होंने टोक्यो में ये खिताब अपने नाम किया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सोशल मीडिया पोस्ट में इस उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई दी और उनके भविष्य के सफर में निरंतर सफलता की कामना की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Himakshi Pawar.

आकाशवाणी दिल्ली का फिल्म गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत सुहाने लेकर माधुरी आपके साथ। और गीत सुहाने में हम आपके लिए लेकर आते हैं ओल्ड क्लासिक्स।

ये प्यारा सा गीत सुन रहे थे आप मुकेश कुमार की आवाज में फिल्म अनीता से, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। अगला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म मिलन से, और ये गीत भी मुकेश जी की आवाज में है।

बहुत ही प्यारे प्यारे गीत सुन रहे हैं आप यहाँ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर। और पुनर्मिलन का गीत अभी आपने सुना, और अगला गीत हम लेकर आ रहे हैं आप सभी के लिए एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म से। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है और गीत पहुंच रहा है अब आप तक।

किस्मत फिल्म का ये गीत सुन रहे थे आप महेंद्र कपूर के आवाज़ में ओपी नैयर के संगीत के साथ। ओपी नैयर का ही संगीत है लेकिन फिल्म है हावड़ा ब्रिज। आवाज़ें यहाँ आप सुनेंगे आशा और मोहम्मद रफ़ी साहब की और गाना होगा ये वाला।

पतंग फिल्म का ये गीत सुना आपने लता जी की आवाज में चित्रगुप्त के संगीत के साथ। अगला गीत हम आपके लिए लाए हैं फिल्म संगम से मुकेश की आवाज में, शंकर जयकिशन के संगीत से सजा हुआ।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये सफर चल रहा है गीत सुहाने का और उम्मीद करती हूँ कि आपको गीत पसंद आ रहे होंगे। समय हो गया है रात्रि के 1:51 और 52 सेकंड। अगला गीत आप सभी के लिए फिल्म लीडर से लेकर आ रहे हैं, मोहम्मद रफ़ी और लता जी की आवाज़ में, संगीत नौशाद साहब का।

गीत सुहाने का ये सफर आज यहीं समाप्त होता है। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। अब से कुछ ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि अधिकांश राष्ट्र अध्यक्षों की उपस्थिति से दुनिया ने भारत के मजबूत नेतृत्व और विभिन्न देशों को एक मंच पर लाने की क्षमता देखी। डॉ जयशंकर ने बताया कि सम्मेलन में 11 सदस्य देशों, 10

0: साझेदार देशों, चार क्षेत्रीय संगठनों और सात अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित कुल 32 प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष जैसे सबसे जटिल मुद्दे पर भी आम सहमति बनना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्री जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों ने स्पष्ट रूप से माना है कि आतंकवाद का कोई भी कृत्य आपराधिक कृत्य है।
1: ब्रिक्स का रुख स्पष्ट था, आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक माना जाएगा। ब्रिक्स देशों ने पहलगाम हमले की अस्वीकार्यता को स्पष्ट रूप से मान्यता दी। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की, जिसमें सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। साथ ही आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर बल दिया।
0: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति, विजन महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। भारत ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को इस वर्ष 31 दिसंबर तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दे दी है। विद्युत मंत्रालय ने बताया कि मुजफ्फरपुर ढालकेबार लाइन के जरिए 600 मेगावाट और टनकपुर महेंद्रनगर लाइन के जरिए 54 मेगावाट तक विद्युत आपूर्ति की स्वीकृति दी गई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता व्यक्त की है। परिषद ने कहा कि प्रदर्शनों को अब 100 दिन पूरे हो चुके हैं, जिससे अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है और व्यापक क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। परिषद ने चेतावनी दी कि सार्थक बातचीत में किसी भी प्रकार की देरी से जनता में असंतोष, अविश्वास और अस्थिरता और बढ़ सकती है। परिषद बाग जिला परिषद के सदस्य जावेद आरिफ अब्बासी की गिरफ्तारी पर भी चिंता प्रकट की। सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदी दिवस के अवसर पर कल जन सूचना सेवा शुरू करने की घोषणा की। इस सेवा के अंतर्गत महत्वपूर्ण फैसलों और आदेशों का सरल हिंदी में सार उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही करीब 15 से 30 मिनट की अवधि के हिंदी ऑडियो और वीडियो बुलेटिन भी जारी किए जाएंगे। दिल्ली सरकार एक महीने तक चलने वाले सेवा संकल्प अभियान के दौरान 13,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक ये अभियान चलाया जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में राजधानी में 1,25,000 करोड़ रुपए के बुनियादी ढांचे से जुड़े काम किए गए। ग्लोबल साउथ के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के लिए मानवाधिकार विषय पर 5वें भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यकारी क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया। इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, ओमान और दक्षिण अफ्रीका सहित 14 देशों के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के 38 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस वीडियो का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि केंद्र सरकार 50,000 रुपए से कम आय वाले व्यक्तियों को मुफ्त कार उपलब्ध कराएगी। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावा एआई से निर्मित और फर्जी है। कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर सुन रहे हैं आप, और ये वक्त है कार्यक्रम रात सुरमई का, जिसे लेकर आज की रात माधुरी है आप सभी के साथ।

चलो मीत चलें दिन और रात की सरहद के पार, जहां तुम रात को दिन कहो तो मैं मुस्कुरा दूं, जहां सूरज से तुम्हारी दोस्ती बरकरार रहे और चांद से मेरी नाराजगी। चलें दूर कहीं चांद के पास।

हमसे जाओ ना बचा कर आँखें, यूं गिराओ ना उठा कर आँखें, खामोशी दूर तलक फैली है, बोलिए कुछ तो उठा कर आँखें।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और ये सफर है रात सुरमई का, और बज चुके हैं रात्रि के 2:29 और पूरे 42 सेकेंड।

कोई शिकवा कोई शक था तो मालूमात कर लेते, किसी भी फैसले से कबल हमसे बात कर लेते। हमें एहसास ही कब था कि वो नाराज़ हैं हमसे, अगर होता तो हम अंदाज़ा ही आफात कर लेते। चलो तुम बेखबर थे, शहर भर तो उससे वाकिफ था, ठगे जाने से पहले थोड़ी तहकीकात कर लेते। और ये तन्हाई ये बेचैनी ज़रा में दूर हो जाती, बस इतना था कि वो शरीके हमें ज़ात कर लेते।

लोरियां जल गईं भूख की आग में, झूठ सच अनकहा अनसुना रह गया। एक गुलफाम था, एक थी जलपरी, सारा किस्सा धरा का धरा रह गया। कल जहां शहरे दिल था, वहां आजकल खाक उड़ती है। एक दस्ते तन्हाई है, कौन किसको तसल्ली दे, इस शहर में सिर्फ मैं और मेरा आईना रह गया।

जी हाँ, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं, और प्यार करने वाले कब डरा करते हैं। छोटी सी एक बात पे मंजर बदल गए, दामन फटा तो हाथ से रिश्ते निकल गए। सदशुक्र बेसलीब अंधेरे निकल गए, छत उड़ गई तो घर के मुकद्दर बदल गए। एक रोज तुमसे हाथ मिलाने की आरजू इतनी शदीद थी कि मेरे हाथ ही जल गए।

0: बिल्कुल, हमारी मोहब्बत भी आपसे कुछ इसी तरह गहरी गहरी और गहरी होती जाती है। लेकिन फिलहाल रात सुरमई से इजाजत लेने का वक्त आ गया है, तो विदा दीजिए माधुरी को। आप बने रहे आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि अधिकांश राष्ट्र अध्यक्षों की उपस्थिति से दुनिया ने भारत के मजबूत नेतृत्व और विभिन्न देशों को एक मंच पर लाने की क्षमता देखी। डॉ जयशंकर ने बताया कि सम्मेलन में 11 सदस्य देशों, 10 साझेदार देशों, 4 क्षेत्रीय संगठनों और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित कुल 32 प्रतिनिधि मंडल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष जैसे सबसे जटिल मुद्दे पर भी आम सहमति बनना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डॉ जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों ने स्पष्ट रूप से माना है कि आतंकवाद का कोई भी कृत्य आपराधिक कृत्य है।
2: ब्रिक्स का रुख स्पष्ट था, आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक माना जाएगा। ब्रिक्स देशों ने पहलगाम हमले की अस्वीकार्यता को स्पष्ट रूप से मान्यता दी। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की, जिसमें सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। साथ ही आतंकवाद को कतई बर्दाश्त

0: ना करने की नीति पर
1: और
0: बल दिया।
1: डबल स्टैंडर्ड्स इनकाउंटरिंग इट।
2: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति, विजन महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। भारत ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को इस वर्ष 31 दिसंबर तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दे दी है। विद्युत मंत्रालय ने बताया कि मुजफ्फरपुर ढालकेबार लाइन के जरिए 600 मेगावाट और टनकपुर महेंद्र नगर लाइन के जरिए 54 मेगावाट तक विद्युत आपूर्ति की स्वीकृति दी गई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता व्यक्त की है। परिषद ने कहा कि प्रदर्शनों को 100 दिन पूरे हो चुके हैं, जिससे अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है और व्यापक क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। परिषद ने चेतावनी दी कि सार्थक बातचीत में किसी भी प्रकार की देरी से जनता में असंतोष, अविश्वास और अस्थिरता और बढ़ सकती है। परिषद ने बाग जिला परिषद के सदस्य जावेद आरिफ अब्बासी की गिरफ्तारी पर भी चिंता व्यक्त की। सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदी दिवस के अवसर पर कल जन सूचना सेवा शुरू करने की घोषणा की। इस सेवा के अंतर्गत महत्वपूर्ण फैसलों और आदेशों का सरल हिंदी में सार उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही करीब 15 से 30 मिनट की अवधि के हिंदी ऑडियो और वीडियो बुलेटिन भी जारी किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में 5वें सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन करेंगे। इसमें 40 से अधिक देशों के 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और प्रतिभागी भाग लेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। ग्लोबल साउथ के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के लिए मानवाधिकार विषय पर 5वें भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यकारी क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया। इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, ओमान और दक्षिण अफ्रीका सहित 14 देशों के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के 38 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। देश में थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर मुद्रास्फीति में अगस्त में मामूली वृद्धि हुई है। वार्षिक आधार पर ये जुलाई में 9.78% से बढ़कर अगस्त में 9.92% रही। थोक मूल्य मुद्रास्फीति लगातार चौथे महीने 9% से अधिक रही। 5वां जम्मू फिल्म महोत्सव 17 सितंबर को शुरू होगा। उद्घाटन समारोह गुरुवार को सुबह 11 बजे राइटर्स क्लब के अभिनव थिएटर में आयोजित किया जाएगा। इस महोत्सव का उद्देश्य फिल्म निर्माताओं और जम्मू कश्मीर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Hemakshi Pamar. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar lauded the successful conclusion of BRICS Summit 2026 in New Delhi, saying that the world saw the strong convening power of India as most of the heads of state were present to represent their countries. Talking to the media, Dr. Jaishankar said that it's important to recognize that this BRICS summit was taking place in a very polarized world.
1: BRICS summit was taking place in a very polarized world where there are two major conflicts with a very strong opinions and interests. Even in the midst of this polarization, we actually forged a consensus, which was West Asia, Middle East conflict. We were able to get out a statement to which everybody agreed, a statement urging peace, security, stability, long-term understanding, the smooth flow of global trade, of supply chains, energy, and of the protection of civilians and civilian interests.
3: The minister stated that the BRICS countries were very clear that any act of terrorism is a criminal act, and it also explicitly recognized the unacceptability of the Pahalgam attack. Condemning terrorism, Dr. Jaishankar said that BRICS emphasized zero tolerance for terrorism and rejected double standards.

3:10 और 30 सेकंड हुए हैं। आइए अब सुनते हैं ड्यूएट प्रोग्राम हमराही। और दोस्तों उससे पहले बताते हैं कि ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल यानी 100.1 MHz पर। आप सभी को हमराही कार्यक्रम में मेरा यानी अर्चना बिसारिया का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों कहते हैं कि झुमका अगर गिर जाए तो उसे उठाने की जल्दी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी एक गिरता हुआ झुमका भी पूरी महफिल का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। तो चलिए आज की इस चंचल सी धुन में अदाओं की खनक और शरारत का रंग घोलते हैं और सुनते हैं ये खूबसूरत नगमा फिल्म जुगनू से।

0: उम्र है।
1: छोड़ो बहाना।
0: ना ना ना।
2: ये गीत अभी आप सुन रहे थे जुगनू फिल्म से, आवाजें थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। इश्क में जब दिल अपनी ही धुन पर चलने लगे तो फिर दुनिया की परवाह कहाँ रहती है। मार उठे या जमाना नाराज हो जाए, दिल तो बस अपने प्यार की सुनता है। तो चलिए इसी शरारती अंदाज और प्यार भरी मस्ती के साथ सुनते हैं एक बेहद ही खूबसूरत नगमा। फिल्म का नाम है दाग और आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

0: अब चाहे लग जाए गड़िया मैंने तेरी बाह पकड़ ली, मन तुझ पे नियत कर ली,
1: मैंने हंसकर हामी भर ली।
0: ओ यारी छूटे ना
1: छूटे ना
0: हाथ कर।

दोस्तों कहते हैं ना कि राज ढके छुपे ही अच्छे रहते हैं। कुछ बातें दिल में छुपे रहे तो राज कहलाती हैं, और जब वही बातें जुबा तक आ जाएं तो कहानी बन जाती है। आज की महफिल में भी एक ऐसा ही राज खुलने वाला है। जी घबराइए नहीं, क्योंकि थोड़ी शरारत, थोड़ी मोहब्बत और ढेर सारी खूबसूरत यादों के साथ। तो सुनते हैं ये गीत, फिल्म धर्मा का है और इस गीत को आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने।

कहते हैं मेरी सांसों में आज कोई खुशबू सी उतर आई है, मेरी सांसों में आज कोई खुशबू सी उतर आई है, जैसे किसी की मोहब्बत चुपके से करीब आई है। नजरें कुछ कहती हैं, दिल कुछ सुनाता है, एक अनजाना सा एहसास हर पल मुस्कुराता है। कभी हवाओं में उनका जिक्र महसूस होता है, कभी हवाओं में उनका जिक्र महसूस होता है, कभी खामोशी में भी उनका साथ महसूस होता है। मोहब्बत शायद इसी एहसास का नाम है, जहां बिना कहे भी दिल को किसी का पैगाम है।

0: बदलते रिश्ते फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में।
1: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
0: इस वक्त समय हो चला है 3:35 और 46 सेकंड। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल यानी 100.1 MHz पर, और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। कहते हैं अपनों का साथ जिंदगी की सबसे खूबसूरत नेमतों में से एक है। जब दोस्ती साथ हो तो हंसी मजाक के छोटे छोटे पल भी यादों की बड़ी वजह बन जाते हैं। कभी साथ बैठकर बातें करना, कभी बेवजह हंसना और कभी एक दूसरे की टांग खींचना, यही तो दोस्ती की असली मिठास है।

और ऐसे प्यारे रिश्तों को देखकर दिल से बस यही दुआ निकलती है, इनकी खुशियों को किसी की नज़र ना लगे, ये साथ यूं ही बना रहे और हर दिन नई मुस्कान लेकर आए।

देश परदेश का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाजें थी किशोर कुमार और मनहर उदास की। दोस्तों, कभी कभी किसी अपने की दूर चले जाने से सिर्फ दिल नहीं, पूरा घर सूना सूना लगने लगता है। वही इंतजार, वही खामोशी।

और यादों से भरी रातें। तो आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म नमक हराम का ये खूबसूरत सा गीत, जिसे गाया है आशा भोसले और उषा मंगेशकर ने। और इस गीत को, जैसा कि मैंने बताया, ये एक विरह का गीत है। तो आइए यादों की इसी मीठी उदासी में हम भी डूब जाते हैं और सुनते हैं ये गीत।

जब मौसम सुहाना हो, फिजा में मस्ती हो और दिल में उमंग, तो फिर एक डाल पर बैठा तोता भी प्यार की बातें करने लगता है। शाखों पर चहकती धुन, हवाओं में मीठी बोली, दिल ने भी आज कह दी एक छोटी सी बात भूली। जहाँ प्यार हो और मुस्कान हो, वहीं तो हर मौसम रंगीन हो जाता है। तो आइए सुनवाते हैं आपको फिल्म चोर मचाए शोर का ये गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने।

दोस्तों, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें कहने के लिए लफ्ज़ कम पड़ जाते हैं और दिल बस खामोशी से अपनी बात कहता रहता है। फिल्म जोशीला का गीत दिल में जो बातें हैं उन्हीं अनकहे एहसासों की खूबसूरत सी आवाज़ है, जहां दिल की बात दिल तक पहुंचती है। और इस गीत को आवाज़ दी है आशा भोसले और किशोर कुमार ने।

और इस कार्यक्रम को खत्म करने का अब समय आ गया है। चलते चलते बस यही कहेंगे कि कुछ मुलाकातें बस पल भर की होती हैं, लेकिन उनकी यादें उम्र भर साथ चलती हैं। मिलना फिर बिछड़ना जिंदगी की यही तो खूबसूरत और थोड़ी उदास कहानी भी है। मुलाकात हुई तो लगा जैसे कोई अपना मिल गया, बिछड़े तो हर लम्हा एक याद बन गया। कुछ रिश्ते पास रहकर नहीं दूर होकर भी दिल में जिंदा रहते हैं। तो आप सुनिए कार्यक्रम का आखिरी गीत, फिल्म रॉकी से ये गीत हमने लिया है और इस गीत को आवाज़ दी है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि अधिकांश राष्ट्र अध्यक्षों की उपस्थिति से दुनिया ने भारत के मजबूत नेतृत्व और विभिन्न देशों को एक मंच पर लाने की क्षमता देखी। डॉ जयशंकर ने बताया कि सम्मेलन में 11 सदस्य देशों, 10 साझेदार देशों, 4 क्षेत्रीय संगठनों और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित कुल 32 प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष जैसे सबसे जटिल मुद्दे पर भी आम सहमति बनना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डॉ जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों ने स्पष्ट रूप से माना है कि आतंकवाद का कोई भी कृत्य आपराधिक कृत्य है।
1: ब्रिक्स का रुख स्पष्ट था, आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक माना जाएगा। ब्रिक्स देशों ने पहलगाम हमले की अस्वीकार्यता को स्पष्ट रूप से मान्यता दी। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की, जिसमें सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। साथ ही आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर बल दिया।
0: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति, विजन महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा

कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। भारत ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को इस वर्ष 31 दिसंबर तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दे दी है। विद्युत मंत्रालय ने बताया कि मुजफ्फरपुर ढालकेबार लाइन के जरिए 600 मेगावाट तक और टनकपुर महेंद्रनगर लाइन के जरिए 54 मेगावाट तक विद्युत आपूर्ति की स्वीकृति दी गई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता व्यक्त की है। परिषद ने कहा कि प्रदर्शनों को अब 100 दिन पूरे हो चुके हैं, जिससे अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है और व्यापक क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। परिषद ने चेतावनी दी कि सार्थक बातचीत में किसी भी प्रकार की देरी से जनता में असंतोष, अविश्वास और अस्थिरता और बढ़ सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदी दिवस के अवसर पर कल जन सूचना सेवा शुरू करने की घोषणा की। इस सेवा के अंतर्गत महत्वपूर्ण फैसलों और आदेशों का सरल हिंदी में सार उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही करीब 15 से 30 मिनट की अवधि के हिंदी ऑडियो और वीडियो बुलेटिन भी जारी होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इस आयोजन में 600 से अधिक भागीदार, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और 40 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल हिस्सा लेंगे। प्रदर्शनी में 6 देशों और 12 राज्य सरकारों के पवेलियन और एक विशेष स्टार्टअप पवेलियन होगा। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। इसका संयुक्त आयोजन इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और सेमी मिलकर आयोजित करते हैं। ग्लोबल साउथ के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के लिए मानवाधिकार विषय पर 5वें भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यकारी क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया। 5वां जम्मू फिल्म महोत्सव 17 सितंबर को शुरू होगा। उद्घाटन समारोह गुरुवार को सुबह 11 बजे राइटर्स क्लब के अभिनव थिएटर में आयोजित किया जाएगा। इस महोत्सव का उद्देश्य फिल्म निर्माताओं, कलाकारों और जम्मू कश्मीर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना है। अरुणाचल प्रदेश के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी बिरी टाकर ने जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कांस्य पदक जीत लिया है। उन्होंने टोक्यो में ये खिताब अपने नाम किया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सोशल मीडिया पोस्ट में इस उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सुबह के 4:10 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं प्रोग्राम अरुणिमा और कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

जिंदगी की राहों में कभी धूप होती है, कभी छांव, लेकिन सफर रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि हर सुबह अपने साथ एक नई उम्मीद लेकर आती है। अब जो गीत आप सुन रहे हैं, ये है फिल्म हाउस नंबर 44 का, आवाज लता मंगेशकर की। ये गीत हमें जैसे याद दिलाता है कि रास्ते कितने भी अनजाने हों, हौसला साथ हो तो मंजिल की तलाश,

कभी-कभी हम किसी के आने का इंतजार करते करते ये भूल जाते हैं कि जिंदगी हमें खुद आगे बढ़ने के लिए बुला रही है। हर रास्ते पर किसी का साथ मिले ये जरूरी नहीं, कई सफर अकेले ही तय करने पड़ते हैं। मंजिल भले ही दूर हो लेकिन पहला कदम हमेशा हमारे हाथ में होता है। तो फिर इंतजार किसका, चलिए अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं और सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत किशोर की कुमार की आवाज़ में।

जिंदगी सिर्फ एक जगह ठहर जाने का नाम नहीं, ये तो नए रास्तों को देखने, नई जगहों को महसूस करने और हर सफर से कुछ नया सीखने का नाम है। तो आइए, अब जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उसे हमने लिया है फिल्म अराउंड द वर्ल्ड से, और इस गीत में ऐसी बातें हैं और जैसे ये हमें आवाज़ देता है कि दुनिया बहुत खूबसूरत है, तो क्यों ना अपने दिल की खिड़की खोलें, नए अनुभवों को अपनाएं और ज़िंदगी की हर पल को उत्साह से जिएं।

दोस्तों, कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहाँ पीछे मुड़कर देखने के बजाय आगे बढ़ना ही बेहतर होता है। कुछ रिश्ते

यादें और कुछ पल हमारे साथ हमेशा रहते हैं, लेकिन सफर तो आगे ही बढ़ता है। उड़ान वही खूबसूरत है जिसमें हौसला हो, और मंजिल वही खास है जिसे पाने के लिए हमने खुद पर विश्वास किया हो। तो आइए दिल में उम्मीद और आंखों के सपने लेकर सुनते हैं ये सदाबहार नगमा लता मंगेशकर की आवाज़ में।

सपने, वो खूबसूरत एहसास है जो आंखें बंद होने पर भी हमें एक नई दुनिया दिखाते हैं। कुछ सपने हमें मुस्कुराना सिखाते हैं तो कुछ हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने की हिम्मत भी देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ सपनों से हम थोड़े उदास भी हो जाते हैं। तो आइए अपने सपनों को ज़रा करीब से महसूस करते हैं और ये गीत सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में।

दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी अचानक कुछ ऐसा होता है जो हमारी सोच, हमारी दिशा और हमारा नजरिया ही बदल देता है। उस पल हम सोचते हैं, ये क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। लेकिन हम हर बदलाव से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार अनजाने मोड़ ही हमें उस रास्ते पर ले जाते हैं जहां हमारी असली मंजिल हमारा इंतजार कर रही होती है। तो बदलाव को स्वीकार कीजिए, खुद पर भरोसा रखिए और हर नए मोड़ को एक नई शुरुआत समझिए।

दोस्तों, जिंदगी में जीते तो सभी हैं, लेकिन असली जीत वही होती है जो हौसलों, उम्मीदों और अपने सपनों के साथ जी जाए। रास्ते चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, हालात चाहे कितनी भी चुनौतियां सामने लेकर आए, हमें रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, अपने सपनों से हारना नहीं है, क्योंकि जो इंसान मुश्किल के बीच भी उम्मीद का दामन थामे रखता है, वही अपनी कहानी को यादगार बनाता है।

बल्कि हमें अपनी ताकत बनाना होता है। जो दर्द आज हमें कमज़ोर लगता है, वही कल हमारी पहचान बन सकता है। बस कदम रुकने नहीं चाहिए, क्योंकि हर मुश्किल के बाद एक नई सुबह हमारा इंतज़ार करती है।

और चलते चलते बस यही कहेंगे कि जिंदगी में असली दौलत हमेशा सोना चांदी नहीं होती, असली दौलत वो है हौसला, जो मुश्किल वक्त में भी हमें मुस्कुराना सिखाता है। तो शिकायतों को आज थोड़ा पीछे छोड़िए, अपने सपनों को थोड़ा करीब लाइए, क्योंकि जिंदगी की सबसे कीमती चीज़ है उम्मीद, हौसला और दिल की खुशी। आपका दिन भी मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ इस कार्यक्रम को समाप्त करने की। लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। आपको अभी सुनना है इस कार्यक्रम का अंतिम गीत भी।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि अधिकांश राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति से दुनिया ने भारत के मजबूत नेतृत्व और विभिन्न देशों को एक मंच पर लाने की क्षमता देखी। डॉ. जयशंकर ने बताया कि सम्मेलन में 11 सदस्य देशों, 10 साझेदार देशों, 4 क्षेत्रीय संगठनों और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित कुल 32 प्रतिनिधि मंडल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष जैसे सबसे जटिल मुद्दे पर भी आम सहमति बनना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डॉ. जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों ने स्पष्ट रूप से माना है कि आतंकवाद का कोई भी कृत्य आपराधिक कृत्य है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेतकिन ने भारत और मर्कोसुर के बीच तरजीही व्यापार समझौते के विस्तार के लिए बातचीत शुरू करने की घोषणा की है। दोनों मंत्रियों ने वर्तमान समझौते में आपसी हित के क्षेत्रों को शामिल करने पर सहमति व्यक्त की। महाराष्ट्र में प्रोफेसर भर्ती के लिए आवश्यक राज्य पात्रता परीक्षा सेट अब 25 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के सेट विभाग ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से परीक्षा की संशोधित तारीख की घोषणा की है। ये परीक्षा पहले 27 सितंबर को निर्धारित थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को नई दिल्ली के यशो भूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। ये वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को एक मंच पर लाने तथा सहयोग, नवाचार, विनिर्माण, निवेश और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने का प्रमुख मंच है। 3 दिन के सम्मेलन में पैनल चर्चाएं और महत्वपूर्ण सत्र आयोजित किए जाएंगे। ये आयोजन भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को साझेदारी, निवेश, प्रौद्योगिकी सहयोग और आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े अवसर तलाशने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की

0: जीत पर प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर कहा कि पार्टी की जीत झूठ की गूंज पर सच्चाई की जीत का साक्ष्य है। श्री मोदी ने कहा कि राजस्थान के लोगों ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वे डबल इंजन सरकार के अंतर्गत सुशासन और विकास की नीतियों का पूरा समर्थन करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने साइबर धोखाधड़ी और विवादित लेन देन पर रोक के संबंध में नई रूपरेखा का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत बैंक पूरे अकाउंट के बजाय सिर्फ विवादित लेन देन की राशि को अस्थायी रूप से फ्रीज कर सकेंगे। ऐसा तभी किया जा सकेगा जब 1,000 रुपये या उससे अधिक के असामान्य अंतरण को म्यूल अकाउंट या साइबर धोखाधड़ी से जुड़े होने की आशंका हो। मसौदा निर्देश अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होने वाले हैं, लेकिन बैंक इन्हें पहले भी अपना सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI अपनी मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग हेल्पलाइन 1033 को प्रौद्योगिकी के उपयोग से उन्नत बनाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि उन्नत 1033 हेल्पलाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रियल टाइम लोकेशन ट्रैकिंग और स्मार्ट इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग करेगी। इन सुधारों से 1033 हेल्पलाइन को कॉल करने वालों की लोकेशन पहचानने, अलग अलग भारतीय भाषाओं में कॉल समझने और सही मदद को ज्यादा तेजी से लोकेशन पर भेजना सुगम होगा। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में आज तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया कि केरलम, माहे, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और कार इक्काल में भी इसी तरह के मौसम रहने की संभावना है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हिमाक्षी पंवार। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar lauded the successful conclusion of BRICS Summit 2026 in New Delhi, saying that the world saw the strong convening power of India as most of the heads of state were present to represent their countries. Talking to the media, Dr. Jaishankar said that it's important to recognize that this BRICS Summit was taking place in a very polarized world.
2: BRICS Summit was taking place in a very polarized world where there are two major conflicts where there are very strong opinions and interests. Even in the midst of this polarization, we actually forged a consensus, which was West Asia, the Middle East conflict. We were able to get out a statement to which everybody agreed, a statement urging peace, security, stability, long-term understanding, the smooth flow of global trade, of supply chains, energy, and of the protection of civilians and civilian interests.
1: Condemning terrorism, Dr. Jaishankar said that BRICS emphasized zero tolerance for terrorism and rejected double standards in countering it. India's leadership of BRICS has also won praise from several member countries following the successful conclusion of the 18th BRICS summit in New Delhi. The two-day summit held in the national capital under India's chairmanship concluded on Sunday. Prime Minister Narendra Modi had expressed gratitude to the people of Rajasthan following the BJP's victory in the urban local body elections. In a social media post, the Prime Minister said, "The party's win is a testament to the triumph of truth over the echo of lies." Mr. Modi said, "The people of Rajasthan have once again made it clear that they fully support the policies of good governance and development under the double engine government." The Reserve Bank of India has proposed a new framework under which banks will temporarily freeze only the disputed transaction amount rather than the entire account when unusual transfer of rupees 1,000 or more are flagged as potentially linked to mule accounts or cyber fraud. Banks will be required to use AI-based transaction monitoring systems to identify transfers that are sudden, disappropriate to a customer's declared profile or linked to known cyber fraud network. The draft directions are scheduled to take effect on 1st April 2027, although banks can adopt them earlier. National Highways Authority of India will upgrade its existing

5:10 हुए हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। और अब जो कार्यक्रम आप सुनेंगे उसे आप और हम बोलते हैं भोर सुहानी। और इस कार्यक्रम में मैं एक बार फिर अर्चना बिसारिया आपका स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आशा भोसले के गाए कश्मीर की कली फिल्म के इस गीत के साथ।

किशोर कुमार और आशा भोसले के गाए इस गीत के बाद आइए अब आपको सुनवाते हैं शागिर्द फिल्म का गीत, जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर ने।